0: ਹੀ ਬੈਠੇ ਆਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਣਕੇ ਉੱਡਣ ਖਟੋਲੇ ਵਾਂਗੂ ਉੱਡਣਾ ਤੋੜ ਤੂੜ ਕੇ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਬਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਜਿੱਤਣੀ ਰੱਖ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।
1: This is Fiji News.
2: फिजी के पूर्व प्राइम मिनिस्टर वारिंगे बेनीमारामा और पूर्व पुलिस कमिश्नर सिथिवेनी गिलहियो के विद्रोह भड़काने वाले मामले को हाईकोर्ट खिसका दिया गया है। दोनों को आज मजिस्ट्रेट योगेश प्रसाद के समक्ष पेश किया गया। डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन जोन रंबुकू ने अदालत को बताया कि सरकारी पक्ष चार्जेज में कुछ बदलाव करना चाहता है, बचाव पक्ष ने इसका विरोध नहीं किया। रंबुकू ने कहा कि चार्जेस में जो संशोधन किए जाएंगे बचाव पक्ष को उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। बेनीमारामा और गिलहियो से आरोप स्वीकार करने या न करने के बारे में नहीं पूछा गया। मामले की अगली सुनवाई 5 जून को होगी। बेनीमारामा और गिलहियो को जमानत पर रिहा किया गया है। दोनों पर आरोप लगा है कि उन्होंने सेना के कमांडर मेजर जनरल चोने कलोनोवाई को पद से हटाने और सेना का कमान अपने हाथ में लेने के लिए सेना के कुछ आला अफसरों को संपर्क किया था। सुबह के मिड रोड स्थित टॉपलाइन हाउसिंग के एक व्यक्ति से कुछ दिन पहले इलाके में हुए हमले के संबंध में पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस ने पुष्टि की है कि यह मामला फिजी सेना के एक अधिकारी के 20 वर्षीय बेटे पर हुए हमले से संबंधित है। पुलिस का कहना है कि 20 वर्षीय युवक पर कुछ लोगों के समूह ने हमला किया था। पुलिस का कहना है कि वे और अधिक जानकारी और बयान जुटा रहे हैं। सुबह के सममोला में जमजम रेस्टोरेंट में लगी आग वाली घटना के बाद में दो लोगों को अभी भी लाइफ सपोर्ट पर रखा गया है। उनका इलाज सीडब्ल्यूएम अस्पताल में किया जा रहा है। कुल 9 लोगों को अस्पताल ले जाया गया था। जमजम रेस्टोरेंट में गैस सिलेंडर के फट जाने के बाद में धमाका हुआ था जिसमें 9 लोग घायल हुए थे, जिनमें से 2 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक गैस लीक की वजह से यह धमाका हुआ था। फिजी के लंबासा में व्यापारी प्रेमचंद की हत्या करने के आरोप लगे 26 वर्षीय अननायसा ओनो को कल लंबासा मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया। उन पर मेदावाला एक मामला दर्ज हुआ है। 55 वर्षीय प्रेमचंद पर रविवार की तड़के सुबह हमला हुआ था जिसके फलस्वरूप उनकी मौत हो गई। कुछ वाद विवाद के बाद में प्रेमचंद पर चाकू से वार किया गया था जिसके फलस्वरूप उनकी जान चली गई। बुला एफसी टीम ओएफसी प्रो लीग लीडर्स ग्रुप कैंपेन आज से ऑकलैंड में शुरू करेगी। सेमीफाइनल में जाने से पहले बुला एफसी को 3 और मैचेस खेलने हैं। आज शाम 3 बजे से गोमेज डे स्टेडियम में बुला एफसी का सामना साउथ आइलैंड यूनाइटेड से होगा, जबकि शनिवार को उसका सामना ईडन पार्क में 2:30 बजे से ऑकलैंड एफसी के साथ में रहेगा। वहीं अगले मंगलवार को बुला एफसी की भिड़ंत साउथ मेलबर्न से होगी। यह मैच शाम 3 बजे से खेला जाना है। ये दोनों मैचेस ईडन पार्क में होंगे। सेमीफाइनल्स 20 मई को गोमेड स्टेडियम में खेला जाना है, जबकि 24 मई को फाइनल ईडन पार्क में खेला जाएगा।
1: इस मदर्स डे को बनाए और भी स्पेशल डीजी सेल के साथ। बस भेजे $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या $300 या उससे ज्यादा का कैश ट्रांसफर इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक, और आपका नाम तुरंत जाएगा ड्रॉ में टू विन वन ऑफ द $1,500 कैश प्राइज। तो $20 का टॉप अप भेजे या $300 का कैश और डीजी सेल के साथ मौका पाए जीतने का $500 कैश। टीज एंड सीज अप्लाई।
3: बच्चों बताओ डिस्टेंस कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है?
4: मैम डिस्टेंस इक्वल्स स्पीड इनटू टाइम।
3: जीनियस। अब बताओ रीपेमेंट बढ़ाए बिना मॉर्गेज जल्दी खत्म करने का क्या फॉर्मूला है?
4: मैम ग्लोबल फाइनेंस का मॉर्गेज जीनियस प्लान।
5: बच्चा जानता है कि मॉर्गेज जल्दी खत्म करने का यही फॉर्मूला है ग्लोबल फाइनेंस का मॉर्गेज जीनियस प्लान। फोन 09255-5500। टीज एंड सीज अप्लाई।
6: Global costs are surging. Rising inflation is on the horizon. Beat the hike with the iFurniture Beat Inflation Sale. Grab designer sofas, dining, beds, and more at warehouse prices. Don't just watch prices go up, get ahead of them. Shop smarter at iFurniture and lock in the value today. Shop online at ifurniture.co.nz with NZ wide shipping. Visit us in Auckland, Hamilton, and Christchurch. iFurniture. Better, cheaper, smarter.
7: Right now at Guthrie Bowron. Enjoy free curtain making on thousands of quality fabrics. Take 15% off selected blinds, shutters and motorization. Plus receive a free in-home measuring quote. Cozy up your home in time for the cooler months. Guthrie Bowron, inspiration.

हेलो हेलो लिसनर्स, आज है बुधवार का दिन और आज है 6th of May। आज भी बहुत सारे दोस्तों के लिए अच्छा दिन है, कोई मेमोरेबल डे है, किसी का जन्मदिन हो सकता है, आपके सर्कल में वेडिंग एनिवर्सरी है, आप लोग कभी मिले थे, कभी आप ओवरसीज आए थे। पता है इसी महीने 2006 में मैं भी न्यूजीलैंड आई थी, यही महीना था मई का। मैं बताऊंगी जिस दिन रहेगा एक्चुअल डेट, मैं बताऊंगी किस दिन। ओके, आई अनाउंस हियर एनीवे। वेल, आपका स्वागत हम कर रहे हैं, वेरी गुड आफ्टरनून लिसनर्स, आपका खास स्वागत करते हुए 90s के गाने शान से बजाते हैं। वेलकम, नमस्ते।

पहला गाना जो हमने पेश किया उससे आपको अंदाज मिल ही गया होगा कि किस स्टार के बारे में आज हम बातें करेंगे। अगर नहीं अंदाज लगा पाए कोई बात नहीं, आज हम बातें करेंगे द थर्ड खान के बारे में, यानी सलमान खान के बारे में। इनकी मूवी मैंने प्यार किया जब रिलीज हुई लेट 1989 में, जिसने डोमिनेट किया 1990s को, मतलब पहला जो साल था 1990 का, पूरे साल तक इस फिल्म ने डोमिनेट किया और एक से बढ़कर एक गाने इस फिल्म के, साथ में सिनेमा हाउसेस पूरे साल तक भरी पड़ी रही थी। उसके बाद फिर चार साल बाद एक और एक मूवी रिलीज हुई जिसने तो सभी डायमेंशन यूं कहे बदल कर ही रख दिया, हम आपके हैं कौन। बहुत ही क्या कह सकते हैं इस फिल्म के बारे में, बस ऐसा लगेगा सूरज को हम दिया दिखा रहे हैं। लवली मूवी, जस्ट एवरीथिंग इन इट। तो उसके बाद ये बन गए मेगा स्टार। सलमान खान ने बहुत सारे मूवीज दिए हैं बॉलीवुड प्रेमियों को 1990s में, जो एक से बढ़ के

0: Level Homes are specialized in building high-quality standalone and terraced houses at very reasonable prices. Please send your RC, BC drawings and they will build for you. Visit IndelibleHomes.co.nz or call 0800-233-111. That's 0800-233-111.
1: इस मदर्स डे अपनी मम को एक ऐसा गिफ्ट दें जो पूरा साल उनके साथ रहे. iSubscribe.co.nz पर आप मैगजीन सब्सक्रिप्शंस पर अप टू 56% की बचत कर सकते हैं, जहां पर आपको ओवर 2000 मैगजीन्स मिलेंगी. iSubscribe वो बेस्ट जगह जहां पर आपको अपनी मम के लिए मैगजीन मिल सकती है. प्लस इनका रिवॉर्ड्स प्रोग्राम ज्वाइन करने पर इंस्टेंट $5 का क्रेडिट पाएं. आज ही सेव करें iSubscribe के साथ iSubscribe.co.nz.
2: For the one who's always been there, celebrate her with Pandora. Buy two full price pieces and receive a third one free, just in time for Mother's Day. Offer ends 10th May in store or online at pandora.net. Conditions and exclusions apply.
3: Meri Pasand, Somwar Raat 7 se Hemant ke saath.
4: मैंने प्यार किया के तुरंत बाद एक और एक ब्लॉकबस्टर तैयार हुई 1991 में रिलीज हुई, संजय दत्त, माधुरी दीक्षित और सलमान खान की मूवी साजन, जिसे डायरेक्ट किया था लॉरेंस डिसूजा ने और फिल्म की कहानी प्यार, फ्रेंडशिप, त्याग यानी सेक्रीफाइस इसके बारे में है. इट वॉज अ लव ट्राइंगल बिटवीन अ पोएट हु वॉज संजय दत्त, हिज फ्रेंड सलमान खान एंड अ फैन माधुरी दीक्षित. इस फिल्म के चर्चे भी बहुत हुए और फिल्म के गाने भी भाई एक से बढ़कर एक. गाने जो थे नदीम श्रवण द्वारा कंपोज्ड गाने थे और गाया भी था भाई या हमारे मेगा कुमार सानू अलका याग्निक की जोड़ी ज्यादातर गानों में बनी थी. प्लॉट या कहानी इसकी बहुत ही वही मैंने जैसे कहा कि ट्राइंगल लव स्टोरी थी और इट वॉज अ लवली फिल्म. बहुत सारे दोस्तों ने इस फिल्म को फिल्म के गाने को फिर लिखना शुरू किया. आई रिमेम्बर आई वॉज इन कॉलेज हाई स्कूल में और लड़कियां जो थी म्यूजिक क्लास में इस गीत को पूरा का पूरा लिखती थी एंड उसे मेमोराइज करती थी, रटती थी एंड क्लास में खड़े होकर गाना पड़ता था. तो क्या मजे होते थे उन दिनों. फिलहाल साजन का ही गाना आपकी बात.

अर्ली 90s के मार्क पर सनम बेवफा मूवी आई थी, सलमान खान ने काम किया, उसके आसपास मूवी बागी रिलीज हुई थी, फिर जब प्यार किसी से होता है रिलीज हुई, पत्थर के फूल मैंने पहले भी मेंशन कर दिया, हम आपके हैं कौन के बाद हम साथ साथ हैं, उसके बाद करण अर्जुन साथ में कुछ कुछ होता है, फिर बाद में आई बीवी नंबर वन, अंदाज अपना अपना, हम आपके हैं कौन, दिल तेरा आशिक, बंधन, जीत, चांद का टुकड़ा, औजार, साथ में निश्चय, जागृति, सिर्फ तुम, दुश्मन दुनिया का और दीवाना मस्ताना, ये सभी मूवीज रिलीज हुई 90s के दशक में और अव्वल रही थी सभी मूवीज। अच्छा, मेरा जाने का समय हो चला, आपसे मैं मिलूंगी कल, कल इस बृहस्पतिवार। यू टेक एक्स्ट्रा केयर ऑफ योरसेल्फ, और हाँ, किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी मत करें। बाय बाय।

0: 90s वो दौर था जिसने मेलोडी में और मेलोडी मिला दिया, और 90s के गाने बन गए सबसे मेलोडियस। 90s की रानी संगीता सुना रही है 90s के गाने।
1: Fall in love with your home again with an ANZ Reno loan. A home loan top-up of up to $50,000 at just 2.5% per annum, fixed for 3 years. Minimum 20% equity eligibility. Lending rules, terms and fees apply. Available for a limited time. ANZ, we do how.
2: What kind of businesses run on Business Fibre? Cloud thriving businesses, CGI building businesses, even big file sharing, video calling, meme sharing businesses. For uncompromising bandwidth and reliability, get your business running on Business Fibre.
3: Get a $100 digital Visa card with AMI. Buy a new comprehensive car policy online before the end of September. Visit ami.co.nz. T's and C's apply. AMI. On your side.
4: हम सभी सही तरह से रिसाइकल करना चाहते हैं, तो याद रखें प्लास्टिक 1, 2 और 5 को रिसाइकल करें और धरती को जीवित रखें। सही तरह से रिसाइकल करना आपके हाथों में है। सर्च करें ओकलैंड काउंसिल रिसाइकलेबल आइटम्स, तमकी तुरुकी, ऑल टुगेदर ओकलैंड।
5: माँ के प्यार की हदें नहीं होती, अपने बच्चों के सामने इनके लिए कोई मुश्किल बड़ी नहीं होती। जान बसती है इनकी हम में और हमारी इनमें, इसीलिए सुबह सुबह उठकर आवाज देती हूँ, सूरज आता होगा अपने वक्त पर। मैं तो अपना सूरज माँ की सूरत में ही देख लेती हूँ। जब आस पास सिर्फ अंधेरे दिखाई देते हैं तो आंख मूंद उनकी मुस्कान याद कर लेती हूँ, तुरंत उनकी आवाज सुन।
0: आप सभी को तराना टीम की तरफ से हैप्पी मदर्स डे।
6: समाचार सुनिए संजेश नारायण से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ में समझौते को अंतिम रूप देने के लिए उन्होंने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में फंसे जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए अमेरिकी प्रयास को रोक दिया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि युद्ध समाप्त करने के लिए ईरान के साथ समझौता करने के अमेरिकी प्रयासों को समय देने के लिए वह थोड़े समय के लिए इस प्रयास को रोक रहे हैं। ट्रंप ने पोस्ट में कहा कि वह ये कदम पाकिस्तान और अन्य देशों के अनुरोध, ईरान के खिलाफ अभियान के दौरान मिली जबरदस्त सैन्य सफलता और साथ ही ईरान के प्रतिनिधियों के साथ पूर्ण और अंतिम समझौते की दिशा में हुई महत्वपूर्ण प्रगति के आधार पर उठा रहे हैं। मीडिया एंड कम्युनिकेशंस मिनिस्टर पॉल गोल्डस्मिथ ने कहा है कि सरकार ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को समाप्त कर रही है। सरकार ने बदलते मीडिया उद्योग के बीच में इस मीडिया नियामक की भूमिका यानी कि ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी की भूमिका को अनुचित मानते हुए इसे भंग करने का निर्णय लिया है। देश में पे इक्विटी स्कीम में एक साल पहले घोषित किए गए बदलाव को लेकर के यूनाइटेड नेशंस में शिकायत दर्ज कराई गई है। न्यूजीलैंड काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस सहित ह्यूमन राइट्स कमीशन ने यूनाइटेड नेशंस से ये जांच करने का अनुरोध किया है कि क्या ये बदलाव महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के दायरे में आते हैं। सरकार ने पिछले कानून को फिर से लिखा और लगभग 180,000 मजदूरों को कवर करने वाले मौजूदा वेतन समानता यानी कि पे इक्विटी स्कीम को रद्द कर दिया है। पे इक्विटी स्कीम इसलिए लाया गया था ताकि महिलाओं और पुरुषों को एक ही काम के लिए एक समान वेतन भरा जाए। पे इक्विटी के लिए दावे करने वाली महिलाओं में ज्यादातर केयर सेक्टर, डिसेबिलिटी, एजुकेशन, हेल्थ, कम्युनिटी और सोशल सर्विसेज में कार्यरत थी। साउथ आइलैंड के मोसगेल में 33 वर्षीय एक महिला की लाश मिली है। पुलिस 33 वर्षीय महिला कैसी की तलाश कर रही थी, जिन्हें अंतिम बार पिछले शुक्रवार की सुबह 8 बजे रिकटन रोड वेस्ट में देखा गया था। महिला की मौत को संदेह की नजर से नहीं देखा जा रहा है, उनकी मौत की जांच कोरोना करेंगे। मिस स्विट्जरलैंड प्रतियोगिता की फाइनलिस्ट पत्नी की हत्या करने और उनके शव को ब्लेंडा में डालने के आरोपी व्यक्ति को उनके वकील ने आदर्श पति बताया है। 43 वर्षीय मार्क रेबन पर जिक्सो सहित वो नाइफ और गार्डन शीयर्स को काम में ला करके पत्नी क्रिस्टिना जेक्सकोमोविक की लाश को काटने और उसे किचन अप्लायंस में डालने के आरोप लगे हैं। घटना फरवरी 2024 की है। उन्होंने दावा किया कि सेल्फ डिफेंस में उन्होंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। महिला के शरीर से कुछ ऑर्गन्स निकालने के संबंध में भी उन पर चार्जेस लगेंगे। दंपति के पास में 5 और 6 साल के 2 बच्चे बताए गए हैं। मार्क रेबन को उम्र कैद की सजा हो सकती है। तमिलनाडु में बहुमत से कुछ सीटें दूर रही विजय की टीवीके पार्टी जल्द ही सरकार बना सकती है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के समर्थन से टीवीके सरकार बना सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कांग्रेस ने तमिलनाडु में टीवीके को समर्थन देने का फैसला किया है। इससे पहले कांग्रेस महासचिव कैसी वेणुगोपाल ने दावा किया था कि विजय ने सरकार बनाने के लिए कांग्रेस से समर्थन मांगा है। विजय के पूर्व प्राइम मिनिस्टर वारिंगे बेनीमरामा और पूर्व पुलिस कमिश्नर सिथिवेनी गिलहियो के विद्रोह भड़काने वाले मामले को हाईकोर्ट खिसका दिया गया है। दोनों को आज मजिस्ट्रेट योगेश प्रसाद के समक्ष पेश किया गया। डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशंस जॉन रंबुकू ने अदालत को बताया कि सरकारी पक्ष चार्जेस में कुछ बदलाव करना चाहता है। बचाव पक्ष ने इसका विरोध नहीं किया। रंबुकू ने कहा कि चार्जेस में जो संशोधन किए जाएंगे बचाव पक्ष को उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। बेनीमरामा और गिलहियो से आरोप स्वीकार करने या न करने के बारे में नहीं पूछा गया। मामले की अगली सुनवाई 5 जून को होगी। बेनीमरामा और गिलहियो को जमानत पर रिहा किया गया है। दोनों पर आरोप लगा है कि उन्होंने सेना के कमांडर मेजर जनरल चोने कलोनोवाई को पद से हटाने और सेना का कमान अपने हाथ में लेने के लिए सेना के कुछ आला अफसरों को संपर्क किया था। जेरम लोवाई ने पीएनजी चीफ्स टीम ज्वाइन करने का फैसला किया है। साल 2028 से पीएनजी चीफ्स टीम को एनआरएल में शामिल किया जाएगा। लोवाई, जो कि अभी वेस्ट टाइगर्स क्लब के साथ में है, ने पीएनजी चीफ्स क्लब में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की है। उन्हें लुक्रेटिव टैक्स फ्री सैलरी का ऑफर मिला है।
7: जागोरे कम लाइफ का आयोजन किया गया है पास्ता अनिल और रीना कान द्वारा। ये हिल्स चर्च 179 हिल्सबरा रोड में होने जा रहा है 9 मई को शाम को 6 बजे से। और जानकारी के लिए आप 0211017959 पर संपर्क कर सकते हैं। पुलिस रिक्रूटमेंट सेमिनार का आयोजन किया गया है शनिवार 23 मई को सुबह 9:30 से दिन में 12 बजे तक फिकलिंग कन्वेंशन सेंटर 546 माउंट एल्बर्ट रोड 3 किंग्स में। श्री वेंकटेश्वरा देवस्थानम चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से भोजन मेला होने जा रहा है रविवार 17 मई की सुबह 11 से शाम को 4 बजे तक 378 अररीमू रोड रामारामा में। एंट्री बिल्कुल ही फ्री है।
8: बोर्ड,
9: उदास हो,
8: एक्साइटमेंट की बत्ती फ्यूज,
9: तो सुनो चटपटी ट्रेंडिंग न्यूज,
8: उस पर जो जोड़े आपको अपनों के साथ, आपका साथी बरसों पुराना।
9: चलो समेटो खुशियों का खजाना।
8: ओनली ऑन

चिल विद नेहा शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के रेडियो तेराना पर. बिग हाय हेलो लिसनर्स, इट्स अ ब्यूटीफुल वेंसडे आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून, स्वागत करती हूँ आप सभी का. मैं नेहा आज बुधवार की दोपहर के इस प्रोग्राम में. बड़ा ही मिला जुला सा मौसम है. थोड़ी सी धूप निकलती है, फिर हल्की सी बूंदाबांदी होती है, फिर दोबारा धूप आ जाती है. और इस मिले जुले से मौसम में आज मेरे गानों की भी प्लेलिस्ट बड़ी मिली जुली सी रहने वाली है. आज कुछ ऐसी सिंगर्स को मैंने पिक किया है जिनके गाने अक्सर प्ले होते हैं, पर यू नो इतना उनको अक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता कि भाई ये इस आर्टिस्ट के गाने हैं. ये गाने यूं ही बस बैकग्राउंड में कभी आकर चले जाते हैं, छुप जाते हैं. तो आज इनको हाईलाइट हम करेंगे और सेलिब्रेट करेंगे इन आर्टिस्ट को विद द ब्यूटिफुल सॉन्ग्स दैट दे हैव गिवन टू द इंडस्ट्री, स्टार्टिंग विद तुलसी कुमार. बड़ी ही यूनिक सी इनकी आवाज़ है, बड़ी ही सॉफ्ट सी मीठी सी आवाज़ है. अलग ही टेक्सचर है इनकी आवाज़ का, इनके टोन का. और इनके द्वारा गाए हुए कुछ बहुत ही प्यारे प्यारे नंबर्स हम एंजॉय करने वाले हैं इस आवर में, राइट हियर ऑन रेडियो तराना इन द शो चिल विद नेहा.

0: Quality Care Dental with over 24 years of experience. We make your family's dental health easy and affordable, offering general dentistry and now special interest in pediatric dentistry for kids. Set up your dental care appointment with Dr. Sangeeta Mankal and team. Quality Care Dental. Call us on 0800 My Dentist or 09626-5205.
1: Quality Care Dental.
2: Always very gentle.
3: इस मदर्स डे को बनाए और भी स्पेशल डिजी सेल के साथ बस भेजे $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या $300 या उससे ज्यादा का कैश ट्रांसफर इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक और आपका नाम तुरंत जाएगा ड्रॉ में टू विन वन ऑफ द $15,500 कैश प्राइज तो $20 का टॉप अप भेजे या $300 का कैश और डीजी सेल के साथ मौका पाए जीतने का $500 कैश टीज़ एंड सीज़ अप्लाई
4: चिल चिल चिल चिल

0: जहां भी जाओ सिर्फ सुनो चल फिर निहा।
1: There's a reason the Big Ben six-pack is a go-to in Kiwi homes. Everyone gets hungry, just not at the same time. Someone's just walked in, starving. Someone's heading out, also starving. Someone said they weren't hungry, now they are. Someone's just eaten, and somehow hungry again. Waves of hunger just keep coming, but so do the pies. That's the genius of a Big Ben six-pack. So if hunger's a constant force at your place, grab a pack. Big Ben, feed your mission.
2: अपने किसी भी स्पेशल ओकेजन को और भी यादगार बनाइए डीजे दिनेश के साथ. मल्टी डीजे आर नोन टू शूट क्वालिटी वेडिंग वीडियोस एंड ब्रेथटेकिंग फोटोग्राफ्स. दे ऑफर डीजे वेडिंग वीडियो एंड फोटो पैकेजेस फ्रॉम ड्रोन एंड गिम्बल शॉट्स टू 4K वीडियो शूटिंग फॉर योर नेक्स्ट बर्थडे पार्टी, गेट टुगेदर और मैसिव वेडिंग. कॉन्टैक्ट मल्टी डीजे.
3: विद ऑल लेटेस्ट इक्विपमेंट दे ऑल्सो ऑफर इजी पेमेंट ऑप्शंस. कॉन्टैक्ट डीजे दिनेश. फोन नंबर 021-058-4711.
4: At Bunnings, you know you're going to get the lowest prices every day, because where you find a competitor's lower price on the same in-stock item, we'll beat it by 15%. Conditions apply. See website for details.
5: Bunnings Warehouse.
4: Lowest prices are just the beginning.
6: Hey everyone, मैं हूँ नेहा और इस सैटरडे आपको मिलूंगी एट NZ Beds मानिका सुपर सेंटर स्टोर, जहाँ पर आपको मिलेगा अप टू 70% डिस्काउंट ऑन सिलेक्टेड बेड्स, मैट्रेसेस फ्रॉम $299 एंड अ फ्री पिलो विद एवरी परचेज मेड इन द वीकेंड. सो सी यू दिस सैटरडे 10 AM टू मिडडे एट NZ Beds मानिका सुपर सेंटर.
7: इस हफ्ते के स्टार ऑफ द वीक है म्यूजिक डायरेक्टर दिलीप और समीर सिंह.
8: ब्रॉट टू यू बाय KMB कंस्ट्रक्शन. नया घर बनाना है और रिलायबल, ऑनेस्ट और कमिटेड कंस्ट्रक्टिंग सर्विस चाहिए तो कॉल करें भूपेंद्र कुमार को 021-874-871 पर.
6: अच्छा, अब जबकि मदर्स डे आने वाला है इसी संडे को, तो मैंने सोचा बीच बीच में हमारे स्टार ऑफ द वीक वाले सेगमेंट में हमारे स्टार के साथ साथ मदर्स डे सॉन्ग्स भी एंजॉय करते चले. KMB कंस्ट्रक्शन की तरफ से भूपेंद्र कुमार जी को आप कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन 021-874-871 या वेबसाइट विजिट कर सकते हैं kmbconstruction.co.nz. और अभी उनकी ओर से आपके लिए ये बहुत ही प्यारा गाना फॉर ऑल मम्स आउट देयर. हैप्पी मदर्स डे इन एडवांस.

0: माँ हमारे सच्चे दोस्त एक नजर में पहचान लेती है, इस मतलब ही दुनिया को बहुत अच्छे से जानती है, इसीलिए तो हद से ज्यादा ख्याल रखती है। बुखार हमें होता है, चिंता इन्हें, ठंड इन्हें ज्यादा लगती है, स्वेटर हमें तो पहनाती है। माँ अक्सर खुद का काम भूल जाया करती है, पर हमारी ख्वाहिशें वो इन्हें बिना बताए याद रहती है।
1: आप सभी को तराना टीम की तरफ से हैप्पी मदर्स डे।

0: Rana.
1: Proudly brought to you by Indelible Homes. Phone 0800-233-111. Website indelibleHomes.co.nz.
2: गुड आफ्टरनून. तराना के स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के दो बज चुके हैं.
3: दिस इज तराना न्यूज.
4: समाचार सुनिए संजेश नारायण से. मीडिया एंड कम्युनिकेशंस मिनिस्टर पॉल गोल्डस्मिथ ने कहा है कि सरकार ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को समाप्त कर रही है. सरकार ने बदलते मीडिया उद्योग के बीच में इस मीडिया नियामक की भूमिका यानी कि ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी की भूमिका को अनुचित मानते हुए इसे भंग करने का निर्णय लिया है. मंत्री पॉल गोल्डस्मिथ ने आज पुष्टि की कि सरकार ने बीएसई को बंद करने और सेल्फ रेगुलेशन ऑप्शंस पर विचार कर रही है. मंत्री का कहना है कि ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को ऐसे ब्रॉडकास्टिंग एनवायरनमेंट के लिए तैयार किया गया था जिसमें तेजी से बदलाव देखा जा रहा है. लेबर नेता क्रिस हॉपकिंस का कहना है कि दिसंबर चौथाई के मुकाबले भले ही मार्च चौथाई में अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कुछ गिरावट हुई है, देश के बड़े शहरों में अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा है. पिछले 12 सालों में ऑकलैंड में अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज्यादा 6.6% रिकॉर्ड हुआ है, जबकि वेलिंगटन में 11 सालों में सबसे ज्यादा 6.3% रिकॉर्ड हुआ है. अनएम्प्लॉयमेंट रेट दिसंबर के 5.4% के मुकाबले मार्च चौथाई में 5.3% रिकॉर्ड हुआ है. लेबर पार्टी के फाइनेंस मामलों की प्रवक्ता बाबरा एडमंड्स का कहना है कि प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन ने ये वादा किया था कि वे देश की अर्थव्यवस्था सुधारेंगे, लेकिन उनके वादे के विपरीत देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही है तथा इससे यही खतरा बना हुआ है कि लंबे समय तक अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा ही रिकॉर्ड होगा. अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.3% है यानी कि 163,000 न्यूजीलैंडर्स देश में नौकरी नहीं कर रहे हैं. दिसंबर चौथाई में यह आंकड़ा 5.4% या 165,000 रहा है. कोलिशन सरकार में टूरिज्म मिनिस्टर और लीडर ऑफ द हाउस लुइस अब्स्टन का कहना है कि वह ईरान द्वारा पड़ोसी देश यूनाइटेड अरब अमीरात और ओमान पर किए गए हमलों की निंदा करती हैं. रेडियो तराना से बातें करते हुए मंत्री ने कहा कि एक और जबकि वह ईरान की निंदा कर रही हैं, वह चाहती हैं कि अमरीका और इसराइल समर्थित इस युद्ध को जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाए.
5: Both on the countries involved, but also the impact it's having across the world. And that's why we want to see an end to the conflict, an end to the hostilities. And we're really very keen for the two countries to get together and continue those peace discussions.
4: नॉर्थलैंड में कल रात दो डेड बाइक राइडर्स के बीच में हुई एक दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गए. रात 11 बजे के बाद में हुई एक गंभीर घटना की सूचना मिलने पर पुलिस को कायकोहे के पास नापीपीटो रोड पर बुलाया गया था. पुलिस प्रवक्ता का कहना है कि एक व्यक्ति घटनास्थल पर मृत पाए गए. पुलिस अधिकारियों का मानना है कि दो लोग अपनी डेड बाइक से गिर गए, एक कायकोहे के नापीपीटो रोड पर और दूसरा मोरेवा के ताना रोड पर. पुलिस ने कहा कि दूसरे व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंची है, उन्हें अस्पताल ले जाया गया है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से जांच कर रही है. नेशनल सरकार में मंत्री और लीडर ऑफ द हाउस लुइस अब्स्टन का कहना है कि एक्ट पार्टी की इमिग्रेशन पॉलिसी सोच समझकर तैयार नहीं की गई है. रेडियो ताराना से बातें करते हुए मंत्री लुइस अब्स्टन ने कहा कि एक्ट पार्टी की पॉलिसी अगर लागू हो जाती है तो देश में एम्प्लॉयर्स के लिए माइग्रेंट वर्कर्स को हायर करना और भी मुश्किल हो जाएगा.
5: Which would make it incredibly expensive for a main applicant. And then if their partner was on a work visa as well, you're adding double that. So you could be talking about $22,000 up front on top of the standard visa application costs. So in many cases, what we would expect is an employer who is seeking a skilled migrant to fill a gap in their business would be the one that ends up paying that immigration levy. So it's really strange for ACT to be coming up with a policy that we know will just be an extra cost on businesses or farms.
4: Mantri Lewis Upston.
3: Sports News.
4: फीफा वर्ल्ड कप से पहले ऑल वाइट्स के पहले वार्म अप मैच की पुष्टि कर दी गई है. वर्ल्ड नंबर 85 ऑल वाइट्स का सामना हैती से जून सेड को होगा. 7 जून को टेम्पा में इंग्लैंड के खिलाफ मैच से पहले ऑल वाइट्स का ये वार्म अप मैच खेला जाना है. वर्ल्ड कप की शुरुआत 16 जून से होगी। ऑल व्हाइट्स टीम लॉस एंजलिस में पहले मैच में ईरान का सामना करेगी, दूसरे मैच में इजिप्ट और तीसरे ग्रुप मैच में ऑल व्हाइट्स का सामना बेल्जियम से होगा। ये दोनों मैचेस वैंकूवर में 22 और 27 जून को खेला जाना है।
0: बोर्ड,
6: उदास हो,
0: एक्साइटमेंट की बत्ती फ्यूज,
6: तो सुनो चटपटी ट्रेंडिंग न्यूज,
0: उस पर जो जोड़े आपको अपनों के साथ, आपका साथी बरसों पुराना,
6: चलो समेटो खुशियों का खजाना।
0: Only on Radio.

चिल कर रहे हैं आप रेडियो तराना पर मेरे नेहा के साथ में। वंस अगेन बिग हाय हेलो गुड आफ्टरनून लिसनर्स, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आज वेंसडे आफ्टरनून के इस प्रोग्राम में। पिछले आवर में तुलसी कुमार के बहुत ही मीठे मीठे से तरानों का मजा हमने लिया। अब इस आवर में एक और बड़ी ही प्यारी सी फीमेल सिंगर के गानों को हम सेलिब्रेट करने वाले हैं, इंजॉय करने वाले हैं। और इनकी जो आवाज़ है ना, उसका भी टेक्स्चर बड़ा ही डिफरेंट सा है। एक मिठास भी है इनकी आवाज़ में, एक चुलबुलापन भी है, एक शरारत भी है और एक मासूमियत भी है। ऐसी यूनिक आवाज़ है नीति मोहन की, और आज मैंने सोचा कि इस आवर में इंजॉय करते हैं नीति मोहन के गाए हुए प्यारे प्यारे से गाने। राइट हियर ऑन योर फेवरेट रेडियो तराना इन द शो चिल विद नेहा।

सच अ लवली सॉन्ग नैनो वाले ने. पद्मावत फिल्म का ये ट्रैक अभी आपने सुना रेडियो तराना पर नीति मोहन की आवाज में. एंड यू नो, जैसे मैं कह रही थी पिछले घंटे में कि कुछ ऐसे गाने होते हैं आकर चले जाते हैं, पता नहीं लगता और कहीं छुपे रह जाते हैं, बट दे आर सच अमेजिंग सॉन्ग्स. पर जब हम आर्टिस्ट के नाम से इन गानों को खोजते हैं, ये सामने आते हैं निकल कर, तो मजा आता है इनको आपको सुनाने में और खुद भी सुनने में. आगे इसी तरह के और भी बहुत ही ब्यूटीफुल नीति मोहन के गाने मैं आपको सुनाती रहूंगी. पर नीति मोहन की आवाज़ में जैसे कि मैं कह रही थी कि एक मिठास और एक भूलापन या मासूमियत तो है ही, पर साथ ही एक चुलबुलापन और एक शरारत भी है. तो नीति मोहन के कुछ बहुत ही अपबीट पेपी नंबर्स भी हैं, इनकी झलक जरा आपको सुनाती हूँ.

गजब गाना है ये जब तक है जान का, उसके बाद ये गाना भी है। गुरु रंधावा के साथ उन्होंने ये गाना गाया है। फिर कुछ गरबा स्टाइल के गाने भी हैं बड़े मजेदार, नीति मोहन के।

नाइस ना, रामो रे एंड जमकुड़ी रे जमकुड़ी। तो ये सारे गाने ना थोड़े मिले जुले, कुछ उनके पेपी नंबर्स और कुछ उनके सॉफ्ट नंबर्स, ये सब मैं आपको सुनाने वाली हूँ इस आवर में, राइट हियर ऑन रेडियो तराना। एंजॉय।

的你啊，亲啊亲啊，亲爱的你啊，哦，亲爱。

0: सैटरडे 9th मई को रेडियो तराना की टीम आपको शॉपिंग करवाने वाली है इन एनजेड बेड्स मानिकाओ सुपर सेंटर स्टोर और एक्सक्लूसिवली उस वीकेंड इन स्टोर डील्स के अलावा यू विल रिसीव अ फ्री पिलो विद एवरी परचेज मेड ऑफ एनी बेड। ट्रेड इन ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं और आपको फ्री लोकल डिलीवरी भी मिल सकती है। टीज एंड सीज अप्लाई। एनजेड बेड्स विद 40 इयर्स इन बिजनेस एंड थाउजेंड्स ऑफ हैप्पी कस्टमर्स ये आपको देंगे गारंटीड बेस्ट प्राइस। और 9th मई को मिलते हैं इनके मानिकाओ सुपर सेंटर वाले स्टोर में एट द कॉर्नर ऑफ लैम्बी ड्राइव एंड कैवेंडिश ड्राइव। इंडिया जाना है तो सफर भी तो वैसा ही होना चाहिए। फ्लाई विद एयर इंडिया फ्रॉम न्यूजीलैंड, इजी रिटर्न कनेक्शंस वाया ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर टू इंडिया और फिर सीमलेस ट्रैवल विद इन इंडिया। दिल्ली हो या अमृतसर, मुंबई हो या अहमदाबाद, एयर इंडिया कनेक्ट्स यू टू एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया। वही अपनी भाषा और वही अपना स्वाद और वही फ्रेंडली इंडियन हॉस्पिटैलिटी के साथ। तो अगली बार घर का सफर हो, फ्लाई एयर इंडिया। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट योर लोकल ट्रैवल एजेंट टुडे।
1: अरे इंडेलिबल होम्स वाली गुड़िया इतनी बड़ी हो गई।
2: हाय, मैं हूँ गुड़िया, भाई गुड़िया जिसके भैया ने उसे रूम से बाहर निकाल दिया था। अब मेरे पास मेरा अपना रूम है, बहुत बड़ा, बहुत अच्छा। Thanks to Indelible Homes. Thank you. See you.
1: नया घर बनाना हो या सब डिवाइड करना हो, Indelible Homes. Phone 0800-233-111.
3: सुनहरी यादें गोपाल के साथ रविवार को।
4: कभी कभी एक गाना ही काफी होता है किसी को फिर से महसूस करने के लिए। अजीब है ना, हर गाना कोई ना कोई याद जगा देता है।
5: Chill with Neha. Chill with Neha.

0: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Fiji Airways is on sale now. Fly to Fiji from just $309 one way. Or enjoy a stopover in Fiji on your way to epic destinations like Samoa from $305 one way, Tonga from $319, Tokyo from $635, Singapore from $699, and Hong Kong from $669 one way. Book now at fijiairways.com or call your travel agent. Conditions apply.
1: अरे अरे भाई साहब आइए, कैसे हैं?
2: नमस्ते नमस्ते, मंडप बड़ा खूबसूरत बना है, नजर पहले वहीं गई।
1: एनजेड मंडप का है, कितना प्यारा लग रहा है ना।
2: प्यारा मंडप तो है, पर खर्चा बड़ा क्या होगा भाभी जी?
1: नहीं नहीं, देखो खर्चा तो वैसे होता ही है शादी में, पर एनजेड मंडप के मंडप बहुत ही अफोर्डेबल होते हैं।
3: मंडप के मंडप खूबसूरत, अफोर्डेबल, और यू विल डील विद प्रोफेशनल्स। कॉल टुडे ऑन 09265050505 और विजिट एनजेड मंडप फेसबुक पेज।
4: और तराना का नाम मेंशन करने पर स्टेज हायर, मंडप और मार्कीज पर आपको मिलेगा 5% का डिस्काउंट।
5: एट वूलवर्थ्स, whether it's a Sunday roast or midweek wraps, we've got chicken for every occasion. Now you can grab our fresh chicken thighs, bone in, skin on special for just $5.90 a kg. That's the fresh food feeling at Woolworths. T's and C's apply.
6: Stay tuned to Tarana for all IPL updates.
7: IPL, the Indian Premier League. Get behind your favorite IPL team. Kyunki hum denge IPL par sabhi updates, reviews aur previews. Stay tuned to Tarana.
8: Brought to you by Indelible Homes and Chasers.
1: Right as promised, थोड़ा सा पंजाबी तड़के के बाद अब थोड़ा वो गरबा साउंड्स भी आएंगे, और गरबा साउंड्स में इस बार नीति के ये दो गाने। मनीषा, आप भी शो एंजॉय कर रही हैं, आपने कहा बड़े दिनों बाद ऐसे गाने सुनने को मिल रहे हैं। पिछला पूरा आवर तुलसी कुमार के गानों का आपने बहुत एंजॉय किया, और इस आवर में नीति मोहन के गाने भी। आई नो यू नो, वही मैं कह रही थी ना, ये गाने कई बार छुपे हुए रह जाते हैं, पर जब इन्हें खोजो, निकालो आर्टिस्ट को नाम सर्च करके, तो लगता है यार वाह, बड़े टाइम से नहीं सुने गाने।

0: बांगड़ू कहाँ खोया रहता है वे? कौन से ख्यालों में है? चिल कर, चिल विद नेहा।
1: यार मुझे फिजी जाना था।
2: कब जाना है?
1: दिसंबर की छुट्टियाँ हो जाए तब जाएंगे।
2: रेंटल सॉर्ट आउट कर लिया?
1: नहीं यार, नहीं मिला कुछ।
2: आई थिंक यू शुड कॉन्टेक्ट कोस्टल रेंटल कार्स। इनके पास फैमिली कार्स, SUVs और सभी लग्जूरियस गाड़ियाँ हैं और गाड़ियाँ अच्छी कंडीशन में।
3: कोस्टल रेंटल कार्स, विजिट coastalrentalcars.com.fj और फॉर बुकिंग्स कॉल ऑन 0067965202228।
2: एक्सप्लोर फिजी द कोस्टल वे।
4: इस मदर्स डे को बनाए और भी स्पेशल डिजिसेल के साथ। बस भेजे $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या $300 या उससे ज्यादा का कैश ट्रांसफर इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक, और आपका नाम तुरंत जाएगा ड्रॉ में टू विन वन ऑफ द $1,500 कैश प्राइज। तो $20 का टॉप अप भेजे या $300 का कैश, और डिजिसेल के साथ मौका पाए जीतने का $500 कैश। टीज एंड सीज अप्लाई।
5: क्या काम की भागदौड़ से कपड़ों का ढेर बढ़ता जा रहा है? वरी मत कीजिए, स्टोडार्ड रोड लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनर्स मॉन्ट्रोस के आपकी मदद के लिए तैयार हैं। यहाँ आपको मिलता है 24 आवर्स सेल्फ सर्विस लॉन्ड्रोमैट, या फिर आप अपने कपड़े छोड़ दीजिए और इनकी टीम वॉश, ड्राई और फोल्ड करके आपको बिल्कुल तैयार देगी। यहाँ सूट्स, ब्लेजर, शर्ट्स, ड्रेसेस और फॉर्मल वेयर के प्रोफेशनल ड्राई क्लीनिंग भी करते हैं, और डूबे ब्लैंकेट, स्पोर्ट्स गेयर की सफाई भी यहाँ पर होती है। स्टोडार्ड रोड लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनर्स, 220 स्टोडार्ड रोड मॉन्ट्रोस। आसान, भरोसेमंद और 24/7।
6: श्री वेंकटेश्वर देवस्थानम चैरिटेबल ट्रस्ट आप सबको आमंत्रित करते हैं इनके भोजन मेला फूड कार्निवल में टू सपोर्ट लॉर्ड वेंकटेश्वर टेंपल प्रोजेक्ट।
4: ये होगा संडे 17 मई को 11 AM टू 4 PM,
6: 378 RRIMU रोड, रामा साउथ ऑकलैंड में। एंट्री फ्री है, फ्री सॉफ्ट ड्रिंक्स रहेंगे, फ्री फूड बाय शिवानी रेस्टोरेंट एंड इडली सांबर, ज्वेलरी एंड क्लोथिंग स्टोर्स, हेना आर्टिस्ट, फेस पेंटिंग, बाउंसी कासल्स और बहुत कुछ।
4: और इन्फॉर्मेशन के लिए कॉन्टैक्ट करें शिवानी जी को 0218700012 पर।
6: वन टेम्पल वन कम्युनिटी, इटर्नल ब्लेसिंग्स।
7: इस हफ्ते के स्टार ऑफ द वीक है म्यूजिक डायरेक्टर दिलीप और समीर सैन।
8: ब्रॉट टू यू बाय KMB कंस्ट्रक्शन। नया घर बनाना है और रिलायबल, ऑनेस्ट और कमिटेड कंस्ट्रक्टिंग सर्विस चाहिए तो कॉल करें भूपेंद्र कुमार को 0218748711 पर।

0: स्ट्रीमिंग नाउ ऑन रोवर टिराना।
1: माँ को सब पता होता है, हमारे दिल और दिमाग का नक्शा इनके जहन में छपा होता है। शायद इसीलिए हमारी खबर हमसे ज्यादा इन्हें होती है। हाँ, कभी खिटपिट भी होती है, डांट भी पड़ती है, कभी खट्टा मीठा तो कभी कड़वा भी बोल देती है। फिर गुस्सा हो जाओ तो सामने लाकर खाने की थाली रख देती है। इनकी डांट में भी प्यार छुपा होता है। माँ को सब पता होता है।
2: आप सभी को तराना टीम की तरफ से हैप्पी मदर्स डे।
3: माँ को सब पता होता है, बिल्कुल मदर्स डे आ रहा है इसी संडे को। आप सभी को रेडियो तराना की टीम की ओर से बहुत सारी बेस्ट विशेस फॉर दिस मदर्स डे।
4: रेडियो तराना टाइम चेक।
5: Proudly brought to you by Indelible Homes. Phone 0800-233-111. Website indelibleHomes.co.nz.
3: Good afternoon. Studio की घड़ी में दोपहर के 3 बज चुके हैं.
6: This is Tarana News.
7: समाचार सुनिए संजेश नारायण से। नेशनल सरकार में मंत्री और लीडर ऑफ द हाउस लुईस अब्स्टन का कहना है कि ये कॉलिशन सरकार मजबूत है। कॉलिशन सरकार में शामिल तीनों पार्टियों के बीच में मतभेद के बावजूद मंत्री का ये बयान आया है। साथ ही रेडियो तराना के साथ इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उनका पूरा समर्थन प्रधानमंत्री को जाता है।
8: Absolutely. And as I said, looking at the way he has organized this deal with Singapore, this hasn't just happened in the last few weeks. This was negotiated back in October. Well before any sign of any fuel challenge. And his relationships that we are forging with other countries around the world, and I've mentioned Singapore and India today, are really important for New Zealand's future. Yes, in the short term with Singapore, helping us get through the fuel crisis, but over the long term, our relationships with other countries around the world, growing our exports, those are the things that grow employment opportunities for New Zealanders, make us wealthier as a country, and therefore give us more choices in terms of the things we invest in, whether it's infrastructure, whether it's more cancer drugs, you name it. A wealthier country has more choices, and that's absolutely what we're focused on.
7: न्यूजीलैंड सरकार सिटीजनशिप बाय ग्रांट के लिए एक नई नागरिकता परीक्षा यानी कि सिटीजनशिप टेस्ट शुरू करने जा रही है। 2027 के अंत से जो लोग सिटीजनशिप बाय ग्रांट के लिए एप्लीकेशन करेंगे उन्हें ये परीक्षा देनी होगी, जिसमें बिल ऑफ राइट्स एक्ट, क्रिमिनल ऑफेंसेस, वोटिंग राइट्स, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स और गवर्नमेंट स्ट्रक्चर से लेकर के ट्रेवल टू एंड फ्रॉम न्यूजीलैंड से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। एप्लीकेंट्स के लिए जरूरी होगा कि वे 75% प्रश्नों का सही जवाब दें। सवालों के लिए मल्टीपल चॉइस होंगे। न्यूजीलैंड सिटीजनशिप बाय ग्रांट के लिए तभी आप अर्जी लगा सकते हैं जब आप देश में 5 सालों तक रेसिडेंट वीजा पर रह चुके हैं। आपके लिए बेसिक इंग्लिश और गुड कैरेक्टर होना जरूरी होगा और 5 सालों के अंदर आपके लिए जरूरी होगा कि आप 1,350 डेज न्यूजीलैंड में रहे हों। वर्तमान में जो लोग सिटीजनशिप बाय ग्रांट के लिए अर्जी लगाते हैं उन्हें बस एक डेक्लरेशन पर ही हस्ताक्षर करना होता है, वे टेस्ट नहीं करते हैं, लेकिन साल 2027 से नया टेस्ट लाया जा रहा है। ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज का कहना है कि होम लोन रेट सिर्फ OCR के बढ़ने से ही नहीं बढ़ाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि और भी कई कारण हैं कि क्यों होम लेंडिंग रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं। रेडियो तराना के साथ बातें करते हुए ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय कुमार ने बताया कि होलसेल रेट्स के कारण भी देश में होम लेंडिंग रेट्स में बढ़ोतरी देखी जा रही है।
9: बैंक जब रेट ऑन इंटरेस्ट जब भी बढ़ाते हैं, जब होलसेल मार्केट में रेट बढ़ जाता है, और इस समय होलसेल रेट बढ़े हैं इसलिए बैंकों ने अपने रिटेल रेट भी बढ़ा दिए हैं। और मेन चीज ये है कि पहले ये महसूस किया जा रहा था कि इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल रहेगा, OCR नीचे ही रहेगा, OCR नहीं बढ़ेगा, बट अभी ऐसा देखा गया है कि फ्यूल प्राइसेस बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा है। और इन्फ्लेशन जो रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड है या रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया भी है, तो वो दोनों ही जो हमको क्लोजली इम्पैक्ट करते हैं दोनों।
7: अजय कुमार से हमने जानना चाहा कि जो लोग इंटरेस्ट रेट के ऊपर जाने को लेकर के चिंतित है वे क्या कर सकते हैं।
9: मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि अगर आपने किसी प्रकार का भी लोन लिया हुआ है और चाहे लेने की सोच रहे हैं, तो डिस्कस कीजिए किसी एडवाइजर से या एक्सपर्ट से और ये फाइंड आउट कीजिए कि आप कैसे अपना बेनिफिट कर सकते हैं, क्योंकि रेट ऑन इंटरेस्ट आपके कंट्रोल में नहीं है, ये तो बैंक डिसाइड करते हैं, मार्केट डिसाइड करता है। पर जो चीजें आपके कंट्रोल में है, आपके कंट्रोल में है आपकी इनकम, आपके कंट्रोल में है आपके एक्सपेंसेस, आपके कंट्रोल में है आपका मॉर्गेज, आपके कंट्रोल में है उसका मैनेजमेंट।
7: देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट में गिरावट हुई है। देश में 163,000 लोग अनएम्प्लॉयड है, पिछले कोटा में 165,000 या 5.4% लोग अनएम्प्लॉयड थे।
0: स्पोर्ट्स न्यूज।
7: चेन्नई सुपर किंग्स इंडियन प्रीमियर लीग मैच जीतने के बाद में पॉइंट्स टेबल पर छठे स्थान पर चली गई है। दिल्ली कैपिटल्स को उसके होम ग्राउंड में चेन्नई सुपर किंग्स ने 15 बॉल्स के रहते 8 विकेट से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल ने 20 ओवर्स में 155.47 बनाए थे, जवाब में 17.3 ओवर्स में चेन्नई सुपर किंग्स ने 159.42 बनाने के बाद में इस मैच को अपने नाम कर लिया। दिल्ली कैपिटल्स की ओर से समीर रिजवी ने सबसे ज्यादा 24 में से 40 रन दिए थे। ट्रिस्टन स्टब्स ने 31 में से 38 रन बनाए। सुपर किंग्स की ओर से संजू सैमसन ने 52 में से 87, कार्तिक शर्मा ने 31 में से 41 रनों का योगदान दिया। पॉइंट्स टेबल पर चेन्नई के पास में 10 मैचों के बाद में 10 पॉइंट्स हो गए हैं। दिल्ली कैपिटल्स 10 मैचों के बाद 8 पॉइंट्स लेकर के सातवें स्थान पर है। पंजाब 13 पॉइंट्स लेकर के शीर्ष पर है, जबकि चार टीमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, सनराइजर्स हैदराबाद, राजस्थान रॉयल्स और गुजरात के पास में 12-12 पॉइंट्स है। आईपीएल का अगला मैच कल सुबह सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब के बीच में खेला जाना है। रिपोर्ट्स इंडेलिबल होम्स और चेजर्स की ओर से।
10: बोर्ड,
11: उदास हो,
10: एक्साइटमेंट की बत्ती फ्यूज,
11: तो सुनो चटपटी ट्रेंडिंग न्यूज,
10: उस पर जो जोड़े आपको अपनों के साथ, आपका साथी बरसों पुराना,
11: चलो समेटो खुशियों का खजाना।
10: ओनली ऑन

0: पापा टोय फ्लैट बुश और पापा कुरा के बाद अब DH सुपरमार्केट का सबसे बड़ा स्टोर खुल गया है इन हेंडरसन। दैट्स राइट, योर लोकल इंडियन ग्रोसरी स्टोर नाउ इन हेंडरसन एट 5 मोजेल एवेन्यू ऑफ लिंकन रोड हेंडरसन। ह्यूज क्लीन हाइजीनिक प्लेस टू शॉप विद एम्पल पार्किंग। यहाँ पर आपको मिलेंगे फ्रेश वेजिटेबल्स, ऑथेंटिक स्पाइसेस और सभी इंडियन ग्रोसरी सामान बहुत ही अच्छे प्राइसेस में। DH सुपरमार्केट नाउ इन हेंडरसन एट 5 मोजेल एवेन्यू ऑफ लिंकन रोड। Drawing inspiration from urban communities around the world,
1: we present Big O Toy Toy, a brand new urban development in Papatoetoe. Brick, low maintenance, 2 and 3 bedroom homes from 649,000.
0: 5 minutes from New World, eateries, schools, City Rail Link, Pohinui Bus Interchange and major motorways.
1: Join the new community. Selling now. Find out more at pikotoetoe.nz.
0: That's pikotoetoe.nz.
2: Capture the impossible with Spark and the new Samsung Galaxy S26 series with huge deals on now. Heading to Spark Arena? Put the latest nightography to the test and capture the best details of the night. Then with Photo Assist, easily say goodbye to the dancing photo bombers in the back. Buy from Spark for huge deals on the Galaxy S26 series now. T's and C's apply. Delivery times may vary.
3: 3 boys, 1 girl and this ultimate Saturday night. Spice up your Saturday night with the boys. With the boys. Saturday night hangama with DJ Shaleen, Mona, Satin and Sonal.

वेंसडे। राइट, सो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं काफ़ी सारी ऐसी फीमेल सिंगर्स को जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए हैं और आजकल के समय की ये सिंगर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, बट कहीं ना कहीं यू नो ये गाने छुपे हुए रह जाते हैं हमारे बाकी की जो थीम्स चलती रहती हैं, प्लेलिस्ट चलती रहती हैं, उसमें कई बार ये सारे गाने अकोमोडेट नहीं हो पाते, या अगर आते भी हैं तो यू नो जो एक्टर्स हैं उनके नामों से इन गानों को हम ज़्यादा रिकोगनाइज करते हैं दैन द सिंगर्स। सो आज हम उन सिंगर्स को एक्नॉलेज कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। पहले आवर में हमने तुलसी कुमार के गाने इन्जॉय किए, सेकेंड आवर में नीति मोहन के गाने इन्जॉय किए, और अब इस आवर में एक और बहुत ही ज़बरदस्त सिंगर के गाने मैं आपको सुनाने वाली हूँ। अच्छा, लाइक आई वाज सेइंग ना कि ये गाने हम आइडेंटिफाई करते हैं मोर विद द एक्टर और मे बी समटाइम्स इवन विद द मेल सिंगर। अब जैसे अरिजीत सिंह की बात हो तो ये गाने का जिक्र होता है, या रणबीर कपूर या अनुष्का शर्मा की बात हो तो इस गाने का जिक्र होता है, पर हार्डली कभी जोनिता गांधी जिन्होंने ये गाना गाया है उन्हें अपने इस गाने का क्रेडिट मिलता है, जबकि इट इज़ द मैजिक ऑफ हर वॉइस जिसकी वजह से ये गाना इतना मस्त साउंड करता है।

देखो कितने मस्त मस्त गाने हैं ना, बट लाइक आई सेड, इन सिंगर्स को कई बार अपने इन गानों के लिए उतना ड्यू क्रेडिट अप्रिसिएशन एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है. ये गाना भी जॉनिता का है. एंड देन ये गाना भी जॉनिता ने गाया है. Along with, of course, Arijit Singh. तो अरिजीत की आवाज हुक में आई, बट आगे जो फीमेल पार्ट है वो सारा जॉनिता ने गाया है. और ये भी एक बड़ा दमदार गाना है जॉनिता गांधी का, राजवाड़ी ओढ़नी, ब्यूटीफुल सॉन्ग. तो इस तरह के गाने गाए हैं जॉनिता गांधी ने, जिन्हें हम आज एंजॉय करने वाले हैं शो के इस आवर में. वंस अगेन, बिग हाय, हेलो, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू द शो.

0: Chill with Neha.
1: जब बात होती है पर्दों की तो नाम आता है डी कैरोल कर्टन्स का, जो कर्टन्स के साथ साथ स्पेशलाइज करते हैं इन सन फिल्टर रोलर ब्लाइंड्स, जो दिन में दे सही लाइट और यूवी रे से प्रोटेक्शन और नाइट में दे कंप्लीट प्राइवेसी। इनके सभी ड्रेप्स एंड कर्टन्स आते हैं विद फ्री लाइनिंग, प्लस तराना का नाम मेंशन करने पर 20% का डिस्काउंट। कम एंड मीट देयर फ्रेंडली टीम एट 19 मॉर्निंग साइड ड्राइव, माउंट एल्बर्ट। फोन 09815-3811। डी कैरोल कर्टन्स।
2: Introducing Pizza Hut's new Tikka and Paneer range. Rich tikka base, creamy paneer, bold flavor. Get the first taste from $10.99 pickup at Pizza Hut. Limited time only. T's and C's apply.
3: इस मदर्स डे को बनाए और भी स्पेशल डिजी सेल के साथ। बस भेजे $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या $300 या उससे ज्यादा का कैश ट्रांसफर इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक, और आपका नाम तुरंत जाएगा ड्रॉ में टू विन वन ऑफ द 15 $500 कैश प्राइज। तो $20 का टॉप अप भेजे या $300 का कैश, और डीजी सेल के साथ मौका पाए जीतने का $500 कैश। टीज एंड सीज अप्लाई। डीजी सेल के साथ आप भी $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या $300 या उससे ज्यादा का मनी ट्रांसफर करें इन द पैसिफिक टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड बी इन द ड्रॉ टू विन वन ऑफ द 15 $500 कैश प्राइज। ये एक्साइटिंग ऑफर आपके लिए इस मदर्स डे पर लेकर आ रहा है डीजी सेल। राइट, अब हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ी देर पहले जोनिता गांधी के गाने हमने इंजॉय किए। अब जाते जाते मैं आपके लिए छोड़े जा रही हूँ एक और बड़ी जबरदस्त सिंगर के गाने, जिनका नाम है मोनाली ठाकुर। कमाल के गाने गाए हैं वैसे मोनाली ने भी। जो इनका सबसे एक गाना पॉपुलर हुआ वो रहा फिल्म लुटेरे का ये गाना। सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। और कुछ पेपी नंबर्स भी हैं जैसे ये गाना, रिमेम्बर दिस वन, ये गाना बड़ा हिट हुआ था कुछ साल पहले, छम छम छम। देन इसी टोन से मिलता जुलता एक और गाना है, बड़ी सिमिलर बीट्स है इन गानों की, और ये गाना भी इसी फ्लो में सही बैठता है। अगेन दीज आर ऑल दोज गरबा बीट सॉन्ग्स। और एक और गाना मोनाली का जो आई थिंक शुरुआती दिनों में आया था उनके करियर के, जो बहुत ज्यादा हिट रहा था, वो था फिल्म रेस का ये ट्रैक। Wow, haven't heard these songs for such a long time. तो अभी मोनाली ठाकुर के इन सभी गानों को enjoy करते हैं और मोनाली को as an artist celebrate करते हैं आज हमारे show में।

0: चिल किया आज आपने रेडियो तराना पर मेरे नेहा के साथ में, उसके लिए थैंक यू। अब मुझे दीजिए इजाजत, पर जाते जाते क्या बात है वाले सेगमेंट में किसी ने क्या खूब कहा है कि तुम मेरे सब्र का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मैंने उसे हंस कर खोया है जिसे रो रो कर मांगा था। क्या बात है। चलिए चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा, एंड आई विल सी यू अगेन टुमारो। बाय।
1: It hurts.

0: streaming now on Rover. Tirana.
1: हम चाहे हंसी का नकाब गम पर लगाएं या गम का नकाब हंसी पर, या हजार बार समझाएं माँ सच्ची कुछ नहीं हुआ है। अच्छा बेटा, फिर मुंह क्यों इतना उतरा हुआ है? इन्हें कही अनकही हर बात का अंदाजा होता है, माँ को सब पता होता है।
2: आप सभी को तराना टीम की तरफ से हैप्पी मदर्स डे।
3: रेडियो तराना, टाइम चेक, टाइम चेक।
4: प्राउडली ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स। फोन 0800 233 111। वेबसाइट indelibleholmes.co.nz।
5: वेंसडे की शाम है, नमस्ते। 4 बज चुके हैं, द ड्राइव शो शुरू होने वाला है।
6: दिस इज तराना न्यूज।
7: समाचार सुनिए संजेश नारायण से। मीडिया एंड कम्युनिकेशंस मिनिस्टर पॉल गोल्डस्मिथ ने कहा है कि सरकार ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को समाप्त कर रही है। सरकार ने बदलते मीडिया उद्योग के बीच में इस मीडिया नियामक की भूमिका, यानी कि ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी की भूमिका को अनुचित मानते हुए इसे भंग करने का निर्णय लिया है। मंत्री पॉल गोल्डस्मिथ ने आज पुष्टि की कि सरकार ने BSE को बंद करने और सेल्फ रेगुलेशन ऑप्शंस पर विचार कर रही है। मंत्री का कहना है कि ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को ऐसे ब्रॉडकास्टिंग एनवायरनमेंट के लिए तैयार किया गया था जिसमें तेजी से बदलाव देखा जा रहा है। लेबर नेता क्रिस हेपकिंग्स का कहना है कि दिसंबर चौथाई के मुकाबले भले ही मार्च चौथाई में अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कुछ गिरावट हुई है, देश के बड़े शहरों में अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा है। पिछले 12 सालों में ऑकलैंड में अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज्यादा 6.6% रिकॉर्ड हुआ है, जबकि वेलिंगटन में 11 सालों में सबसे ज्यादा 6.3% रिकॉर्ड हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट दिसंबर के 5.4% के मुकाबले मार्च चौथाई में 5.3% रिकॉर्ड हुआ है। लेबर पार्टी के फाइनेंस मामलों की प्रवक्ता बाबरा एडमंड्स का कहना है कि प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन ने ये वादा किया था कि वे देश की अर्थव्यवस्था सुधारेंगे, लेकिन उनके वादे के विपरीत देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही है तथा इससे यही खतरा बना हुआ है कि लंबे समय तक अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा ही रिकॉर्ड होगा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.3% है, यानी कि 163,000 न्यूजीलैंडर्स देश में नौकरी नहीं कर रहे हैं। दिसंबर चौथाई में यह आंकड़ा 5.4% या 165,000 रहा है। कोलिशन सरकार में टूरिज्म मिनिस्टर और लीडर ऑफ द हाउस लुइस अब्स्टन का कहना है कि वह ईरान द्वारा पड़ोसी देश यूनाइटेड अरब अमीरात और ओमान पर किए गए हमलों की निंदा करती हैं। रेडियो तराना से बातें करते हुए मंत्री ने कहा कि एक और जबकि वह ईरान की निंदा कर रही हैं, वह चाहती हैं कि अमरीका और इसराइल समर्थित इस युद्ध को जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाए।
8: Both on the countries involved, but also the impact it's having across the world. And that's why we want to see an end to the conflict, an end to the hostilities. And we're really very keen for the two countries to get together and continue those peace discussions.
7: नॉर्थलैंड में कल रात दो डेड बाइक राइडर्स के बीच में हुई एक दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गए। रात 11 बजे के बाद में हुई एक गंभीर घटना की सूचना मिलने पर पुलिस को कायकोहे के पास नापीपीटो रोड पर बुलाया गया था। पुलिस प्रवक्ता का कहना है कि एक व्यक्ति घटना स्थल पर मृत पाए गए। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि दो लोग अपनी डेड बाइक से गिर गए, एक कायकोहे के नापीपीटो रोड पर और दूसरा मोरेवा के अताना रोड पर। पुलिस ने कहा कि दूसरे व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंची है, उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से जांच कर रही है। नेशनल सरकार में मंत्री और लीडर ऑफ द हाउस लुइस अब्स्टन का कहना है कि एक्ट पार्टी की इमिग्रेशन पॉलिसी सोच समझकर तैयार नहीं की गई है। रेडियो ताराना से बातें करते हुए मंत्री लुइस अब्स्टन ने कहा कि एक्ट पार्टी की पॉलिसी अगर लागू हो जाती है तो देश में एम्प्लॉयर्स के लिए माइग्रेंट वर्कर्स को हायर करना और भी मुश्किल हो जाएगा।
8: Which would make it incredibly expensive for a main applicant. And then if their partner was on a work visa as well, you're adding double that. So you could be talking about $22,000 up front on top of the standard visa application costs. So in many cases, what we would expect is an employer who is seeking a skilled migrant to fill a gap in their business would be the one that ends up paying that immigration levy. So it's really strange for ACT to be coming up with a policy that we know will just be an extra cost on businesses or farms.
7: Mantri Louis Upston.
9: Sports News.
7: फीफा वर्ल्ड कप से पहले ऑल वाइट्स के पहले वार्म अप मैच की पुष्टि कर दी गई है। वर्ल्ड नंबर 85 ऑल वाइट्स का सामना हैती से जून सेड को होगा। 7 जून को टेम्पा में इंग्लैंड के खिलाफ मैच से पहले ऑल वाइट्स का ये वार्म अप मैच खेला जाना है। वर्ल्ड कप की शुरुआत 16 जून से होगी। ऑल वाइट्स टीम लॉस एंजलिस में पहले मैच में ईरान का सामना करेगी, दूसरे मैच में इजिप्ट और तीसरे ग्रुप मैच में ऑल वाइट्स का सामना बेल्जियम से होगा। ये दोनों मैचेस वैंकूवर में 22 और 27 जून को खेला जाना है।
10: ट्रेना ड्राइव, ट्रेना ड्राइव, ट्रेना ड्राइव।

0: आप दोस्तों से बातें करने के लिए आपका कैप्टन आ जाता है मंडे से फ्राइडे के बीच में, एकदम कंसिस्टेंट एक ही रेडियो शो। मेरी जिंदगी में भी कंसिस्टेंसी का चीज होता है, मैं कब जागता हूँ, कब चलता हूँ, कब नहाता हूँ, कब खाता हूँ, कब बैठता हूँ, कब पार्टी करता हूँ, कब क्या करता हूँ, एकदम एकदम नियमित तौर पर वो होता है, नो गेसिंग गेम। लोग जो हमारे करीब है वो जानते होंगे कि अभी मिस्टर शर्मा ओमिस्टन रोड का चक्कर लगा रहा होगा, अभी मिस्टर शर्मा ये कर रहा होगा, अभी मिस्टर शर्मा रेडियो तराना में बैठकर कुछ रिकॉर्डिंग कर रहा होगा। इट्स टाइम टेबल लाइफ, बहुत ही डिसिप्लिन के साथ। एंड देन यू से कि मुझे नहीं मालूम था, मुझे पता नहीं, तो आई डोंट नो। ऐसे जिंदगी में होना चाहिए, रूटीन सा बना लो, इधर उधर चेंजेस ना हो, तो जिंदगी एकदम स्मूथ फ्लोइंग रहेगा आपका। सरप्राइजेस, आई डोंट लाइक सरप्राइजेस मैन, इसीलिए बहुत ही डिसिप्लिन लाइफ हम जीते हैं। अब तो आपको ये भी मालूम हो गया होगा कि स्कूली छुट्टियां आने वाली हैं नेक्स्ट 9 वीक्स में, मिस्टर शर्मा कहीं ना कहीं टूआ पर रहेगा एवरी स्कूल छुट्टी। सो यू नो व्हाट आई एम हिंटिंग एट, आपको भी चलना है मेरे साथ, यू शुड गेट इन टच विद मी। अभी शुरू करते हैं द ड्राइव शो।
1: दिल हंस पड़े तो गाना, दिल रो पड़े तो गाना।
2: प्राउडली ब्रॉट टू यू बाय कशिश फूड्स। कशिश आटा 100% चक्की फ्रेश आटा, नाउ अवेलेबल इन ऑल स्टोर्स नेशन वाइड।
0: वो कंसिस्टेंसी के बारे में अपनी जिंदगी का वो जो मैं कथा आपको सुनाने लगा था, वो इसलिए क्योंकि मैंने देख लिया था कि कौन सा गाना आने वाला है। हाँ हाँ, ब्यूटीफुल सॉन्ग है ना, कभी अपना सा लगे कभी बेगाना, मेरे साथ तो ऐसा होगा नहीं। कंसिस्टेंसी की बात हो रही थी, रिमेम्बर।

0: And ask yourself, if you get hurt, who gets harmed? Find out more at acc.co.nz.
1: Auckland and Wellington Traffic Report.
2: सैटरडे 9 मई को तराना टीम के साथ आए शॉपिंग करने के लिए एट एनजेड बेड्स मानिकाओ सुपर सेंटर स्टोर एंड गेट सम एक्सक्लूसिव डील्स जैसे वन फ्री पिलो विद एवरी परचेज ऑफ एनी बेड.
3: ऑकलैंड सिटी सेंटर से नॉर्दर्न मोटरवे कॉन्स्टेलेशन ड्राइव 18 मिनट नॉर्थ वेस्टर्न मेसी 16 मिनट सदर्न मोटरवे मानिकाओ 33 मिनट और एयरपोर्ट 25 मिनट. वेलिंगटन सिटी सेंटर से पोरिरुआ सिटी सेंटर 20 मिनट स्टेट हाईवे 2 से लवाहट सेंट्रल 20 मिनट इसबोर्न 35 एयरपोर्ट 20 मिनट.
2: Mattresses starting from just $299. The widest range of budget beds and high-tech beds at NZ Beds. So, I inke Manukau Supercenter store mein on Saturday 9th May at the corner of Lambie Drive and Cavendish Drive. But,

0: Global costs are surging. Rising inflation is on the horizon. Beat the hike with the iFurniture Beat Inflation Sale. Grab designer sofas, dining, beds, and more at warehouse prices. Don't just watch prices go up, get ahead of them. Shop smarter at iFurniture and lock in the value today. Shop online at ifurniture.co.nz with NZ wide shipping. Visit us in Auckland, Hamilton, and Christchurch. iFurniture. Better, cheaper, smarter.
1: इस मदर्स डे को बनाए और भी स्पेशल डिजी सेल के साथ बस भेजे $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या $300 या उससे ज्यादा का कैश ट्रांसफर इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक और आपका नाम तुरंत जाएगा ड्रॉ में टू विन वन ऑफ द $15,500 कैश प्राइज तो $20 का टॉप अप भेजे या $300 का कैश और डीजी सेल के साथ मौका पाएं जीतने का $500 कैश T's and C's apply.
2: Are you having trouble with police or facing criminal charges and need someone who could best represent you in the court of law? Gul Law Legal Services. With over 20 years of expert criminal litigation experience, they know both prosecution and defense side of the law. Their founder, Mr. Gul, an ex-senior New Zealand police prosecutor, speaks your language. Choose Gul Law Legal Services, where expertise meets understanding. Visit gullaw.co.nz today. Or you can call on 02-253-0872 today.
1: चाहे पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है वेस्ट सिटी GWM हवेल हवेल की हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पर डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स आज ही वेस्ट सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेला और उनकी एक्सपर्ट टीम से मिले लिमिटेड टाइम ऑफर टीज एंड सीज अप्लाई For more information, visit westcityautogroup.nz or search on socials for West City Auto Group.
3: एक और प्यारा सा गाना मिला मुझे मैंने सोचा ये गाना आपको हम सुनवा दें ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम महबूब की यादों में जो बिता दे हर शाम बट ऐसा नहीं था ओरिजिनल कुछ और है मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम फार आउट क्या गाना है बॉस सभी आइए गाना सुनते हैं थोड़ी देर में आपसे बातें करेंगे ओके आई कैन टॉक टू यू पांच से पहले भी बातें हो सकती है आपसे

0: नमस्ते ऑकलैंड, मुश्किल वक्त में सिंग्स फ्यूनरल सर्विसेज आपके साथ हैं।
1: ये ऑफर करते हैं कंप्लीट फ्यूनरल पैकेज सिर्फ $4,299 से।
0: इस पैकेज में शामिल है ट्रांसफर्स, एम्बामिंग और सर्टिफिकेट, ग्रोवनर कास्केट, लाइव स्ट्रीमिंग, एक घंटे का चैपल सर्विस, क्रिमेशन या बुरियल, डॉक्टर सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई एंड प्रोड्यूस करना, ओवरसीज रिपेट्रिएशन अवेलेबल है।
1: ये विन्स अप्रूव्ड है, ऑकलैंड रीजन के लिए वैलिड।
0: ऑकलैंड के बाहर के लिए कॉम्पिटिटिव रेट्स के लिए कॉन्टेक्ट करें शलिन सिंह को 0272929776। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
2: इंडेलेबल होम्स आर स्पेशलाइज्ड इन बिल्डिंग हाई क्वालिटी स्टैंडअलोन एंड टेरेस्ड हाउसेस एट वेरी रीजनेबल प्राइस। Please send your RC, BC drawings and they will build for you. Visit IndelibleHomes.co.nz or call 0800-233-111. That's 0800-233-111.
3: कोई बेकार सामान है फेंकने के लिए, ई-वेस्ट हो या कोई अजीब चीज, तो उसे सीधा बिन में ना डालें। पता करें कि वो कहाँ जाना चाहिए। oaklandcouncil.govt.nz/where-it-goes पे तमाकी तुरुकी ऑलटुगेदर ओकलैंड।
4: श्री वेंकटेश्वर देवस्थानम चैरिटेबल ट्रस्ट आप सबको आमंत्रित करते हैं इनके भोजन मेला फूड कार्निवल में टू सपोर्ट लॉर्ड वेंकटेश्वर टेंपल प्रोजेक्ट।
5: ये होगा संडे 17 मई को 11 AM टू 4 PM
4: 378 RRIMU रोड रामा रामा साउथ ऑकलैंड में। एंट्री फ्री है, फ्री सॉफ्ट ड्रिंक्स रहेंगे, फ्री फूड बाय शिवानी रेस्टोरेंट एंड इडली सांबर, ज्वेलरी एंड क्लोथिंग स्टोर, हेना आर्टिस्ट, फेस पेंटिंग, बाउंसी कासल्स और बहुत कुछ।
5: और इन्फॉर्मेशन के लिए कॉन्टेक्ट करें शिवानी जी को 0218700012।
4: One temple, one community, eternal blessing.
6: Auckland and Wellington traffic report.
7: Looking to make your brand heard during the busiest hours of the day?
8: Auckland City Centre se Northern Motorway, Constellation Drive 18 minute, the Northwestern Massey 16 minutes, Southern Motorway Manukau 33 minutes or Airport 25 minutes. Wellington City Centre se Porirua City Centre 20 minutes, State Highway 2 se Lawahat Central 20 minutes, Eastbourne 35, Airport 20 minutes.
7: Sponsor Radio Tirana's traffic report. One of our most listened to segments during 6 AM to 9 AM and 3 PM to 7 PM.

गाने मस्त मस्त आपके लिए आ रहे हैं और रास्ते भी बिजी हैं, ट्रैफिक अपडेट भी लेकर आएंगे और कुछ दोस्तों से बातें करने की कोशिश करेंगे। अगर एक ही समवन वांट्स टू टॉक और ऐसा कोई प्यार भरा गाना आपको भी सुनना है आज की शाम, आपको भी हम शामिल करेंगे। टॉनी, आपका मैसेज मुझे मिला, आप भी हमारे साथ शाम के इस सफर में हो। वो गाना जो ये जो मोहब्बत है आई नाउ, वो तो आई हरी हरन की आवाज में आपको हमने सुनवाया था। आई होप आपके शहर में वेदर ठीक है। एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द AM चैनल जो रेडियो तराना का इन ऑकलैंड टू गेट अप एंड रनिंग अगेन, सो दैट जो लोग अभी हमें मिस आउट कर रहे हैं गाड़ी में, घर में, बेडरूम में, किचन में, और जो लेजी बगर्स है जिन्होंने आई हार्ट रेडियो और रोवा ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया, उनको हम वापस अपने साथ शामिल कर सकें।

0: स्वस्थ रखने के लिए अपने बेडशीट्स और पिलो केसेस को हर 7 से 10 दिन में जरूर धोएं, ताकि डस्ट, माइट्स और एलर्जीज दूर रहें। आप चिंता मत करो, ये काम स्टोरार्ड रोड लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनर्स माउंट रॉस्किल को सौंप दो। यहाँ आपको 24/7 सेल्फ सर्विस लॉन्ड्रोमैट या फिर आप अपने कपड़े यहाँ छोड़ दीजिए और यहाँ की टीम वॉश, ड्राई और फोल्ड करके आपको कपड़े दे देंगे। स्टोरार्ड रोड लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनर्स 220 स्टोरार्ड रोड माउंट रॉस्किल, आसान, भरोसेमंद और 24/7।
1: You could be losing around $100 a year through sneaky drafts in your home. Using draft stoppers or window seals is a simple way to keep the heat in. Search EECA, that's EECA, get winter ready.
2: With local grants, anytime you play a Lotto NZ game, it's a win for your local community. Because 100% of profits go back into wins across Aotearoa. Cheers, Lotto NZ players.
3: India jana hai? तो सफर भी तो वैसा ही होना चाहिए। Fly with Air India from New Zealand. Easy return connections via Australia or Singapore to India. और फिर seamless travel within India. दिल्ली हो या अमृतसर, मुंबई हो या अहमदाबाद, Air India connects you to every corner of India. वही अपनी भाषा और वही अपना स्वाद और वही friendly Indian hospitality के साथ। तो अगली बार घर का सफर हो, Fly Air India. For more information, visit your local travel agent today.
4: Auckland and Wellington traffic report.
5: पैसिफिक में अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को भेजे डिजिसेल का $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप, या करे कैश ट्रांसफर $300 या उससे ज्यादा का इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माय कैश वॉलेट के साथ और जीते एक्साइटिंग प्राइजेस।
6: आज 5 बजे के बाद ऐसा करेंगे कि कुछ गानों की झलकियां आपको सुनवाएंगे और आप डिसाइड करना कि आपको क्या सुनना है, ठीक है? वी विल जस्ट कीप इट सिंपल, एकदम सिंपल। मिड वीक हम डे, आज दिन की शुरुआत वैसे सोनल के साथ में आपने किया था, ओके, डिफरेंट था थोड़ा सा। और यप, कल उन्होंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया, आज सुबह सुबह प्रोग्राम, तो बहुत ही हार्ड वर्किंग हमारे छोटे शर्मा साहब। ऑकलैंड में नॉर्दर्न मोटरवे कॉन्स्टेलेशन 45, नॉर्थ वेस्टर्न मैसी 50, मैनिकाओ 55 और एयरपोर्ट 30 मिनट्स लगेगा। और इसके अलावा उधर वेलिंगटन में स्टेट हाई 1 से परिरुआ 26, लवाहट 30 और इस बॉर्न 40 मिनट्स, एयरपोर्ट 20 मिनट्स लगेगा।
5: बी इन द ड्रॉ टू विन वन ऑफ 15 $500 कैश प्राइजेस दिस मदर्स डे विद डिजिसेल। तो भेजे $20 का टॉप अप या $300 कैश टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक।
7: इस हफ्ते के स्टार ऑफ द वीक हैं म्यूजिक डायरेक्टर दिलीप और समीर सैन।
8: ब्रॉट टू यू बाय केएमबी कंस्ट्रक्शन, नया घर बनाना है और रिलायबल, ऑनेस्ट और कमिटेड कंस्ट्रक्टिंग सर्विस चाहिए तो कॉल करें भूपेंद्र कुमार को 0218748711 पर।

0: Rana.
1: Proudly brought to you by Indelible Homes. Phone 0800 233 111. Website indelibleHomes.co.nz.
2: वेंसडे की शाम है, 5 बज चुके हैं. गुड इवनिंग.
3: दिस इज तराना न्यूज.
4: समाचार सुनिए संजेश नारायण से. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ में समझौते को अंतिम रूप देने के लिए उन्होंने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में फंसे जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए अमेरिकी प्रयास को रोक दिया है. ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि युद्ध समाप्त करने के लिए ईरान के साथ समझौता करने के अमरीकी प्रयासों को समय देने के लिए वह थोड़े समय के लिए इस प्रयास को रोक रहे हैं. ट्रंप ने पोस्ट में कहा कि वह ये कदम पाकिस्तान और अन्य देशों के अनुरोध ईरान के खिलाफ अभियान के दौरान मिली जबरदस्त सैन्य सफलता और साथ ही ईरान के प्रतिनिधियों के साथ पूर्ण और अंतिम समझौते की दिशा में हुई महत्वपूर्ण प्रगति के आधार पर उठा रहे हैं. मीडिया एंड कम्युनिकेशंस मिनिस्टर पॉल गोल्डस्मिथ ने कहा है कि सरकार ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को समाप्त कर रही है. सरकार ने बदलते मीडिया उद्योग के बीच में इस मीडिया नियामक की भूमिका यानी कि ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी की भूमिका को अनुचित मानते हुए इसे भंग करने का निर्णय लिया है. देश में पे इक्विटी स्कीम में एक साल पहले घोषित किए गए बदलाव को लेकर के यूनाइटेड नेशंस में शिकायत दर्ज कराई गई है. न्यूजीलैंड काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस सहित ह्यूमन राइट्स कमीशन ने यूनाइटेड नेशंस से ये जांच करने का अनुरोध किया है कि क्या ये बदलाव महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के दायरे में आते हैं. सरकार ने पिछले कानून को फिर से लिखा और लगभग 180,000 मजदूरों को कवर करने वाले मौजूदा वेतन समानता यानी कि पे इक्विटी स्कीम को रद्द कर दिया है. पे इक्विटी स्कीम इसलिए लाया गया था ताकि महिलाओं और पुरुषों को एक ही काम के लिए एक समान वेतन भरा जाए. पे इक्विटी के लिए दावे करने वाली महिलाओं में ज्यादातर के सेक्टर डिसेबिलिटी एजुकेशन हेल्थ कम्युनिटी और सोशल सर्विसेज में कार्यरत थी. साउथ आइलैंड के मोसगेल में 33 वर्षीय एक महिला की लाश मिली है. पुलिस 33 वर्षीय महिला कैसी की तलाश कर रही थी जिन्हें अंतिम बार पिछले शुक्रवार की सुबह 8 बजे रिकटन रोड वेस्ट में देखा गया था. महिला की मौत को संदेह की नजर से नहीं देखा जा रहा है. उनकी मौत की जांच कोरोना करेंगे. मिस स्विट्जरलैंड प्रतियोगिता की फाइनलिस्ट पत्नी की हत्या करने और उनके शव को ब्लेंडा में डालने के आरोपी व्यक्ति को उनके वकील ने आदर्श पति बताया है. 43 वर्षीय मार्क रेबन पर जिक्सो सहित नाइफ और गार्डन शीयर्स को काम में ला करके पत्नी क्रिस्टिना जैक्सकोमोविक की लाश को काटने और उसे किचन अप्लायंस में डालने के आरोप लगे हैं. घटना फरवरी 2024 की है. उन्होंने दावा किया कि सेल्फ डिफेंस में उन्होंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी. महिला के शरीर से कुछ ऑर्गन्स निकालने के संबंध में भी उन पर चार्जेस लगेंगे. दंपति के पास में 5 और 6 साल के 2 बच्चे बताए गए हैं. मार्क रेबन को उम्र कैद की सजा हो सकती है. तमिलनाडु में बहुमत से कुछ सीटें दूर रही विजय की टीवीके पार्टी जल्द ही सरकार बना सकती है. बताया जा रहा है कि कांग्रेस के समर्थन से टीवीके सरकार बना सकती है. रिपोर्ट में कहा गया है कि कांग्रेस ने तमिलनाडु में टीवीके को समर्थन देने का फैसला किया है. इससे पहले कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दावा किया था कि विजय ने सरकार बनाने के लिए कांग्रेस से समर्थन मांगा है. विजय के पूर्व प्राइम मिनिस्टर वारेंगे बेनीमरामा और पूर्व पुलिस कमिश्नर सिथिवेनी गिलहियो के विद्रोह भड़काने वाले मामले को हाईकोर्ट खिसका दिया गया है. दोनों को आज मजिस्ट्रेट योगेश प्रसाद के समक्ष पेश किया गया. डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशंस जॉन रंबुकू ने अदालत को बताया कि सरकारी पक्ष चार्जेस में कुछ बदलाव करना चाहता है. बचाव पक्ष ने इसका विरोध नहीं किया. रंबुकू ने कहा कि चार्जेस में जो संशोधन किए जाएंगे बचाव पक्ष को उसके बारे में जानकारी दी जाएगी. बेनीमरामा और गिलहियो से आरोप स्वीकार करने या न करने के बारे में नहीं पूछा गया. मामले की अगली सुनवाई 5 जून को होगी. बेनीमरामा और गिलहियो को जमानत पर रिहा किया गया है. दोनों पर आरोप लगा है कि उन्होंने सेना के कमांडर मेजर जनरल चोने कलोनोवाई को पद से हटाने और सेना का कमान अपने हाथ में लेने के लिए सेना के कुछ आला अफसरों को संपर्क किया था. जेरम लोवाई ने पीएनजी चीफ्स टीम ज्वाइन करने का फैसला किया है. साल 2028 से पीएनजी चीफ्स टीम को एनआरएल में शामिल किया जाएगा. लोवाई जो कि अभी वेस्ट टाइगर्स क्लब के साथ में है ने पीएनजी चीफ्स क्लब में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की है. उन्हें लुक्रेटिव टैक्स फ्री सैलरी का ऑफर मिला है.
0: ऑकलैंड एंड वेलिंगटन ट्रैफिक रिपोर्ट।
1: पैसिफिक में अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को भेजे डीजीसेल का $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप, या करे कैश ट्रांसफर $300 या उससे ज्यादा का इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ और जीते एक्साइटिंग प्राइजेस।
5: ओके, लेटेस्ट ट्रैफिक अपडेट आपके लिए लेकर आते हैं और अभी वेलिंगटन वाला पहले देखते हैं। वेलिंगटन में पोरिरुआ तक 26 मिनट्स, लवाहट 30 मिनट्स और एयरपोर्ट 20 मिनट लगेगा। एंड इफ यू लुक एट ओकलैंड में अभी सिटी से कॉन्स्टलेशन 45, मैसी 50 मिनट्स, एक क्रैश रिपोर्ट किया गया है लिंकन रोड के करीब, और मैनिकाओ 55 मिनट्स, एयरपोर्ट 30 मिनट्स लगेगा।
1: बी इन द ड्रॉ टू विन वन ऑफ 15 $500 कैश प्राइजेस दिस मदर्स डे विद डिजीसेल। तो भेजे $20 का टॉप अप या $300 कैश टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक।
6: टर्न अ ड्राइवर

ओके, अभी 6 मिनट हो गए हैं 5 बजकर, और जितने भी दोस्त अभी रास्ते में हैं और अपना मोबाइल सिस्टम आपने गाड़ी के साथ कनेक्ट कर रखा है इंफोटेनमेंट सिस्टम पर, आप सुन रहे हो ये ड्राइव शो, आपका स्वागत है। और वेलिंगटन में FM डायल पर और साथ में जहां कहीं भी दुनिया में आप हो, आपका स्वागत। और इनके साथ में उधर आज जैन ईस्किंग अपना बर्थडे मना रहे हैं। जैन, आपकी वाइफ और बेटियों ने और डैस की ओर से और द शर्मा ब्रदर्स की ओर से भी आपको हैप्पी बर्थडे। वेंसडे को कभी कभी हम स्वेग से स्वागत लेकर आते हैं, कभी चैट एंड चाय विद कैप्टन, लेकिन आज नॉर्मल म्यूजिकल शो ही रखेंगे हम।

यो तराना का नंबर, और अभी डायरेक्ट कैप्टन से आप बातें कर सकते हो। वैसे मेरा नंबर भी काफी लोगों के पास है ना। यू हैव डन द राइट थिंग। जब मैं छुट्टियों में टूर्स पर होता हूँ, ओवरसीज होता हूँ, आप दोस्त मुझे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप के जरिए डायरेक्टली। ओके, और टूर्स की बात हुई, अभी एक मैसेज आया कि जुलाई में कौन सा टूर है, बहुत ही फेमस है, अबाउट 15-20, नहीं 15-20 नहीं, अबाउट 12-14 लोगों को मैंने कहा जुलाई वाला फुल हो गया बॉस, नेक्स्ट ईयर के लिए अच्छा नंबर जो है इकट्ठा हो गया फॉर माय जापान टूर। ओके, सो दैट्स समथिंग आई विल हैव टू टॉक अबाउट एंड थिंक अबाउट। बट यस, अभी आप बताएं कि कौन सा गाना आपके लिए मैं पेश करूं। तो वो जो गाने हैं वो आपको मैं सुनवाऊंगा। शेली, आज आप काफी एक्साइटेड, आपके हस्बैंड का बर्थडे। अरुण, लता, हाय, कैप्टन से नहीं चलेगा, आप बताओ अरुण कौन सा गाना आप सुनना चाहते हो, और आपका गाना जो है मैं अभी आपको सुनवा सकता हूँ। अदरवाइज आजकल एक ही गाना मैं सुन रहा हूँ रिपीट पर, सुबह से लेकर शाम तक उसी गाने से आपको मैं बोर करूंगा। एंड यू विल से, हे भगवान हमें कोई कैप्टन से बचाओ। ओके, सो यप, वेलिंगटन में अभी मौसम कैसा है? मैं देख रहा था ऑकलैंड में बदरी बदरी, इट्स ओनली 18 डिग्रीज। कल भी ऐसा ही वेदर रहेगा, मैक्सिमम 21 जाएगा। वेलिंगटन में भी 18 डिग्रीज है, वहां पर थोड़ी धूप आई थिंक स्पेशल अपीयरेंस में मिल रही होगी लोगों को। ओके, कुछ कुछ जगहों के लिए बताया गया है कि कल बूंदाबांदी होगी, सो प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दैट। वेरी क्लोज टू द वीकेंड हम आ गए हैं, एंड दिस वीक थोड़ा सा लंबा लग रहा है मुझे भी, और आपको भी लग रहा होगा। जानते हो क्यों? क्योंकि लास्ट वीक छोटा था, यू नो वी हैड अ पब्लिक हॉलीडे, मंडे छुट्टी, और फिर उसके बाद में केवल ट्यूसडे से फ्राइडे वाला वीक, फिर उसके बाद इट वाज इजी पीजी आपके लिए, पूरा हफ्ता ऐसे ही बीत गया। आई नो अकाउंटेंट्स जो होते हैं फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ काफी बिजी होते हैं, तो जितने भी लोग अभी भी अपने अकाउंट्स वाला काम कर रहे हैं उनका भी खास स्वागत करते हैं आज की शाम रेडियो तराना पर। कुछ लोग मैसेज करके काम चलाते हैं बॉस, नो गुड। नोमा, आपने कहा कॉल भी कर सकती थी आप, आपने कहा कौन सी है वो चीज जो यहां नहीं मिलती। गुलशन अग्रवाल, आपने कहा लुक्का छुपी, दैट्स अ लवली सॉन्ग है ना, इट्स अ ब्यूटिफुल सॉन्ग, लुक्का छुपी, आई शुड लुक फॉर दैट सॉन्ग मैन। और एक और गाना है आमिर खान की फिल्म से था, रिमेम्बर वो भी गाना, माँ वाला गाना, इट वॉज अ लवली सॉन्ग। अब मुझे लुक्का छुपी मिल जाए तो बड़ा मेहरबानी होगी। ए कान फाइंड दैट सॉन्ग ऑन आवर सिस्टम, होता है बॉस, ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा उसका ना टाइटल है। Okay, let me see. कौन सी है वो चीज, इफ आई टाइप इट अप स्टिल डजंट कम। ब्रो, दिस इज आवर म्यूजिक लाइब्रेरी, थैंक यू वेरी मच।

0: Warehouse have now opened in Fangaparoa. Find the new Chemist Warehouse in Fangaparoa next to the Coast Shopping Mall.
1: With the biggest range of all your health and beauty essentials at the lowest prices, they've got everything you need to look and feel your best. They are open 7 days a week from early till late, including public holidays. If you can't make it in-store, shop online 24/7. Chemist Warehouse, great savings every day.
2: यार मुझे फिजी जाना था।
3: कब जाना है?
2: दिसंबर की छुट्टियां हो जाए तब जाएंगे।
3: रेंटल सॉर्ट आउट कर लिया?
2: नहीं यार, नहीं मिला कुछ।
3: आई थिंक यू शुड कॉन्टेक्ट कोस्टल रेंटल कार्स। इनके पास फैमिली कार्स, SUVs और सभी लग्जूरियस गाड़ियां हैं और गाड़ियां अच्छी कंडीशंस में।
1: कोस्टल रेंटल कार्स, विजिट coastalrentalcars.com.fj और फॉर बुकिंग्स कॉल ऑन 0067965202228।
3: एक्सप्लोर फिजी द कोस्टल वे।
4: कौन?
5: मैं यमराज हूँ।
4: ओह, जय हो महाराज। लेने आए हो तो चलो।
5: कमाल है, जाने की इतनी जल्दी?
4: हाँ, मैंने अच्छी लाइफ जी है अभी तक और आगे मेरे फैमिली का भविष्य भी एकदम सेट है। ग्लोबल फाइनेंस वालों ने मेरा लाइफ इंश्योरेंस एकदम अप टू डेट कर रखा है।
5: फिर तो तुम्हें यहाँ कुछ और दिन रहना चाहिए और ये ज्ञान सब में बांटना चाहिए।
4: ओके, थैंक यू महाराज, मैं बांटता हूँ ये ज्ञान। सभी को कॉल करना चाहिए ग्लोबल फाइनेंस को 09255-5500 पर।
1: अपनी डेली कुकिंग को बनाए और भी हेल्दी और भी टेस्टी कशिश ब्रांड के रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स के साथ। और अब आप इंजॉय कर सकते हैं कशिश का फ्रेश डोसा बैटर फॉर सॉफ्ट फ्रेश इडलीज एंड क्रिस्पी डोसास। अपनाए कशिश का डोसा एंड इडली बैटर। और सीमित समय के लिए इनकी एक्साइटिंग ऑफर में डोसा बैटर रेंज में से कोई भी डोसा बैटर लें और साथ में पाए 250 ग्राम्स का कशिश जिंजर गार्लिक पेस्ट फ्री। नो एडेड केमिकल्स, नो विनेगर, फ्रेशली ग्राउंड इन न्यूजीलैंड जिंजर गार्लिक पेस्ट बाय कशिश। और कशिश का डोसा बैटर अवेलेबल एट ऑल मेजर इंडियन आउटलेट्स।
6: कशिश फूड्स की ओर से टाइम चेक भी लेकर आते हैं। कशिश फूड्स की ओर से आपके लिए जो मेरा सेगमेंट होता है तराना ड्राइव मस्ती 427 में, सबसे पहला वाला जिसमें बस बजना चाहिए गाने आपको सुनवाते हैं हम, वो भी इनकी ओर से लेकर आते हैं। तो आप वीकेंड में जाए शॉपिंग करने के लिए तो इनका कोई ना कोई प्रोडक्ट आप भी ट्राई करें।
7: ऑकलैंड एंड वेलिंगटन ट्रैफिक रिपोर्ट।
0: इंडेलिबल होम्स, trusted and experienced subdivision and build specialist, call 0800 233 111।
6: ऑकलैंड में कॉन्स्टेलेशन 45, मैसी 50, मैंने कहा 50 और एयरपोर्ट 30 मिनट्स लगेगा और वेलिंगटन में आई थिंक अभी पोरिरुआ तक पहुंचने में 26, लवाहट 27 और साथ में 26 और 27, 26 27 कुछ लोग से हाँ वो कहता होता है। ओके, और एयरपोर्ट 20 मिनट लगेंगे, 20 मिनट सिंपल।
0: Indelible Homes, they specialize in building standalone and terraced houses and provide 10 years master builder guarantee. Built with Indelible Homes.
6: Okay, एक भाई साहब वेलिंगटन में है जो सुन रहे हैं। जब मैं ओनिया होता हूँ, स्टूडियोज में पहले के जमाने में होते थे, अगर कोई टेलीफोन करता था तो वो टेलीफोन वाला जो हैंडसेट जो उठा के कान में लगाकर हम बोलते थे हेलो, वो भी किया है हमने। हालांकि टेलीफोन जो है स्टूडियोज में वो साइलेंट पर होते थे, अदरवाइज अनाउंसर बात कर रहा होगा और पीछे से ट्रिंग ट्रिंग की आवाज सुनाई दे, बाप रे बाप, चौक जाए अनाउंसर भी और लिसनर्स भी। तो वो उठाकर कई बार हमने बातें करते करते हैंडसेट से फिर कहा है जस्ट होल्ड ऑन, आई विल टॉक टू यू इन अ मिनट, ऐसे किया है। ये भाई साहब को मैंने होल्ड पे रखा, इन्होंने काट दिया। वेलकम बैक, सुनो। वो इफेक्ट नहीं है बॉस, सब नहीं वो इफेक्ट ला पाते हैं, सुनो वाला।
8: वो तो है।
6: आई नो, कुछ कुछ लोग ऐसे सुनो वाला इफेक्ट ला सकते हैं। अजी सुनते हो?
8: वैसा बोले अजी सुनते हो?
6: नहीं, डरवाना भी नहीं है। जैसे जैसे भाभी जी जब वो अंडा बनाई थी, जो प्रकार का अंडा हमने खाया आपके घर पर, यू नो कितना डजन खा लिया हमारे भूखे दोस्तों ने उस दिन, आप भूखे नंगे दोस्त जो हमारे साथ थे आपके घर पर, आपने भी नहीं एक्सपेक्ट किया होगा कि इनका कैपेसिटी कितना है। अभी जब हम यू नो टूर पर लोगों को ले जाते हैं, यू नो जब हम सब वो कर देते हैं कि ओके ब्रेकफास्ट तो ठीक है, यू नो बफे होता है तो लोग खाते हैं जितना खाना है, फिर उसके बाद लंच के टाइम भी आगे पीछे करते हैं कि पेट भरा है अभी, लेकिन कहीं पर हमने बुक कर दिया रेस्टोरेंट और बफे किया, और ये हम अपने दोस्त ज्यादातर अपने यू नो हमारे साथ ट्रेवल करने वाले फीजी इंडियंस ही ज्यादा होते हैं, अब जाकर हमारे साथ इंडिया इंडियंस भी शामिल होने लगे हैं, थैंक यू फॉर दैट, इवन दो दे फ्रॉम इंडिया वो हमारे साथ घूमने लगे हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, दैट इज नाइस। लेकिन ये कैपेसिटी जो हमें हमारे खाने का है वो रेस्टोरेंट वाले चौक जाते हैं, बॉस वो बना के रखा और सोचे हम लेकर आ रहे हैं 20 लोगों को और पूरा फिल किया हुआ है पूरा, सब यू नो जितने भी वो ट्रेज हैं सब फिल है, दो मिनट नहीं लगा, अभी केवल 10 लोग ही पहुंचे हैं वो खत्म हो गया, बाकी के लोग इंतजार कर रहे हैं भाई साहब कहाँ गया, या फिर वो जो फिश करी है या एक करी है या यू नो चिकन करी है उसमें से चिकन चिकन चला गया, केवल शुरुआ ही ऐसे ग्रेवी ही ताक रहा है यू नो डिश में, वो भी सोच रहे हैं लोग बाप रे बाप।
8: लेकिन एंड में अच्छा हुआ मैनेजर ने पूछा कि कौन से देश से आए भाई तुम लोग,
6: धीरे से आकर पूछता है भाई साहब नो मैंने नहीं सोचा, वो सोचते हैं कि ओवरसीज से आए हैं लोग, न्यूजीलैंड से आए हैं, और कभी कभी तो सोचते होंगे कि ओके न्यूजीलैंड के टूरिस्ट है तो गोरे लोग होंगे शायद, और यू नो वो थोड़ा सा ऐसे लेंगे यू नो बहुत डाइट कॉन्शियस है, थोड़ा सा ये ले लिया थोड़ा सा सलाद ले लिया ये ले लिया, बट नहीं खाना है वहां से उठने में एक आदमी हाथ देगा कि उठो भाई खींच के उठाते कि उठ जाओ, एंड मी इंक्लूडेड क्योंकि यू नो इंडिया स्पेशली इंडिया साउथ इंडिया स्पेशली जो स्पाइसी और डिलीशियस यम यम तरह यू नो प्रकार के खाने वाह, और फिर उसके बाद 4-5 kg एकदम ऊपर 4-5 kg श्योर शॉट। अच्छा कोई गाना बताओ
8: ग्रुप नहीं लेना भाई।
6: आई नो किसी और नाम से हम बुकिंग करवाएंगे, लेकिन सच में उस दिन जो भाभी जी ने बनाया था वो जिस तरह से फ्राई किया था उसको बाप रे बाप, अब लोग भी सोचते होंगे कि कैसा फ्राई अंडा फ्राई, भुजिया उजिया की बात नहीं हो रही, बॉईल करना है पहले अंडे को, तुम्हें मालूम कैसे करते हैं वो?
8: हाँ, हमें पता
6: उसको बॉईल करना है फिर उसके बाद क्या करते हैं बताओ अब आगे, मैंने बॉईल कर दिया छिलका निकाल दिया उसको हाफ में काट दिया ठीक, अब आगे क्या करना है?
8: हाफ में काट दिया उसके बाद क्या होता है कि जैसे कोरिएंडर होता है ग्रीन कोरिएंडर होता है और उसके बाद वही जो अपने जो गरम मसाला कैसे होता है जैसे वो मसाला लेते हैं उसमें
6: बट वो चिपकेगा कैसे अंडे में, उसका पेस्ट बनाते हैं क्योंकि वो चिपकेगा अंडे में कैसे वो ऐसा मसाला ऐसे
8: क्या करने का जो होता है वो क्या कहते हैं फ्राई पैन
6: हाँ
8: उसमें उसको ऑयल डाल के थोड़ा वो करते मिक्स करते हैं वो मसाले को
6: ओके
8: हाँ उसके बाद फिर वो अंडा उसमें ऐसे डुबोते ऐसे और फिर वो बस हो जाता है।
6: ये बात है देखो सीख लिया बातों ये बात, मैं भी सोच रहा था कि किसी तरह का पेस्ट लगाते होंगे, नहीं वो सब तेल में मसाले जाते हैं वो ग्रेवी की तरह थोड़ा सा होता है उसमें अंडा जाता है ना ऐसे एक एक पीस ऐसे करके एक तरफ इधर पक गया फिर उलट दिया उधर पक गया फिर उसके बाद देखो ये हमारे नंगे फकीर नहीं आना हम व्रत पे हैं अभी।
8: मैंने कभी खाया नहीं, आई थिंक अंडे को ही खाया है एक्चुअली।
6: ओ ब्यूटिफुल मैन दैट वॉज नाइस, एवरी टाइम आई थिंक ऑफ दैट, और कभी कभी यू नो होता ऐसे ही मैंने इंडिया में बता दिया था यू नो वो जो छोले भटूरे के लिए पूरियां होती हैं बड़ी बड़ी तो वो देखा रोज मैं खा रहा हूँ यू नो नॉर्मल यू नो थोड़ा कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, एक दिन मैंने पूरी उरी देख ली तो मैंने सोचा कि ओके अंडा तो रोज खाते हैं स्क्रैम्बल्ड एग रोज खाते हैं ऑमलेट रोज खाते हैं सनी साइड अप रोज खाते हैं, आज मैं जाकर शेफ को बताता हूँ कि अंडा भुजिया बनाना मेरे लिए यू नो मैंने उनको समझाया नहीं कि उसको फ्राई करना उसमें थोड़ा सा नमक और साथ में प्याज और ये सब डाल के मिर्च वगैरह थोड़ा सा फ्राई करना है यू नो बट उनको बताया नहीं कि वो अंडा बॉईल नहीं करना है अंडा वैसे ही कच्चा अंडा उसको फोड़ना है वो फ्राइंग पैन में विद नो ऑल दिस उन्होंने बॉईल अंडा का वैसे बनाकर लाकर दिया बहुत बेकार लगा था भाई साहब। बॉईल अंडा इन मसाला ड्राई मसाला बोला ये क्या है भाई साहब। चलो अच्छा लगा कुछ एक्सपीरियंसेस अच्छे होते हैं बॉस। आप बताओ मदर्स डे वाला कोई गाना सुनना है आपको?
8: वो जो लाडला मूवी का सॉन्ग है ना,

0: drawing inspiration from urban communities around the world.
1: We present Pick O Toy Toy, a brand new urban development in Papatoetoe. Brick, low maintenance, 2 and 3 bedroom homes from 649,000.
0: 5 minutes from New World, eateries, schools, City Rail Link, Pohinui Bus Interchange and major motorways.
1: Join the new community. Selling now. Find out more at pikotoetoe.nz.
0: That's pikotoetoe.nz.
2: Gift instant joy this Mother's Day with Instant Kiwi. Whether you've got flowers, chocolates or a good book, Instant Kiwi is the perfect something extra to spoil her with. Get a $10 gift back from your local Lotto NZ store. R18.
3: At Bunnings Trade, we've got your next build covered from foundation to finish. With our estimating and takeoff service, our team provides costings and calculated quantities, then partner with local suppliers to keep you covered throughout your build. Call us on 0800 134 872. Bunnings Trade.
4: New Zealand ke kai bade bade events mein hone wale jo bade bade marquee aap dekhte hai na, are Mangal Diwali Sikh Games mein ye marquee events Auckland marquee and party hire ke hain. 20 सालों से हैं बिजनेस में. इनके माँ की बड़े स्ट्रांग होते हैं बॉस. घर पे फंक्शन हो तो टाइम पर माँ की लग जाएगा और टाइम पर उतर भी जाएगा. इवेंट्स ऑकलैंड का नंबर लिखें 09265 0505 और सुनिए, ये पोर्टल लो भी हायर पर देते हैं. इवेंट्स ऑकलैंड को कॉल करें 09265 0505
0: और तराना का नाम मेंशन करने पर आपको स्टेज हायर्स, मंडप और मार्किस पर अप टू 5% का डिस्काउंट भी मिलेगा.
5: ऑकलैंड एंड वेलिंगटन ट्रैफिक रिपोर्ट.
6: होम ऑफ द नंबर वन कशिश बासमती राइस. लॉन्ग ग्रेन, सॉफ्ट और एरोमेटिक. अब सबके किचन में प्रीमियम बासमती का ऑथेंटिक टेस्ट.
7: ऑकलैंड सिटी सेंटर से नॉर्दर्न मोटरवे कॉन्स्टेलेशन 48 मिनट्स, नॉर्थ वेस्टर्न मैसी 41 मिनट्स, सदर्न मोटरवे मैनिकाओ 1 घंटा से ज्यादा 1 hour 5 minutes और साथ में उधर एयरपोर्ट 46 मिनट्स. वेलिंगटन सिटी सेंटर से स्टेट हाईवे 1 से पोरिरुवा सिटी सेंटर 24 मिनट, लोअर हट सेंट्रल 30 मिनट, इस्बोर्न 40 और एयरपोर्ट 22.
6: क्वालिटी जो आप ट्रस्ट कर सकते हैं. चूज कशिश बासमती राइस फ्रॉम कशिश फूड. ईट बेटर, लिव बेटर. अब लीडिंग स्टोर्स में अवेलेबल अक्रॉस न्यूजीलैंड.
8: टर्न अ ड्राइवर

0: घर बनाना स्टार्ट किया है, अब तो टेंशन ही टेंशन है।
1: बिल्डर कौन है तुम्हारा?
0: डिसाइड ही नहीं किया, सब अलग अलग बातें बोल रहे हैं।
1: सिंपल, KMB कंस्ट्रक्शन से बात कीजिए, वो घर ऐसे बनाते हैं बिना स्ट्रेस, टाइम पे और बजट के अंदर। 18 इयर्स का एक्सपीरियंस है ओकलैंड में, और जो काम लेते हैं कंप्लीट करके ही देते हैं। भूपेंद्र कुमार को कॉल कीजिए 0218748871 पर, या विजिट कीजिए KMBConstruction.co.nz।
2: KMB कंस्ट्रक्शन, घर बनाए बिना स्ट्रेस।

0: पंखा रखना हो गर्म या ठंडा, रिलायंस वेंटिलेशन का हाजिर हो जाएगा बंदा। कॉल अस नाउ फॉर अ फ्री कोट ऑन 0800-787-111।
1: रिलायंस वेंटिलेशन मेक्स हैप्पी हेल्दी होम्स।
2: दिस इज अ ह्यूज रिमाइंडर, सॉरी दैट वाज अ बिट मच। This is your big reminder to do their little job of getting your winter immunizations, including flu, booked in now. They're available through bookmyvaccine.nz or your healthcare provider.
3: यार मुझे फिजी जाना था।
4: कब जाना है?
3: दिसंबर की छुट्टियां हो जाए तब जाएंगे।
4: रेंटल सॉर्ट आउट कर लिया?
3: नहीं यार, नहीं मिला कुछ।
4: I think you should contact Coastal Rental Cars. इनके पास फैमिली कार्स, SUVs और सभी लग्जूरियस गाड़ियाँ हैं और गाड़ियाँ अच्छी कंडीशन में।
5: Coastal Rental Cars, visit coastalrentalcars.com.fj or for bookings call on 00679-652-0228.
4: Explore Fiji the coastal way.
6: इस हफ्ते के स्टार ऑफ द वीक हैं म्यूजिक डायरेक्टर दिलीप और समीर सैन।
7: ब्रॉट टू यू बाय केएमबी कंस्ट्रक्शन। नया घर बना रहे हैं या एक्सटेंशन कर रहे हैं तो आज ही कॉल करें भूपेंद्र कुमार को 01874871 पर।

थप्पड़ लगाए या गम का नकाब हंसी पर या हजार बार समझाएं माँ सच्ची कुछ नहीं हुआ है। अच्छा बेटा फिर मुंह क्यों इतना उतरा हुआ है।

0: आप सभी को तराना टीम की तरफ से हैप्पी मदर्स डे।
1: रेडियो तराना, टाइम चेक, टाइम चेक।
2: प्राउडली ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स। फोन 0800 233 111। वेबसाइट indelibleholmes.co.nz।
3: एक और शाम ढल गई, बाहर देखिए ढल गई है ना, या ढल रही है धीरे धीरे। अभी 6 बज चुके हैं हमारे स्टूडियोज में। गुड इवनिंग,
4: दिस इज तराना न्यूज।
5: समाचार सुनिए संजेश नारायण से। न्यूजीलैंड सरकार सिटीजनशिप बाय ग्रांट के लिए एक नई नागरिकता परीक्षा यानी कि सिटीजनशिप टेस्ट शुरू करने जा रही है। 2027 के अंत से जो लोग सिटीजनशिप बाय ग्रांट के लिए एप्लीकेशन करेंगे उन्हें ये परीक्षा देनी होगी, जिसमें बिल ऑफ राइट्स एक्ट, क्रिमिनल ऑफेंसेस, वोटिंग राइट्स, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स और गवर्नमेंट स्ट्रक्चर से लेकर के ट्रेवल टू एंड फ्रॉम न्यूजीलैंड से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। एप्लीकेंट्स के लिए जरूरी होगा कि वे 75% प्रश्नों का सही जवाब दे। सवालों के लिए मल्टीपल च्वाइस होंगे। न्यूजीलैंड सिटीजनशिप बाय ग्रांट के लिए तभी आप अर्जी लगा सकते हैं जब आप देश में 5 सालों तक रेसिडेंट वीजा पर रह चुके हैं। आपके लिए बेसिक इंग्लिश और गुड कैरेक्टर होना जरूरी होगा और 5 सालों के अंदर आपके लिए जरूरी होगा कि आप 1350 डेज न्यूजीलैंड में रहे हों। वर्तमान में जो लोग सिटीजनशिप बाय ग्रांट के लिए अर्जी लगाते हैं उन्हें बस एक डेक्लरेशन पर ही हस्ताक्षर करना होता है, वे टेस्ट नहीं करते हैं, लेकिन साल 2027 से नया टेस्ट लाया जा रहा है। ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज का कहना है कि होम लोन रेट सिर्फ OCR के बढ़ने से ही नहीं बढ़ाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि और भी कई कारण हैं कि क्यों होम लेंडिंग रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं। रेडियो तराना के साथ बातें करते हुए ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय कुमार ने बताया कि होलसेल रेट्स के कारण भी देश में होम लेंडिंग रेट्स में बढ़ोतरी देखी जा रही है।
6: बैंक जब रेट जब भी बढ़ाते हैं, जब होलसेल मार्केट में रेट बढ़ जाता है और इस समय होलसेल रेट बढ़े हैं, इसलिए बैंकों ने अपने रिटेल रेट भी बढ़ा दिए हैं। और मेन चीज ये है कि पहले ये महसूस किया जा रहा था कि इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल रहेगा, OCR नीचे ही रहेगा, OCR नहीं बढ़ेगा, बट अभी ऐसा देखा गया है कि फील प्राइसेस बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा है और इन्फ्लेशन जो रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड है या रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया भी है, तो वो दोनों ही जो हमको क्लोजली इम्पैक्ट करते हैं दोनों।
5: अजय कुमार से हमने जानना चाहा कि जो लोग इंटरेस्ट रेट के ऊपर जाने को लेकर के चिंतित है वे क्या कर सकते हैं।
6: मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि अगर आपने किसी प्रकार का भी लोन लिया हुआ है और लेने की सोच रहे हैं तो डिस्कस कीजिए किसी एडवाइजर से या एक्सपर्ट से और ये फाइंड आउट कीजिए कि आप कैसे अपना बेनिफिट कर सकते हैं, क्योंकि रेट एंड टर्म्स आपके कंट्रोल में नहीं है, ये तो बैंक डिसाइड करते हैं, मार्केट डिसाइड करता है, पर जो चीजें आपके कंट्रोल में है, आपके कंट्रोल में है आपकी इनकम, आपके कंट्रोल में आपके एक्सपेंसेस, आपके कंट्रोल में है आपका मॉर्गेज, आपके कंट्रोल में है उसका मैनेजमेंट।
5: देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट में गिरावट हुई है। देश में 163,000 लोग अनएम्प्लॉयड है। पिछले क्वोटा में 165,000 या 5.4% लोग अनएम्प्लॉयड थे।
4: स्पोर्ट्स न्यूज।
5: चेन्नई सुपर किंग्स इंडियन प्रीमियर लीग मैच जीतने के बाद में पॉइंट्स टेबल पर छठे स्थान पर चली गई है। दिल्ली कैपिटल्स को उसके होम ग्राउंड में चेन्नई सुपर किंग्स ने 15 बॉल्स के रहते 8 विकेट से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल ने 20 ओवर्स में 155.47 बनाए थे। जवाब में 17.3 ओवर्स में चेन्नई सुपर किंग्स ने 159.42 बनाने के बाद में इस मैच को अपने नाम कर लिया। दिल्ली कैपिटल्स की ओर से समीर रिजवी ने सबसे ज्यादा 24 में से 40 रन दिए थे। ट्रिस्टन स्टब्स ने 31 में से 38 रन बनाए। सुपर किंग्स की ओर से संजू सैमसन ने 52 में से 87, कार्तिक शर्मा ने 31 में से 41 रनों का योगदान दिया। पॉइंट्स टेबल पर चेन्नई के पास में 10 मैचों के बाद में 10 पॉइंट्स हो गए हैं। दिल्ली कैपिटल्स 10 मैचों के बाद 8 पॉइंट्स लेकर के 7वें स्थान पर है। पंजाब 13 पॉइंट्स लेकर के शीर्ष पर है, जबकि 4 टीमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, सनराइजर्स हैदराबाद, राजस्थान रॉयल्स और गुजरात के पास में 12-12 पॉइंट्स है। आईपीएल का अगला मैच कल सुबह सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब के बीच में खेला जाना है। रिपोर्ट्स इंडेलिबल होम्स और चेजर्स की ओर से।
4: Auckland and Wellington traffic report.
7: Be part of one of the most important and listen to segments on Radio Tirana. The traffic report, air during peak hours, 6 a.m. to 9 a.m. and 3 p.m. to 7 p.m.
8: Northern motorway per Constellation Drive tak 30 minutes, Northwestern Mercy tak 45 minutes, Manukau 46 or Airport 45. Wellington City Centre, Saporirua City Centre 24 minutes, Lower Hutt Central 30 minutes, Eastbourne 40 or Airport 22 minutes.
7: Increase brand awareness by contacting Ajeshni at 02196-1386 to secure a sponsorship.
9: Tirana Drive. Tirana Drive. தன டிரைவர்

मैं आपका कैप्टन अभी भी आपके साथ में है, 7 बजे तक हम आपके साथ में रहेंगे, फिर उसके बाद में मिड वीक पार्टी और वेंसडे नाइट फीवर शो जो है ये आपके लिए रहेगा। ओके, और अभी से लेकर 7 के बीच में और भी प्यारे प्यारे गाने हैं और कुछ सेगमेंट्स हैं कैप्टन की किताब से, आज के दिन इतिहास में क्या कुछ खास हुए, जन्मदिन की सूचनाएं और जाते जाते कल वाला वेदर अपडेट और भी सूचनाओं को प्रस्तुत करने के बाद ही आपका कैप्टन यहां से निकलेगा। क्या गाना है बॉस, ये गाना जब रिलीज हुआ था आई थिंक अभी से लगभग 20 साल पहले होगा, है ना। बहुत बार इस गाने को हमने पेश किया, एक चीज़ थी कि ये बहुत ही लंबा गाना था, आपको अलाउ करता था कि आप जाकर कॉफ़ी वगैरह जो है ये तैयार करके आ जाए, और जो लोग स्मोक करते थे उनको मौका मिलता था जाकर बाहर तंबाकू वगैरह पी कर आ जाएं, गाना बसता रहेगा। ये अनाउंसर्स की बात मैं कर रहा हूँ, चाहा तो बहुत ना चाहेंगे तुम्हें, गाना सुनाइए आपने। ओके, चाहा तो बहुत ना चाहेंगे तुम्हें लेकिन दिल भी कभी कभी ये पागलपन करता है और हर बार मुड़ मुड़ के आपकी ही यादों में खो जाता है। नो गुड ब्रो, एक चीज होता है सेल्फ रिस्पेक्ट भी इंसान में।

0: Chasers Abuja Mix ka full range dekhe on chasers.co.nz. Chasers, feel the flavor.
1: नमस्ते ओकलैंड, मुश्किल वक्त में सिंग्स फ्यूनरल सर्विसेज आपके साथ हैं।
2: ये ऑफर करते हैं कंप्लीट फ्यूनरल पैकेज सिर्फ $4,299 से।
1: इस पैकेज में शामिल है ट्रांसफर्स, एम्बामिंग और सर्टिफिकेट, ग्रोवनर कास्केट, लाइव स्ट्रीमिंग, एक घंटे का चैपल सर्विस, क्रिमेशन या बुरियल, डॉक्टर सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई एंड प्रोड्यूस करना, ओवरसीज रिपेट्रिएशन अवेलेबल है।
2: ये विन्स अप्रूव्ड है, ओकलैंड रीजन के लिए वैलिड।
1: ओकलैंड के बाहर के लिए कॉम्पिटिटिव रेट्स के लिए कॉन्टेक्ट करें शलिन सिंह को 0272929776। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
3: क्या काम की भागदौड़ से कपड़ों का ढेर बढ़ता जा रहा है? वरी मत कीजिए, रोड लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनर्स मॉन्ट्रोस के लाभ की मदद के लिए तैयार हैं। यहाँ आपको मिलता है 24 आवर्स सेल्फ सर्विस लॉन्ड्रोमैट, या फिर आप अपने कपड़े छोड़ दीजिए और इनकी टीम वॉश, ड्राई और फोल्ड करके आपको बिल्कुल तैयार देगी। यहाँ सूट्स, बिजनेस शर्ट्स, ड्रेसेस और फॉर्मल वेयर के प्रोफेशनल ड्राई क्लीनिंग भी करते हैं, और इडुवे ब्लैंकेट्स, स्पोर्ट्स गेयर की सफाई भी यहाँ पर होती है। स्टोरार रोड लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनर्स 220 स्टोरार रोड मॉन्ट्रोस, आसान, भरोसेमंद और 24/7।
4: जब बात होती है पर्दों की तो नाम आता है डी कैरो कर्टन्स का, जो कर्टन्स के साथ साथ स्पेशलाइज करते हैं इन सन फिल्टर रोलर ब्लाइंड्स, जो दिन में दे सही लाइट और यूवी रे से प्रोटेक्शन और नाइट में दे कंप्लीट प्राइवेसी। इनके सभी ड्रेप्स एंड कर्टन्स आते हैं विद फ्री लाइनिंग, प्लस तराना का नाम मेंशन करने पर 20% का डिस्काउंट। कम एंड मीट देयर फ्रेंडली टीम एट 19 मॉर्निंगसाइड ड्राइव, माउंट एल्बर्ट। फोन 09815-3811। डी कैरो

0: आज वाले कैप्टन की किताब से मैंने झलक सुनी और कहा, हे भगवान, ये चीज़ को हमें पेश करना चाहिए था। रामायण में सुंदर कांड से कुछ नो जो मेन मैसेजेस हैं इसके बारे में जिक्र हो रहा है, ओके, कि क्या कुछ हम सीख सकते हैं वहां से और आज की जिंदगी में हम वो सब चीजें जो हैं उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जरा सुनिए, काम की बातें हैं, फेस्ट वाला भी बहुत काम की बात।
1: कैप्टन की किताब से
2: आइए सुनते हैं समथिंग इंटरेस्टिंग, समथिंग सेंसेशनल कैप्टन की किताब से।
3: प्रभु श्री हनुमान जी के सुंदर कांड से सीखने वाली पांच बड़ी बातें। सबसे पहली, जामवंत जी जैसे साथी को तलाशिए जो जीवन में आपकी छुपी हुई शक्तियों के बारे में आपको बताए, उन शक्तियों का सही इस्तेमाल कीजिए। दूसरी बात, बल और बुद्धि में संतुलन बैठाइए, जैसे सुरसा के सामने उन्होंने बल और बुद्धि दोनों का प्रदर्शन किया। तीसरी बड़ी बात आती है कि छोटी छोटी डिटेल पर ध्यान दीजिए। लंका में विभीषण जी का घर भी हनुमान जी ने पहचान लिया क्योंकि वहां उन्हें तुलसी जी के पवित्र पौधे दिखे और प्रभु का चिन्ह उन्हें दिखाई दिया। चौथी बड़ी बात, अशोक वाटिका में जाकर हड़बड़ाहट नहीं की, उन्होंने सबसे पहले ध्यान पूर्वक निरीक्षण किया और फिर माता सीता जी का विश्वास पाने के लिए पेड़ पर बैठकर के नीचे मुद्रिका गिरा दी ताकि माता सीता जी समझ जाएं कि ये प्रभु के दूत आए हैं। और आखिरी सबसे बड़ी बात कि सारा कार्य संपन्न करने के बाद जब श्री राम जी ने उन्हें पुरस्कृत किया तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु ये सब आपकी वजह से संभव हुआ, आपके चरण कमलों का ध्यान करता रहा, जीवन में सर्वशक्तिमान में।
1: कल शाम भी इसी समय कैप्टन के किताब से हम पढ़ेंगे एक और पन्ना।

0: ताजी, एजे के घर दिया और हमें
1: तुम्हें पास तो है घर,
0: वो तो हम खरीदा है, तुम नहीं देगा हमें कुछ।
1: ये तुम लोग को जो मंगता हमसे है, हमें दे देगा कि नहीं यार?
0: रान दो, नहीं मंगता।
1: तुम चाहे मुंह फुलाओ चाहे चिल्लाओ, एक सेंट नहीं देगा।
0: हाँ सब लेके जाना।
1: हाँ हम लेके जाएगा, लड़कन तो हमने कंगाल कर दी यार, चल दो यहाँ से।
2: ताजी के नहीं तंग करो, अपन घर अपने बनवा लो। इंडेलिबल होम्स के रिंग करो 0800-233-111 पे।
3: There are days when you nail parenting, but this isn't one of them. There's not even a single cherry tomato for their lunchbox. And is that a tumbleweed? Luckily, a DoorDash hero emerges. That's me.
4: Dash! Savior of the lunchbox.
3: Now the kids have a tasty lunch that you can totally share on the gram. With DoorDash, get groceries delivered straight to your door in a dash.
4: Dash.
5: इस मदर्स डे को बनाए और भी स्पेशल डिजिसेल के साथ। बस भेजे $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या $300 या उससे ज्यादा का कैश ट्रांसफर इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक, और आपका नाम तुरंत जाएगा ड्रॉ में टू विन वन ऑफ द 15 $500 कैश प्राइज। तो $20 का टॉप अप भेजे या $300 का कैश, और डिजिसेल के साथ मौका पाए जीतने का $500 कैश। T's and C's apply.
6: हम सभी सही तरह से रिसाइकल करना चाहते हैं, तो याद रखें प्लास्टिक 1, 2 और 5 को रिसाइकल करें और धरती को जीवित रखें। सही तरह से रिसाइकल करना आपके हाथों में है। सर्च करें ओकलैंड काउंसिल रिसाइकलेबल आइटम्स, तमकी तुरुकी, ऑल टुगेदर ओकलैंड।
7: टुडे इन हिस्ट्री।
8: आजकल हर एक के घर में फ्रिज आपको मिलेगा, रिफ्रिजरेटर पूरा, लेकिन फ्रिज, रिफ्रिजरेटर बोलने में कभी कभी बहुत ज्यादा एनर्जी लग जाता है, लेकिन फ्रिज है घर में, फैंसी फैंसी और काफी दाम और टेक्नोलॉजिकल वाला आपके घर में होगा ये, है ना। आज ही के दिन इसको तैयार किया गया था, डॉक्टर जॉन गोरी ने यह तैयार किया था आज ही के दिन 1851 में। तो पुराना चीज़ है ये, बहुत आप ऐसा ना करें। देखो फ्रिज है घर में खाना प्रिजर्व करने के लिए, चिल्ड मेरे घर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ फ्रिज में ये है जो आइस वो बनाता है ना, अगर नहीं हो ये तो मैं इधर उधर भागता रहूँगा हेडलेस चुक की तरह। और भी बातें हुई हैं, प्रिंसेस मार्गरेट ने आज ही के दिन एंथनी आर्मस्ट्रांग जोन से शादी की। मैंने सुना है प्रिंसेस मार्गरेट के बारे में, है ना, रॉयल फैमिली। अभी हाल ही में किंग गए थे घूमने के लिए और वो भी ट्रंप के पास, उन्होंने उनसे पूछा होगा कि क्या बवाल कर रहे हो भाई साहब, क्या कर दिया आपने दुनिया का। इनडायरेक्टली डांटने गए होंगे लेकिन बताया नहीं है ना कि बंद करो ये सब। और डिडी जैसे क्या करे, करते रहो, खेलते रहो भाई साहब। आज नेशनल नेसेस डे है, नेसेस जितने हैं बहु आपको भी मैं याद करता हूँ, विच आर द नेस डू आई नाउ। ओके ओके ओके, कौन सा और नेस है, मैं भूल गया सभी नेसेस को किसी के चक्कर में। अब सभी नेसेस को मैं फिर से अपना हाय हेलो भेजने लगूं, अच्छा रहेगा, है ना। वी नीड टू हैव नेसेस अराउंड, ना जाने कब प्रॉब्लम। ओ सुनीता, आप एक नेस हैं, हाय, कैसी हैं, आपका स्वागत है। ओके, और इसके अलावा नेशनल बिवरेज डे भी है आज, और स्कूल नेस डे भी है आज। और इसके अलावा उधर प्रवीणा, आप भी एक नेस है, देखो मैं बात करते करते सोच रहा हूँ। और शैली, आप भी एक नेस है, हाउ कैन आई फॉरगेट यू फॉलोज मैन। ओके, अभी नो होमवर्क डे भी है आज। आई हार्डली गिव होमवर्क, सीनियर्स को देता हूँ कि खत्म कर लेना जब भी मौका मिले। वो जमाने वाला नहीं कि होमवर्क खोलो, पहले नहीं है तो हाथ सीधा आगे करो, और उसमें रूला से टीचर सच से मारती थी एंड देन बैठा कर लिखाती थी आई विल डू माई होमवर्क, आई विल डू माई होमवर्क, क्या फायदा बॉस। एनीवेज, अभी आइए आज पूजा पाउडर आज अपना बर्थडे मना रही हैं, उनके साथ आपका भी बर्थडे है। इस गाने के बाद हम आ रहे हैं आपको हैप्पी बर्थडे टू यू विश करने के लिए।

0: chunky, juicy, and effortlessly tasty. Tofu? Burger King. King of plant-based. See burgerking.co.nz for details on our plant-based range.
1: Kia ora, Aotearoa. Good news. The starting age for the national bowel screening program has dropped from 60 to 58 years old. You don't need to do anything. When you turn 58 or 59, you'll be sent a free bowel screening kit. Happy birthday. Even better, you'll get a free kit every 2 years until you turn 75. Bowel screening can find cancer early when it can often be successfully treated. It's free, quick and easy. Bowel screening saves lives. When you get your kit, just do
2: Daddy, it. Daddy, how are you? Ram
3: Ram. Okay, son. Ram Ram, ghar bane. Kahan tak pahuncha?
2: Painting hue, Daddy.
3: Kitna achha builder mil gaye re. Ka naam hai ulong ke?
2: Indelible Homes.
3: Hamare paas bhi 10-15 ghar rehta. Agar hamar time pe aisan builder mil jata.
2: Abhi bhi sakta banaye, Daddy. Banaye ke hume de do.
3: Wah.
4: न्यूजीलैंड के मोस्ट ट्रस्टेड और एक्सपीरियंस सब डिविजन एंड बिल्डिंग स्पेशलिस्ट इंडेलिबल होम्स फोन 0800-233-111
5: श्री वेंकटेश्वर देवस्थानम चैरिटेबल ट्रस्ट आप सबको आमंत्रित करते हैं इनके भोजन मेला फूड कार्निवल में टू सपोर्ट लॉर्ड वेंकटेश्वर टेंपल प्रोजेक्ट
6: ये होगा संडे 17th मई को 11 AM टू 4 PM
5: 378 RRIMU रोड रामा रामा साउथ ऑकलैंड में एंट्री फ्री है फ्री सॉफ्ट ड्रिंक्स रहेंगे फ्री फूड बाय शिवानी रेस्टोरेंट एंड इडली सांबर ज्वेलरी एंड क्लोथिंग स्टोर हेना आर्टिस्ट फेस पेंटिंग बाउंसी कासल्स और बहुत कुछ
6: और इन्फॉर्मेशन के लिए कॉन्टैक्ट करें शिवानी जी को 0218700012 पर
5: One temple, one community, eternal blessing.
7: Auckland and Wellington traffic report.
8: Papatoy, Flatbush और पापाकुरा के बाद अब DH Supermarket का सबसे बड़ा स्टोर खुल गया है in Henderson. That's right, your local Indian grocery store now in Henderson at 5 Moselle Avenue off Lincoln Road, Henderson. Huge, clean, hygienic place to shop with ample parking.
9: Northern Motorway, Constellation Drive, 25 minutes, Northwestern, Massey, 30 minutes, Manukau, 40 minutes और Airport, 35. Wellington City Centre, Sepori Rua City Center, State Highway 1C22, State Highway 2, Selawahat Central, 25 minutes, Isbourne 40 minutes or Airport 20.
8: Fresh vegetables, authentic spices or sabhi Indian grocery saman bohat hi achhe prices mein. DH Supermarket now in Henderson at 5 Moselle Avenue off Lincoln Road. Happy

वेंसडे 6 तारीख ऑफ मई, जो लोग अपना बर्थडे मना रहे हैं उनको हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। रोजी चंद हैप्पी बर्थडे, शाहिल मुनेश स्वामी का बर्थडे है, राकेश नारायण हैप्पी बर्थडे, और इनके साथ में राघव नंद चौबे आज अपना बर्थडे मना रहे हैं। विजेश प्रसाद हैप्पी बर्थडे, महेश कुमार हैप्पी बर्थडे, उदय प्रताप का बर्थडे है, सूरज नायडू आज आप भी अपना बर्थडे मना रहे हो, रॉकी खान का बर्थडे है, और इनके साथ में आज हम जैन इस किंग को भी हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। जैन अभी आते हैं आपकी खुशियों में बस थोड़ी देर में। उधर पूजा पोडर अपना बर्थडे बॉलीवुड में मना रही हैं। पीपी ओके, भारतीय समाज चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आज सनी नुक में अनिल पटेल को हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। ऑकलैंड सीबीडी में सुनीता कुलदीप सिंह जी आपको हैप्पी बर्थडे। माउंट रॉस्किल में आशा गुप्ता जी हैप्पी बर्थडे। अदर गार्डन्स में रजवंत बैंस जी आज अपना बर्थडे मना रहे हैं। अनिल, सुनीता, आशा, रजवंत जी भारतीय समाज चैरिटेबल ट्रस्ट के मेंबर्स ने आज आपको याद किया है। जैन चंद्रा, जैन इज किंग वेस्ट ऑकलैंड में, ब्रो हैप्पी बर्थडे। वाइफ शैली है, बेटी है जानवी, जिया और शिवाली, और साथ में डेस की ओर से खास प्यार आपके डैडी हैं मिस्टर जय चंद। भाईज और फैमिलीज उनके हैं, रोजी और फैमिली मेलबर्न से, और इनके साथ में आपकी सासू माँ है मिसेस सुनीला प्रकाश, और एश्विन और आशनी, राहिल और जितने भी फ्रेंड्स हैं द शर्मा ब्रदर्स की ओर से भी जैन हैप्पी बर्थडे माय ब्रदर, हैप्पी बर्थडे। आज मोनिक प्रजापति हैमिल्टन में अपना बर्थडे मना रहे हैं। मोनिक 9 साल के हो गए हैं। आपकी खुशी में आपकी मम्मी, डैडी और भाई वंश, दादा दादी, मोटा पापा, मोटी मम्मी और साथ में दक्ष, जिया, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल आंटीज सभी ने बहुत सारा प्यार दिया है। मोनिक हमारी ओर से भी हैप्पी वाला बर्थडे, और ये गाना

0: इस मदर्स डे को बनाए और भी स्पेशल डिजी सेल के साथ। बस भेजे $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या $300 या उससे ज्यादा का कैश ट्रांसफर इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक और आपका नाम तुरंत जाएगा ड्रॉ में टू विन वन ऑफ द $15,500 कैश प्राइज। तो $20 का टॉप अप भेजे या $300 का कैश और डीजी सेल के साथ मौका पाए जीतने का $500 कैश। टीज एंड सीज अप्लाई।
1: अरे इंडेलिबल होम्स वाली गुड़िया इतनी बड़ी हो गई।
2: हाय, मैं हूँ गुड़िया, भाई गुड़िया जिसके भैया ने उसे रूम से बाहर निकाल दिया था। अब मेरे पास मेरा अपना रूम है, बहुत बड़ा, बहुत अच्छा। Thanks to Indelible Homes. Thank you. See you.
1: नया घर बनाना हो या सब डिवाइड करना हो, Indelible Homes. Phone 0800-233-111.
3: Right now at Woolworths, collect double bonus points on every $50 shop. Plus, boost your budget and collect 10 times points on some of your favorite brands. Boost in the app, shop in store or online, and scan your everyday rewards card at checkout before Sunday 10th of May.
0: Hey everyone, मैं हूँ नेहा और इस सैटरडे आपको मिलूंगी एट NZ Beds मानिका सुपर सेंटर स्टोर, जहाँ पर आपको मिलेगा अप टू 70% डिस्काउंट ऑन सिलेक्टेड बेड्स, मैट्रेसेस फ्रॉम $299 एंड अ फ्री पिलो विद एवरी परचेज मेड इन द वीकेंड। सो सी यू दिस सैटरडे 10 AM टू मिड डे एट NZ Beds मानिका सुपर सेंटर।

नेक्स्ट न्यूज आपके लिए दो गानों के बाद रहेगा। आपके साथ हमारे न्यूज एडिटर शामिल हो जाएंगे न्यूज के साथ में, खेल के जगत के खबरें भी आपके लिए लेकर आएंगे और फिर उसके बाद में वेदर अपडेट और भी सूचनाओं को हम ही प्रस्तुत करेंगे आपके लिए। ओके, और जितने भी नेसेस कुछ और ने मुझे मैसेज किया कि हमारे बारे में आप भूल गए। यस, गेटिंग ओल्ड। ओके, तो इसीलिए भूल जाते हैं कभी कभी, लेकिन आजकल आई एम इन लव विद दिस सॉन्ग। ये गाना जो है आई जस्ट लव इट, और इस गाने को हम ऐसे वैसे करके और बॉयज को भी उनकी मंजूरी लेते हुए जब टॉप 100 हम दुअंदो रिजोर्ट फीजी से लेकर आएंगे ऑन द 31st ऑफ दिसंबर इसी साल, तो ये जो गाना है इधर उधर बाय हुक और क्रुक करके टॉप 10 में लेकर आएंगे। आप भी सहमत होंगे, सुनिए, यू विल लव इट टू।

0: best of music, best of shows. This is Radio Tarana.
1: ऑकलैंड एंड वेलिंगटन ट्रैफिक रिपोर्ट।
2: पैसिफिक में अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को भेजे डीजी सेल का $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या करे कैश ट्रांसफर $300 या उससे ज्यादा का इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ और जीते एक्साइटिंग प्राइजेस।
3: ऑकलैंड सिटी सेंटर से नॉर्दर्न मोटरवे कॉन्स्टेलेशन 35 मिनट्स, नॉर्थ वेस्टर्न मेसी तक 35 मिनट्स, मैनिकाओ 40 और एयरपोर्ट 40। वेलिंगटन सिटी सेंटर से परिरुआ सिटी सेंटर 20 मिनट्स, लवाहट सेंट्रल 25 मिनट्स, इसबोर्न 40 और एयरपोर्ट 22 मिनट्स।
2: Be in the draw to win one of 15 $500 cash prizes this Mother's Day with DigiSail. So, bheje $20 ka top up ya $300 cash to your family and friends in the Pacific.
4: Is hafte ke star of the week hai music director Dilip aur Sameer Sain.
5: Brought to you by KMP Construction. Naya ghar bana rahe hain ya extension kar rahe hain to aaj hi call kare Bhupendra Kumar ko 01874871 par.

0: बच्चों बताओ डिस्टेंस कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है?
1: मैम डिस्टेंस इक्वल्स स्पीड इनटू टाइम।
0: जीनियस। अब बताओ रीपेमेंट बढ़ाए बिना मॉर्गेज जल्दी खत्म करने का क्या फॉर्मूला है?
1: मैम ग्लोबल फाइनेंस का मॉर्गेज जीनियस प्लान।
2: बच्चा जानता है कि मॉर्गेज जल्दी खत्म करने का यही फॉर्मूला है, ग्लोबल फाइनेंस का मॉर्गेज जीनियस प्लान। फोन 09255550। T's and C's apply।

0: Quality Care Dental with over 24 years of experience. We make your family's dental health easy and affordable, offering general dentistry and now special interest in pediatric dentistry for kids. Set up your dental care appointment with Dr. Sangeeta Mankal and team. Quality Care Dental. Call us on 0800 My Dentist or 09626-5205.
1: Quality Care Dental.
2: Always very gentle.
3: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेशे भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस। ईट बेटर, लिव बेटर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz. Available at all leading stores.
4: Bunnings gift card is a great gift for Mother's Day because it unlocks the whole warehouse for Mum. She's in for a treat. She'd be like, oh my gosh, yes, now I can buy all those extra plants that I was looking for the front garden. Perfect.
5: Bunnings Warehouse.
6: Maa ko sab pata hota hai. Hamare dil aur dimaag ka naksha inki zehen mein chhapa hota hai. Shayad isi liye hamari khabar हमसे ज्यादा इन्हें होती है। हाँ, कभी खिटपिट भी होती है, डांट भी पड़ती है, कभी खट्टा मीठा तो कभी कड़वा भी बोल देती है। फिर गुस्सा हो जाओ तो सामने लाकर खाने की थाली रख देती है। इनकी डांट में भी प्यार छुपा होता है। माँ को सब पता होता है।
7: आप सभी को तराना टीम की तरफ से हैप्पी मदर्स डे।
8: रेडियो तराना टाइम चेक।
9: Proudly brought to you by Indelible Homes. Phone 0800 233 111. Website indelibleHomes.co.nz. Foods.
10: कशिश फूड्स की ओर से घड़ी का समय आप भी मिला लें। नमस्ते, 7 बज चुके हैं हमारे स्टूडियोज में।
11: दिस इज तराना न्यूज।
12: समाचार सुनिए संजेश नारायण से। मीडिया एंड कम्युनिकेशंस मिनिस्टर पॉल गोल्डस्मिथ ने कहा है कि सरकार ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को समाप्त कर रही है। सरकार ने बदलते मीडिया उद्योग के बीच में इस मीडिया नियामक की भूमिका यानी कि ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी की भूमिका को अनुचित मानते हुए इसे भंग करने का निर्णय लिया है। मंत्री पॉल गोल्डस्मिथ ने आज पुष्टि की कि सरकार ने बीएसई को बंद करने और सेल्फ रेगुलेशन ऑप्शंस पर विचार कर रही है। मंत्री का कहना है कि ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को ऐसे ब्रॉडकास्टिंग एनवायरनमेंट के लिए तैयार किया गया था जिसमें तेजी से बदलाव देखा जा रहा है। लेबर नेता क्रिस हेपकिंग्स का कहना है कि दिसंबर चौथाई के मुकाबले भले ही मार्च चौथाई में अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कुछ गिरावट हुई है, देश के बड़े शहरों में अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा है। पिछले 12 सालों में ऑकलैंड में अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज्यादा 6.6% रिकॉर्ड हुआ है, जबकि वेलिंगटन में 11 सालों में सबसे ज्यादा 6.3% रिकॉर्ड हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट दिसंबर के 5.4% के मुकाबले मार्च चौथाई में 5.3% रिकॉर्ड हुआ है। लेबर पार्टी के फाइनेंस मामलों की प्रवक्ता बाबरा एडमंड्स का कहना है कि प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन ने ये वादा किया था कि वे देश की अर्थव्यवस्था सुधारेंगे, लेकिन उनके वादे के विपरीत देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही है तथा इससे यही खतरा बना हुआ है कि लंबे समय तक अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा ही रिकॉर्ड होगा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.3% है यानी कि 163,000 न्यूजीलैंडर्स देश में नौकरी नहीं कर रहे हैं। दिसंबर चौथाई में यह आंकड़ा 5.4% या 165,000 रहा है। कोलिशन सरकार में टूरिज्म मिनिस्टर और लीडर ऑफ द हाउस लुइस अब्स्टन का कहना है कि वह ईरान द्वारा पड़ोसी देश यूनाइटेड अरब अमीरात और ओमान पर किए गए हमलों की निंदा करती हैं। रेडियो तराना से बातें करते हुए मंत्री ने कहा कि एक और जबकि वह ईरान की निंदा कर रही हैं, वह चाहती हैं कि अमरीका और इसराइल समर्थित इस युद्ध को जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाए।
13: Both on the countries involved, but also the impact it's having across the world. And that's why we want to see an end to the conflict, an end to the hostilities. And we're really very keen for the two countries to get together and continue those peace discussions.
12: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ में समझौते को अंतिम रूप देने के लिए उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में फंसे जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए अमेरिकी प्रयास को रोक दिया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि युद्ध समाप्त करने के लिए ईरान के साथ समझौता करने के अमरीकी प्रयासों को समय देने के लिए वह थोड़े समय के लिए इस प्रयास को रोक रहे हैं। ट्रंप ने पोस्ट में कहा कि वह ये कदम पाकिस्तान और अन्य देशों के अनुरोध, ईरान के खिलाफ अभियान के दौरान मिली जबरदस्त सैन्य सफलता और साथ ही ईरान के प्रतिनिधियों के साथ पूर्ण और अंतिम समझौते की दिशा में हुई महत्वपूर्ण प्रगति के आधार पर उठा रहे हैं। देश में पे इक्विटी स्कीम में एक साल पहले घोषित किए गए बदलाव को लेकर के यूनाइटेड नेशंस में शिकायत दर्ज कराई गई है। न्यूजीलैंड काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस सहित ह्यूमन राइट्स कमीशन ने यूनाइटेड नेशंस से ये जांच करने का अनुरोध किया है कि क्या ये बदलाव महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के दायरे में आते हैं। सरकार ने पिछले कानून को फिर से लिखा और लगभग 180,000 मजदूरों को कवर करने वाले मौजूदा वेतन समानता यानी कि पे इक्विटी स्कीम को रद्द कर दिया है। पे इक्विटी स्कीम इसलिए लाया गया था ताकि महिलाओं और पुरुषों को एक ही काम के लिए एक समान वेतन भरा जाए। पे इक्विटी के लिए दावे करने वाली महिलाओं में ज्यादातर के सेक्टर डिसेबिलिटी, एजुकेशन, हेल्थ, कम्युनिटी और सोशल सर्विसेज में कार्यरत थी। सुबह के मिड रोड स्थित टॉपलाइन हाउसिंग के एक व्यक्ति से कुछ दिन पहले इलाके में हुए हमले के संबंध में पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस ने पुष्टि की है कि यह मामला फिजी सेना के एक अधिकारी के 20 वर्षीय बेटे पर हुए हमले से संबंधित है। पुलिस का कहना है कि 20 वर्षीय युवक पर कुछ लोगों के समूह ने हमला किया था। पुलिस का कहना है कि वे और अधिक जानकारी और बयान जुटा रहे हैं। तमिलनाडु में बहुमत से कुछ सीटें दूर रही विजय की टीवीके पार्टी जल्द ही सरकार बना सकती है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के समर्थन से टीवीके सरकार बना सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कांग्रेस ने तमिलनाडु में टीवीके को समर्थन देने का फैसला किया है। इससे पहले कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दावा किया था कि विजय ने सरकार बनाने के लिए कांग्रेस से समर्थन मांगा है। फिजी के पूर्व प्राइम मिनिस्टर वारेंगे बेनीमरामा और पूर्व पुलिस कमिश्नर सिथिवेनी गेलियो के विद्रोह भड़काने वाले मामले को हाईकोर्ट खिसका दिया गया है। दोनों को आज मजिस्ट्रेट योगेश प्रसाद के समक्ष पेश किया गया। डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशंस जॉन रंबुकू ने अदालत को बताया कि सरकारी पक्ष चार्जेस में कुछ बदलाव करना चाहता है। बचाव पक्ष ने इसका विरोध नहीं किया। रंबुकू ने कहा कि चार्जेस में जो संशोधन किए जाएंगे बचाव पक्ष को उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। बेनीमरामा और गिलियो से आरोप स्वीकार करने या न करने के बारे में नहीं पूछा गया। मामले की अगली सुनवाई 5 जून को होगी। बेनीमरामा और गिलियो को जमानत पर रिहा किया गया है। दोनों पर आरोप लगा है कि उन्होंने सेना के कमांडर मेजर जनरल चोने कलोनोवाई को पद से हटाने और सेना का कमान अपने हाथ में लेने के लिए सेना के कुछ आला अफसरों को संपर्क किया था। फीफा वर्ल्ड कप से पहले ऑल वाइट्स के पहले वार्म अप मैच की पुष्टि कर दी गई है। वर्ल्ड नंबर 85 ऑल वाइट्स का सामना हैती से जून सेड को होगा। 7 जून को टेम्पा में इंग्लैंड के खिलाफ मैच से पहले ऑल वाइट्स का ये वार्म अप मैच खेला जाना है। वर्ल्ड कप की शुरुआत 16 जून से होगी। ऑल वाइट्स टीम लॉस एंजलिस में पहले मैच में ईरान का सामना करेगी, दूसरे मैच में इजिप्ट और तीसरे ग्रुप मैच में ऑल वाइट्स का सामना बेल्जियम से होगा। ये दोनों मैचेस वैंकूवर में 22 और 27 जून को खेला जाना है। जेरम लोआई ने पीएनजी चीफ्स टीम ज्वाइन करने का फैसला किया है। साल 2028 से पीएनजी चीफ्स टीम को एनआरएल में शामिल किया जाएगा। लोआई जो कि अभी वेस्ट टाइगर्स क्लब के साथ में है ने पीएनजी चीफ्स क्लब में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की है। उन्हें लुक्रेटिव टैक्स फ्री सैलरी का ऑफर मिला है। टेनिस के दिग्गज खिलाड़ियों का कहना है कि अगर फ्रेंच ओपन में प्राइज मनी नहीं बढ़ाया गया तो वे टूर्नामेंट का बॉयकॉट करेंगे। वुमेन्स वर्ल्ड नंबर 1 अरियाना सेवालेंका और मेंस वर्ल्ड नंबर 1 यानिक सिन्हा उन खिलाड़ियों में शामिल है जो प्राइज मनी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। फ्रेंच ओपन ऑर्गेनाइजर्स ने इस साल के टूर्नामेंट के लिए प्राइज मनी में 10% की बढ़ोतरी की है। कुल $123 million प्राइज पूल रखा गया है, यानी कि $5.3 million की बढ़ोतरी प्राइज पूल में की गई है। खिलाड़ियों का कहना है कि प्राइज मनी में जो बढ़ोतरी की जा रही है वह टूर्नामेंट रेवेन्यू से 15% कम है। फ्रेंच ओपन मई 24 से खेला जाना है। आर्सेनल सुपर टीम 20 सालों बाद चैंपियंस लीग के फाइनल के लिए क्वालिफाई हुई है। 2006 में आर्सेनल टीम फाइनल में गई थी लेकिन बार्सिलोना से हार का सामना करना पड़ा। आज सुबह एटलेटिको मैड्रिड को 1-0 से हराने के बाद में एग्रीगेट 2-1 स्कोर के साथ में आर्सेनल ने चैंपियंस लीग के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। फाइनल में उसका सामना पेरिस सेंट जर्मेन या फिर बायर्न म्यूनिख से होगा। बायर्न म्यूनिख को पहले लीग के सेमीफाइनल मैच में पेरिस सेंट जर्मेन से 5-4 से हार का सामना करना पड़ा था। और आईपीएल पॉइंट्स टेबल पर पंजाब के पास में और ऊपर जाने के अच्छे मौके हैं। पंजाब का सामना कल सुबह सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। सुबह जो मैच हुआ उसमें चेन्नई ने दिल्ली कैपिटल्स को 15 बॉल्स के रहते 8 विकेट से हरा दिया है। पॉइंट्स टेबल पर पंजाब के पास में 13 जबकि रॉयल चैलेंजर्स के पास में 12 सनराइजर्स के पास में 12 पॉइंट्स है। आईपीएल पर जानकारी चेसर्स और इंडेलिबल होम्स की ओर से।
1: Weather report brought to you by Krukia. Visit krukia.co.nz.
10: कल थर्सडे को आपके शहर में वेदर कैसा रहेगा ये देख लेते हैं। ऑकलैंड में आज ओवरनाइट 16 है। कल दिन में मैक्सिमम आज ही की तरह 21 रहेगा। पार्टली क्लाउडी, कुछ कुछ जगहों पर शायद एक दो शावर्स हो। लगभग आज ही की तरह वेदर जो है कल मिलेगा ऑकलैंड वालों को। हैमिल्टन में आज ओवरनाइट 13, कल दिन में मैक्सिमम 21, पार्टली क्लाउडी, एक दो शावर्स हो सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट की दिशा से हवाएं चलेंगी। और उधर वेलिंगटन के लिए ऐसा अनुमान लगाया गया कि वहां पर आज ओवरनाइट 15, कल दिन में मैक्सिमम 18, क्लाउड इंक्रीजिंग और हो सकता है कल आफ्टरनून में वेलिंगटन में बारिश हो। नॉर्थ की दिशा से हवाएं चलेंगी जो शाम के समय खुली जगहों पर झोंके के साथ तेज रफ्तार से बहेंगी। और इसके अलावा उधर क्राइस्टचर्च में आज ओवरनाइट 12, कल दिन में मैक्सिमम 21, हाई क्लाउड और बारिश, खासतौर पर शाम के समय बारिश होगी, इवनिंग में बारिश होगी। नॉर्थ ईस्ट की दिशा से हवाएं चलेंगी। घर का वेदर ठीक करने के लिए रिलायंस वेंटिलेशन वालों को कॉल करें। बिफोर विंटर स्पेशल दाम में हीट पंप फिट हो सकता है। रिलायंस वेंटिलेशन का नंबर 0800-787-111।
8: लॉस ऑफ अ लव्ड वन इज एन अनफिल्ड वैक्यूम। डिमाइस न्यूज।
10: अरब लीजिए सुनिए कुछ शोक सूचनाएं। दुख के साथ सूचित किया जाता है कि राखी फिजी के स्वर्गीय बेचू प्रसाद के बेटे कैमरन चंद के पिता गो प्लाइज द गार्डन्स के बॉब कृष्ण चंद की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार बृहस्पतिवार के दिन में 1 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस 11 बोल्ड आउट प्लेस वीरी में किया जाएगा। रेडियो सुनने वाले कृपया इस खबर को उनके परिवार वालों तक पहुंचा दें। शोक सहानुभूति के लिए आप 0219326666 पर कॉल करें। सूचित किया जाता है कि राखी फिजी के स्वर्गीय बेचू प्रसाद के बेटे कैमरन चंद के पिता गो प्लाइस द गार्डन्स के बॉब कृष्णा चंद की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार बृहस्पतिवार के दिन में 1 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑन साइट क्रिमेशंस 11 बोल्ड आउट प्लेस वीरी में किया जाएगा। रेडियो सुनने वाले कृपया इस खबर को उनके परिवार वालों तक पहुंचा दें। शोक सहानुभूति के लिए आप 0219326666 पर कॉल करें। दुख के साथ सूचित किया जाता है कि एलान रोता व फिजी के स्वर्गीय मुन सामी के बेटे ऑकलैंड के शारदा मणि के पति ऑकलैंड के रोनिल कृष्णा पुजारी मेलबर्न के शालिनी कृष्णा के पिता ऑकलैंड के सुब्रमणि और गोविंदा के भाई रॉबर्ट स्केलेटन रोड मनुरेवा के श्री कृष्णा उर्फ हैरी की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार शुक्रवार के दिन में 1 बजे न्यूजीलैंड इंडियन फ्यूनरल सर्विसेज द्वारा मैनिकाओ मेमोरियल गार्डन्स में किया जाएगा। रेडियो सुनने वाले कृपया इस खबर को उनके परिवार वालों तक पहुंचा दें। शोक सहानुभूति के लिए आप 0219-26578 पर कॉल करें। सूचित किया जाता है कि एलान रोता व फिजी के स्वर्गीय मुनसामी के बेटे ऑकलैंड के शारदामणि के पति ऑकलैंड के रोनिल कृष्णा पुजारी मेलबर्न की शालिनी कृष्णा के पिता ऑकलैंड के सुब्रमणि और गोविंदा के भाई रॉबर्ट स्केलेटन रोड मनुरेवा के श्री कृष्णा उर्फ हैरी की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार शुक्रवार के दिन में 1 बजे न्यूजीलैंड इंडियन फ्यूनरल सर्विसेज द्वारा मैनिकाओ मेमोरियल गार्डन्स में किया जाएगा। रेडियो सुनने वाले कृपया इस खबर को उनके परिवार वालों तक पहुंचा दें। शोक सहानुभूति के लिए आप 0210292657 पर कॉल करें।
14: शोक सूचनाएं ऑकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम की तरफ से। तराना कम्युनिटी मैसेजेस।
15: जागोरे कम लाइफ का आयोजन किया गया है पास्ता अनिल और रीना कान द्वारा। ये हिल्स चर्च 179 हिल्सबरा रोड में होने जा रहा है 9 मई को शाम को 6 बजे से। और जानकारी के लिए आप 0211017959 पर संपर्क कर सकते हैं। पुलिस रिक्रूटमेंट सेमिनार का आयोजन किया गया है शनिवार 23 मई को सुबह 9:30 से दिन में 12 बजे तक फिकलिंग कन्वेंशन सेंटर 546 माउंट एल्बर्ट रोड थ्री किंग्स में। श्री वेंकटेश्वरा देवस्थानम चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से भोजन मेला होने जा रहा है रविवार 17 मई की सुबह 11 से शाम को 4 बजे तक 378 आररीमू रोड रामारामा में। एंट्री बिल्कुल ही फ्री है।
16: जिंदगी बहुत कीमती है तो फ्यूनरल भी अलग ही होना चाहिए, ठीक वैसे जैसे जिंदगी उन्होंने जी थी। ऑकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम ने पिछले कई सालों से हमारी कम्युनिटी को बेस्ट फ्यूनरल सर्विस दी है। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन और भी किसी भी रिलीजन की जरूरत को समझकर बिल्कुल सही तैयारी की जाती है। यहाँ इजी पे फ्यूनरल प्लान भी अवेलेबल है। इजी इंस्टॉलमेंट टर्म्स पर एडवांस पेमेंट के बारे में पता करने के लिए कॉल करें 2788600।
17: If your business needs a boost, a push in the right direction, or some shelter to get you through, KiwiBank can help with Fast Capital, the digital loan application with real-time decisions. It's the fuel for your rocket, the wind in your sails, and an umbrella in the rain that allows you to grow, expand, or provide a buffer for your business. Search KiwiBank Fast Capital to apply online today. This is Kiwi. Eligibility criteria, lending criteria, T's and C's and fees apply.
18: हम सभी सही तरह से रिसाइकल करना चाहते हैं, तो याद रखें प्लास्टिक 1

0: Rajeshni today on 02196-1386 for sales on Tarana. So yaad rakhna, number ghumana, 02196-1386 for advertising on Radio Tarana.
1: Bored?
2: Udaas ho.
1: Excitement ki batti fuse.
2: तो सुनो चटपटी ट्रेंडिंग न्यूज,
1: उस पर जो जोड़े आपको अपनों के साथ, आपका साथी बरसों पुराना।
2: चलो समेटो खुशियों का खजाना। ओनली ऑन

0: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो।
1: And the coolest RG of your city.
2: यार आप तो मुझे फुल चेकआउट मार रहे हो।

0: Hey Hamiltonians, guess what? अब आपके यहाँ Hamilton में आ गया है Global Finance. For any kind of home loan, business loan, commercial loan, refixing या refinancing के लिए contact करें Global Finance को, जो mortgage के साथ साथ insurance में भी specialize करते हैं. Life, trauma, health insurance, हर चीज के लिए Global Finance. Now in Hamilton at Unit 26, 20 Clyde Street, Hamilton East. Phone 07577-0888. Global Finance, now in Hamilton.
1: क्यों थोड़ा म्यूजिक कम करो. अरे अरे अरे भाई साहब आइए, कैसे हैं?
2: नमस्ते नमस्ते. मंडप बड़ा खूबसूरत बना है, नजर पहले वहीं गई.
1: एग्जैक्ट मंडप का है, कितना प्यारा लग रहा है ना.
2: प्यारा मंडप तो है, पर खर्चा बड़ा किया होगा भाभी.
1: अरे नहीं नहीं, देखो खर्चा तो वैसे होता ही है शादी में, पर एग्जैक्ट मंडप के मंडप बहुत ही अफोर्डेबल होते हैं.
3: मंडप के मंडप खूबसूरत, अफोर्डेबल, और यू विल डील विद प्रोफेशनल्स. कॉल टुडे ऑन 09265-0505 or visit NZ Mandap Facebook page.
0: और तराना का नाम मेंशन करने पर स्टेज हायर, मंडप और मार्किस पर आपको मिलेगा 5% का डिस्काउंट.
4: If you're out there working hard, it's time to put down the tools and pick up a pie. Just head into your nearest Zed and show your Zed business fuel card to get $1 off any pie. Now that's worth going to work for. Ends 25 May while stocks last.
0: Hey everyone, मैं हूँ नेहा और इस सैटरडे आपको मिलूंगी at NZ Beds Manika Super Center Store, जहाँ पर आपको मिलेगा up to 70% discount on selected beds, mattresses from $299 and a free pillow with every purchase made in the weekend. So see you this Saturday 10 a.m. to midday at NZ Beds Manika Super Center.

0: gotta be in it to win it. Text your name now on 8812. It's Lotto time.
1: You are tuned into With Manish, New Zealand's favorite evening Hindi radio show. Only on Tarana.
2: With the best music from around the globe.
3: Follow my every move. Doesn't matter what I do. Got me coming back on loop.
4: Are we ready?
5: Playing beautiful melodies.
6: मैं आपकी इंट्रोडक्शन खुद ही कर देता हूँ, मेरे को पता है यार, डर
7: लगा
6: है। हाँ, ऐसा है कि मैं आपको बता नहीं सकता, मतलब ये गाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, बिल्कुल भी।
8: Isn't that Manish?
9: हमारा होस्ट आज के लिए मनीष है। मनीष, कैसा लग रहा है विथ ऑल द म्यूजिक, ऑल द एनर्जी?
6: A1 है, बस एकदम मजा आ रहा है।
10: Wednesday Night Fever के प्रोग्राम में सब दोस्तों का स्वागत है। एंड गेस हू इज बैक, आई एम बैक। ऑलराइट, सबसे पहले आप सब दोस्त, ओए देखो आते सारी मेरी, जो मैंने हेडफोन डाला हुआ था ना उसकी केबल निकल गई थी बाहर एकदम फटाक से, पता नहीं क्या। बट एनीवे, सबका स्वागत करता हूं और जितने भी दोस्त और प्रोग्राम में वापसी एक बार से। और आज एकदम म्यूजिकल प्रोग्राम रखेंगे और म्यूजिकल प्रोग्राम के साथ साथ मेरी अपनी पॉपकॉर्न जैसी बातें तो चलती रहेंगी। और जितने भी दोस्त मेरे साथ हैं, शामिल हैं, उन लोगों का सबका तहे दिल से स्वागत है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है वेंसडे नाइट फीवर। और मेरा नाम है, नाम तो सुना होगा, मनीष AKA DJ गबरू, आप सब दोस्तों के साथ है। लेट्स हैव अ पार्टी टाइम। Wednesday Night Fever, आपका होस्ट एंड दोस्त मनीष। और साथ साथ में बता दूं कि लोटो का ड्रॉ 8 बजे, अगर आप लोटो के ड्रॉ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं 8812 पर अपना नाम टेक्स्ट कर दो।

0: डीजे इन हाउस।
1: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो।
0: एंड द कूलेस्ट आरजे ऑफ योर सिटी।
2: यार आप तो मुझे फुल चेकआउट मार रहे हो।

well, जो बहुत सारे लोगों की जब रिक्वेस्ट थी ना पिछली बार जब मैंने ये गाना बजाया था, तो सबने कहा यार ये देसी स्टाइल वाला जो मिक्स है ना मनीष जरूर बजा। अच्छा अगर आप ड्राइव कर रहे हो ना तो जरा जोर से ना इसका वॉल्यूम करके सुनो यार, मजा आएगा। आई लव दिस सॉन्ग एंड दिस इज फॉर ऑल ऑफ यू।

0: everyone.
1: Ladies and gentlemen, this is RJ Money.
0: आज की दुनिया वही है जहाँ से दूर दूर तक टेंशन का नाता नहीं है।
1: अब भी हो जाइए टेंशन फ्री विद मनीष।
2: चलो साथ साथ में प्रोग्राम को भी करता रहूंगा, साथ साथ बातें भी करूंगा। नाउ आई एम गोना गो टू दिस सॉन्ग एंड दैट सॉन्ग इज फ्रॉम बैंग बैंग।

0: coming back on the loop. Are we ready? Playing
1: beautiful melodies. Hey, आपकी इंट्रोडक्शन खुद ही कर देता हूँ, मेरे को पता है यार, डर रहा हूँ। हाँ, ऐसा है कि मैं आपको बता नहीं सकता, मतलब ये गाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, बिल्कुल भी।
2: Isn't that Manish?
3: हमारा होस्ट आज के लिए मनीष है। मनीष, कैसा लग रहा है विद ऑल द म्यूजिक, ऑल द एनर्जी?
4: A1 है, बस एकदम मजा आ जाता है।

कुछ लोगों का ना फ्रस्ट्रेशन निकालने का अलग सा तरीका होता है, मतलब फ्रस्ट्रेशन अगर निकालनी है तो मतलब एक तरीका होता है यार, देखो आप सीधा किसी से लड़ तो सकते नहीं हो कि एकदम लड़ोगे किसी से, तो ऐसा तो है नहीं है ना कि लड़ाई शुरू कर दोगे या कुछ, तो फ्रस्ट्रेशन निकालने के तरीके होते हैं अलग अलग, और बंदे बड़े क्रिएटिव है फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, ऐसा नहीं है कि मतलब उनके उनके अंदर जो क्रिएटिविटी ना कि दूसरे बंदे को इस तरह से बताओ कि अपनी फ्रस्ट्रेशन भी निकल जाए और दूसरे को मैसेज मिल जाए। मैं मतलब बात कर रहा हूँ जैसे एक बैंक मैनेजर गया, और एक बैंक मैनेजर जैसे बैंक अच्छा बैंक वाले जितने भी सुन रहे हैं देखो मेरा इशारा आपकी तरफ नहीं है, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब आप फ्रस्ट्रेशन निकालते हो तो हाउ इट इज, तो मैं आपको एक चीज सुनाता हूँ कि बैंक मैनेजर गया और बैंक मैनेजर ने रेस्टोरेंट में जाके पूछा कि आज मेन्यू में क्या है, वेटर ने कहा सर तंदूरी चिकन मलाई कोफ्ता मटर पनीर दम आलू मिक्स वेज और आलू लौकी। मैनेजर कहता ठीक है मुझे मटर पनीर के साथ चार रोटियां ले आओ। वेटर कहता माफ कीजिए सर सब खत्म हो गया है कुछ नहीं बचा। मैनेजर कहा तो फिर सारे गिनवाने की क्या जरूरत थी पहले से ही बता देते। वेटर कहता सर मैं रोज एटीएम जाता हूं, वो भी पहले पिन मांगता है फिर अमाउंट पूछता है फिर पूछता है रिसीट चाहिए या नहीं और अंत में बोलता है कैश नहीं है। अब आपको समझ आया कि हमें कैसा फील होता होगा हैं? देखा फ्रस्ट्रेशन निकालने का सही तरीका ये होता है।

0: Ashik Homes Limited. For the first time, rent to buy. Fantastic opportunity to own a brand new home. If you have Kiwi Saver and some debt, Ashik Homes can still help. Got some credit issue? No issue. Finance can be arranged from just 5% deposit. Stop renting, start owning. Buy direct from the developer. Over $50 million of brand new houses available. Call 021-277-0859 or visit ashikhomes.co.nz.
1: New Zealand ke kai bade bade events mein hone wale jo bade bade marquee aap dekhte hain na, are Manukau Diwali Sikh Games mein, ye marquee events Auckland Marquee and Party Hire ke hain. 20 सालों से हैं बिजनेस में. इनके माकी बड़े स्ट्रांग होते हैं बॉस. घर पे फंक्शन हो तो टाइम पर माकी लग जाएगा और टाइम पर उतर भी जाएगा. इवेंट्स ऑकलैंड का नंबर लिखें 09265 0505 और सुनिए, ये पोर्टल लू भी हायर पर देते हैं. इवेंट्स ऑकलैंड को कॉल करें 09265 0505
0: और तराना का नाम मेंशन करने पर आपको स्टेज हायर्स, मंडप और माकीज पर अप टू 5% का डिस्काउंट भी मिलेगा.
2: इंट्रोड्यूसिंग पिज्जा हट्स न्यू टीका एंड पनीर रेंज. Rich tikka base, creamy paneer, bold flavour. Get the first taste from $10.99 pickup at Pizza Hut. Limited time only, T's and C's apply.
3: For the one who's always been there, celebrate her with Pandora. Buy two full price pieces and receive a third one free, just in time for Mother's Day. Offer ends 10th May in store or online at pandora.net. Conditions and exclusions apply.
4: Get a $100 digital Visa card with AMI. Buy a new comprehensive car policy online before the end of September. Visit ami.co.nz. T's and C's apply. AMI. On your side.

0: You are tuned into with Manish, New Zealand's favorite evening Hindi radio show, only on Tarana.
1: बट्टी साहब नमस्कार आपको.
2: ओ छागे गुरु छागे तुसी तो.
1: अरे क्या हाल चाल है आपके, ठीक हो आप?
2: नहीं भाई, जहाँ जाते तुम्हारी आवाज आती है, बोलते हैं सूरज की किरणी जहाँ जाती है ना फूल खिल जाते हैं, वैसे जहाँ तुम्हारी आवाज पहुँचती है ना बंदा खिल जाता है भाई.
1: बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच.
2: तुम्हारी आवाज है भाई.

0: There's a reason the Big Ben six-pack is a go-to in Kiwi homes. Everyone gets hungry, just not at the same time. Someone's just walked in, starving. Someone's heading out, also starving. Someone said they weren't hungry, now they are. Someone's just eaten, and somehow hungry again. Waves of hunger just keep coming, but so do the pies. That's the genius of a Big Ben six-pack. So if hunger's a constant force at your place, grab a pack. Big Ben, feed your mission.
1: घर को स्वस्थ रखने के लिए अपने बेड शीट्स और पिलो केसेस को हर 7 से 10 दिन में जरूर धोएं, ताकि डस्ट, माइट्स और एलर्जीज दूर रहें। आप चिंता मत करो, ये काम स्टोरार्ड रोड लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनर्स माउंट रस्किल को सौंप दो। यहाँ आपको 24/7 सेल्फ सर्विस लॉन्ड्रोमैट या फिर आप अपने कपड़े यहाँ छोड़ दीजिए और यहाँ की टीम वॉश, ड्राई और फोल्ड करके आपको कपड़े दे देंगे। स्टोरार्ड रोड लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनर्स 220 स्टोरार्ड रोड माउंट रस्किल। आसान भरोसेमंद और 24/7।
2: Want to go halvesies with Mercury? Just sign up for electricity and add broadband, mobile or both, and we'll give you 50% off your monthly broadband and mobile plan for 12 months. Terms and eligibility apply. Broadband availability may vary. Mercury, bring the buzz.

और एक बार फिर से वेलकम टू वेंसडे नाइट फीवर, जितने भी दोस्त मेरे साथ शामिल है। और सबसे पहले आप आज हमारी जो लोटो की विनर है वो है सोनिया। सोनिया अगर आप सुन रहे हो तो फटाक से मैं आपको मैसेज करूंगा और आपको बताऊंगा कि आप टिकट कैसे प्राप्त कर सकते हो। और साथ में आज गाने ऐसे ही चलेंगे जैसे फ्लो में। और दूसरा मेरे पास एक्चुअली कहानी थी आज यार, फिर मैं सोच रहा हूँ कि नहीं यार नेक्स्ट वीक करूंगा वो कहानी। बड़ी जबरदस्त कहानी है, मतलब राजू की कहानी है और उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट भी है, बट लेकिन आई थिंक प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक उसको करेंगे। लेकिन आज सबका मूड जो है ना वो म्यूजिकल हुआ हुआ है, जैसे भी मेरे पास सारे के सारे जो आपके मैसेजेस आ रहे हैं, एवरी वन इज जस्ट लाइक आज ठीक है यार, आज बजा गाने, आज डिफरेंट डिफरेंट तरह के गाने सुनने को मिलेंगे। और साथ में मेरे बहुत ही प्यारे से दोस्त जो सैटरडे की पार्टी में झूम रहे थे और गा रहे थे और बहुत ज्यादा मतलब मचा रहे थे, उनके लिए ये गाना है। इस वक्त सभी लोग इकट्ठे बैठे हैं एंड दिस सॉन्ग इज फॉर यू मैंडी एंड द होल गैंग। बजना है हसीनो।

0: Coming back on the road.
1: Are we ready?
2: Playing beautiful melodies.
3: मैं आपकी इंट्रोडक्शन खुद ही कर देता हूँ, मेरे को पता है यार, डर रहा है।
2: Telling
3: terrible stories. हाँ, ऐसा है कि मैं आपको नहीं सकता, मतलब ये गाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, बिल्कुल भी।
2: You are listening to
4: Isn't That Manish?
5: हमारा होस्ट आज के लिए मनीष है। मनीष कैसा लग रहा है? With all the music, all the energy,
3: A1 है, बस एकदम मजा आ जाता है। अब कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो ऐसी ठंडी सी हवा जब चल रही होती है ना और साथ में मौसम ऐसा होता है, तो उस मौसम का मजा लेने के लिए ना साथ में ना एकदम बोतल खुल जाती है और बोतल खोल के ना खूब इंजॉय करते हैं, और बहुत सारे लोगों को मतलब इंजॉय खुद करते हैं, बहुत सारे लोगों को और मतलब तकलीफ भी देते हैं। जो तकलीफ देने वाले लोग हैं वो सुन रहे हैं इस वक्त, यहाँ मनीष हमारी बात कर रहा है। बट देखो, आपने कहा कि यार वो गाना सुनना है मनीष, अगर तू वो गाना बजा देगा तो मजा आ जाएगा। देखो, पार्टी टाइम में से निकल के मैं ये गाना बजा रहा हूँ, और इनफैक्ट दिस सॉन्ग इज बेसिकली जब मैंने पहली बार बजाया था ना, तो एक्चुअली यहाँ से इवन रेडियो तराना से बहुत सारे लोगों का ये व्यू था कि यार नहीं, मनीष के प्रोग्राम में ये गाना बजा नहीं होगा, बट एक्चुअली बजा था यार। एंड द सॉन्ग इज फ्रॉम लाइक, ये पुराना गाना है लेकिन कारवा बैंड ने बजाया यार। दिस सॉन्ग इज जस्ट अमेजिंग, लाइक आई लाइक द टोन, आई लाइक द रिदम, आई लाइक द काइंड ऑफ यू नो जो फ्लो है।

0: You are tuned into with Manish, New Zealand's favorite evening Hindi radio show, only on Tarana.
1: नहीं मनीष जी एक बात जरूर मैं मेंशन करना चाहूंगा कि जितने भी आरजेस हैं रेडियो तराना, दे ऑल अमेजिंग, यू नो, सब एक से बढ़कर हैं। लेकिन मनीष जी, जो आपका एक टच है ना उसमें, जो आपकी बात करने का अंदाजा जो एक होता है ना, मेरे को बिल्कुल लगता है कि मैं अभी इंडिया में हूँ। और जो इंडियन आरजेस, मतलब क्या कैसे बताऊँ कि आप, यू आर रियली गुड इन दिस, यू नो।
2: थैंक यू।
1: या
2: थैंक यू यार।
1: बहुत बहुत अच्छा लगता है यार, आप जैसे बात करते हो ना एकदम, और अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत अच्छी है एकदम, जो एक कॉन्फिडेंस और जो एक नॉलेज है आपकी, है ना, उसको बहुत अप्रिशिएट। या रियली वेल,
2: थैंक यू अमित भाई, थैक यू सो मच, मींस अ
1: लॉट। ना
2: थैंक यू,
1: यू डूइंग गुड मैन, यू आर डूइंग गुड एंड आई लव रेडियो तराना।
3: वाले बाबू मेरा गाना चला दो।
4: And the coolest RG of your city।
5: यार आप तो मुझे फुल चेकआउट मार रहे हो।

एक गाना ऐसा जो मेरे को बहुत पसंद है, क्यों, रीजन ये है कि इस गाने पे ना मैं खुद डांस करता हूँ और मुझे डांस करना बड़ा अच्छा लगता है इस गाने पे, और मतलब मस्त वाला डांस करता हूँ। एंड दिस सॉन्ग इज एक्चुअली वेरी कैची, अगर आप सुनोगे घर पे थोड़ा सा, अगर वॉल्यूम ज्यादा करोगे ना अपने रेडियो का, और अगर एम्पलीफायर वगैरह लगा हुआ है, मैं गारंटी देता हूँ आपका डांस निकलेगा ही निकलेगा इस गाने पे। यू डोंट बिलीव इट, सुनो।

0: Tarana Life with us on our Instagram handle, Radio Tarana.
1: Hello, everyone.
2: Ladies and gentlemen, this is RJ Mani.
1: RJ की दुनिया वही है जहाँ से दूर दूर तक टेंशन नहीं आता है।
2: तो अब भी हो जाइए टेंशन फ्री विद मनीष।
3: You are tuned into with Manish, New Zealand's favorite evening Hindi radio show, only on Tarana.

धीरे धीरे हम बिल्कुल नवरात्रों के बिल्कुल पास हैं और गरबा सीजन इज एब्सोल्युटली ऑन द पीक, ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, बट इसको थोड़ा सा जैसे कि मैं अपने प्रोग्राम्स में बिल्डअप करता हूँ. शायद नवरात्रों से पहले कोई एक ऐसा प्रोग्राम होगा जिस टाइम मैं पूरा का पूरा जो हमारा गरबा वाला म्यूजिक है वो बजाऊंगा. लेकिन फिलहाल जितने भी दोस्त खास तौर पे प्रोग्राम सुन रहे हैं एंड दे जस्ट वांटेड टू हैव अ फील अबाउट इट, यार प्रोग्राम में मनीष गरबा म्यूजिक भी होना चाहिए, तो आप सब दोस्तों के लिए.

0: You are tuned into with Manish, New Zealand's favorite evening Hindi radio show, only on Tarana.
1: अभी मेरी बात हो रही थी बहुत ही प्यारे से दोस्तों के साथ, लेकिन खास तौर पे जिनके साथ मैं बात कर रहा था वो कुछ जो होते ना, लाइक जैसे कि हम लोग कहते हैं कि अभी यू नो घर से काम, मतलब घर का संभालना, घर को संभालना, तो आप क्या कहते हैं उसको? हम लोग मतलब जैसे हम हिंदी में उसको गृहिणी कहते हैं ना, गृहिणी. गृहिणी इज अ ब्यूटिफुल वर्ड, राइट? गृहिणी शब्द कितना, मतलब अगर आप बात करो तो गृहिणी शब्द सबसे पहले आपको बहुत सुकून सा देता है, गृहिणी, है ना? तो मैं अभी सविता जी आपसे बात कर रहा था और बहुत सारे प्यारे से आपके दोस्त हैं जो प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो मैं आप लोगों के लिए एक बात कहना चाहूंगा. आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि हम लोग तो गृहिणी हैं. बहुत देर के बाद ये वर्ड मैंने सुना. सबसे पहले तो बस सुना तो फिर मेरा मन किया कि कुछ इसके साथ कुछ आपको बताऊं कि गृहिणी का मतलब क्या होता है ना. गृहिणी शब्द को मामूली समझने की भूल मत करना. जो गृहिणियां होती है ना, घर संभालती हैं. अब इस वर्ड का मतलब कि गृहिणी शब्द को मामूली समझने की भूल मत करना. सारा घर जिसका ऋणी हो, ये होती है गृहिणी. चार लाइनें गृहिणी पर, कभी तंगी में, कभी मंदी में, कभी बंधन में, कभी पाबंदी में, कभी घर गृहस्थी के धंधे में, कभी कर्तव्यों के फंदे में. ख्वाहिश उसकी झूल गई अपनों की परवाह करने में, वह खुद को ही भूल गई, उसको हम गृहिणी कहते हैं. और सच होता ना, हम लोग कभी कभी सोच नहीं पाते ना एग्जैक्टली. और सविता जी ने बड़ी अच्छी बात बोली कि पूरा दिन ऐसा निकल जाता है पता ही नहीं लगता. यू नो, बच्चों का ध्यान रखना, घर को लुक आफ्टर करना, हर एक इंसान का, घर में जितने भी लोग हों उनकी सबकी पसंद का नापसंद का ध्यान रखना, कहीं ना कहीं बहुत सब चीज़ों का ध्यान रखते रखते आपको नहीं लगता कोई इंसान अपने बारे में भूल ही जाता होगा यार, है ना? और फिर भी कई लोग ऐसे दुनिया में हैं जो शायद इन सब चीज़ों को नहीं समझते और उनको लगता है कि ये तो यू नो दिस इज जस्ट बेसिकली अ नॉर्मल थिंग, ये तो होता ही है. बट यार जो करता है और जो स्वयं को खो देता है उन सब चीज़ों में, स्वयं को बिल्कुल एब्सोल्युटली जस्ट यू नो कहते ना लॉस्ट हो जाता है इंसान, और कभी अपनी फुर्सत भी नहीं रहती, अपनी याद नहीं रहती. कभी उनके भी शौक हुआ करते थे, कभी वो भी यू नो जिंदगी को जिंदगी के सभी रंग देखे करते थे, उनके लिए अब वो रंग सिर्फ अपने परिवार तक सीमित है. तो मेरी तरफ से आज वो सारी गृहिणियों को बहुत सारा वाला प्यार, और यू नो थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन जिनके घरों में गृहिणियां हैं और उस घर को देखती हैं, उस घर को संभालती हैं, उस घर को आगे ले जाती हैं, उस घर को घर बनाने वाली गृहिणी. तो उन सबको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार और बहुत सारी जितने भी प्यारे से दोस्त जुड़े हुए हैं जिन्होंने आज इस बात को छेड़ा मेरे साथ, उसके लिए भी थैंक यू सो मच. अब ऐसा नहीं है कि मैं इसके साथ कोई सीरियस गाना ऐड करूंगा, ना आप लोगों के लिए ऐसा नहीं यार. बट फिर मैंने सोचा कि आपको प्यारा सा गाना सुनाता हूँ. एंड दिस सॉन्ग इज बेसिकली मूवी है आज़ाद, बड़ा मतलब जबरदस्त वाला गाना चल रहा है, तो मैंने कहा चलो यार आज फिर इनके लिए ये बजाता हूँ. तो गृहिणियों, अगर आप डांस करना चाहते हो इसका आइटम सॉन्ग में डांस करते हैं यार, वही अम्मा भी है ना, तो चलिए

अभी धीरे धीरे हमारी जो सेगमेंट्स होती है ना, फिर धीरे धीरे से जो पार्टी सॉन्ग्स होते हैं उनको धीरे से मैं मेलो डाउन सेगमेंट में लेकर आता हूँ, ताकि आप शाम मतलब ऐसे मध्यम मध्यम वाले गानों को एंजॉय करें। और जितने भी दोस्त मेरे साथ शामिल हैं उनको एक बार फिर से इस सेगमेंट में, खासतौर पे 9 o'clock की बात की सेगमेंट में आप सबका स्वागत है। अब इसमें सुनेंगे आप ऐसे वाले गाने जो आपके दिलों को छू जाते हैं एकदम, क्योंकि रोमांटिक गाने हमेशा हमारे दिलों के बहुत करीब रहे हैं, और इन गानों में बहुत सारे इमोशंस होते हैं। कई गीत ऐसे भी हैं जिनमें आपकी अपनी फीलिंग्स और आपके अपने एहसास जुड़े होते हैं। सो उन सब गानों के साथ ये मेलो डाउन सेगमेंट स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले राहत फतेह अली खान साहब और तुलसी कुमार की आवाज में एक ऐसा गाना, जिस गाने को खास तौर पे मतलब मेरे हिसाब से आपने बहुत बार सुना होगा, जब भी हम इसको सुनते हैं उतना ही मजा, उतना ही ताजापन, उतना ही ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि गाना इज ऑल अबाउट लव एंड दिस सॉन्ग इज द एंजॉय जिंदगी में बात बन गई।

एक दीवार पे चांद टिका था, मैं ये समझा कि तुम बैठे हो। एक दीवार पे चांद टिका था कि मैंने समझा कि तुम बैठे हो। उसके चेहरे की चमक के सामने सादा लगा, उसके चेहरे की चमक के सामने सादा लगा। आसमां पे चांद पूरा था मगर आधा लगा। अच्छा लगा आपको तो सुनिएगा ये प्यारा सा गाना। एंड दिस इज ब्यूटिफुल सॉन्ग एंड फ्रॉम वन एंड ओनली, वेरी फेवरेट ऑफ माइंड। एंड जब भी ये गाना गाते हैं ना, इनकी मीठी सी आवाज और इनका प्यारा सा चेहरा देख के बड़ा अच्छा लगता है। हर गीत इनका दिल में उतरता है क्योंकि शायद वो अपने दिल से ही गाते हैं। तो चलिए सुनते हैं दर्शन रावल की आवाज में।

0: तुझे मेरे बारे में वो सब
1: मीठी बातें, मीठे एहसास, मीठे ये पल बहुत ही खास, तो चलो कुछ मीठा हो जाए मनीष के साथ।

0: क्यों थोड़ा म्यूजिक कम करो? अरे अरे अरे भाई साहब आइए, कैसे हैं?
1: नमस्ते नमस्ते, मंडप बड़ा खूबसूरत बना है, नजर पहले वहीं गई।
0: एग्जैक्ट मंडप का है, कितना प्यारा लग रहा है ना।
1: प्यारा मंडप तो है, पर खर्चा बड़ा किया होगा भाभी।
0: अरे नहीं नहीं, देखो खर्चा तो वैसे होता ही है शादी में, पर एनजेड मंडप के मंडप बहुत ही अफोर्डेबल होते हैं।
2: मंडप के मंडप खूबसूरत, अफोर्डेबल, और यू विल डील विद प्रोफेशनल्स। कॉल टुडे ऑन 09265050505 और विजिट एनजेड मंडप फेसबुक पेज।
0: और तराना का नाम मेंशन करने पर स्टेज हायर, मंडप और मार्कीज पर आपको मिलेगा 5% का डिस्काउंट।
3: गेटिंग योर होम ready for winter now can make it easier to keep warm for less. Upgrades like insulation, double glazing and efficient heat pumps can help keep heat in and reduce your energy bill for years to come. Search EECA, that's EECA, get winter ready.
4: At Bunnings Trade, no matter where you are, we're here to help. Our builders team with dedicated account managers has got you covered at every building stage, from the front fence to the back gate. Call 0800 134 872 to find out more. Bunnings Trade, helping business is our trade.
5: The DJ Shalin Show.
1: DJ Shalin Show every Saturday, 6
5: with the best music from around the globe.
6: Doesn't matter what I do, let me come back on blue.
7: Are we ready?
5: Playing beautiful melodies.
8: मैं आपकी इंट्रोडक्शन खुद ही कर देता हूँ, मेरे को पता है यार, डर रहा है कि मैं बता नहीं सकता, मतलब ये गाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया बिल्कुल भी।
9: हमारा होस्ट आज के लिए मनीष है। मनीष कैसा लग रहा है विद ऑल द म्यूजिक, ऑल द एनर्जी?
10: A1 है, बस एकदम मजा आ जाता है।

अच्छा मैं ये कभी भी सोचता हूँ, मतलब स्टूडियो में बैठ के दिमाग में आता है यार कि जब आप गाना जब रिक्वेस्ट करते हो, आई मीन ऑफ कोर्स वी ऑल एंजॉय, लाइक यू नो आपका आपकी कोई भी रिक्वेस्ट आती है उसको उतनी ही शिद्दत से उतने ही मजे के साथ मैं भी सुनता हूँ बैठ के। बट यार कभी कभी ऐसा होता है ना जब आपके गाना जहन में आता है या दिमाग में आता है कि यार चलो ये गाना रिक्वेस्ट करो, एंड आई एम लाइक कई लोगों से मैं पूछता हूँ कि आपके आपके मन में क्या फीलिंग आती है जब ये गाना आप रिक्वेस्ट करते हो या मतलब मुझे बोलते हो कि यार ये गाना बजा दो, हालांकि वो गाना आप किसी भी माध्यम से सुन सकते हो। आई नो आई एग्री टोटली एग्री कि अगर रेडियो पे बजता है और अगर पसंदीदा गाना आपका हो और आपका नाम लेकर बजाया जाए तो और भी मजा आता है ना एकदम। मुझे एक बात याद आती है यहाँ पे छोटी सी कि जिंदगी ना एक बड़ी अच्छी बात बोली थी कि जिंदगी एक रेडियो की तरह होती है ना, कब कौन सा गाना बजे नहीं पता होता है ना। कि ऐसा नहीं कि आपको पहले से ही पता है कि यार आपकी प्लेलिस्ट अगर आपकी सीडी चल रही है, आप यू नो स्पॉटिफाई से गाने चला रहे हो तो आपको पता है आपकी स्पॉटिफाई में कौन कौन से गाने हैं और वो लाइन वाइज चलते रहेंगे या रैंडमली उनको गाने को सुनोगे और यू नो दैट। बट यार सही बात ना कि जिंदगी रेडियो की तरह ही होती है कि कब कौन सा गाना बज जाए यू नेवर नो। एग्जैक्टली दैट्स राइट। अभी देखो मेरे पास जब रिक्वेस्ट की बात आती है तो अभी विमल है और साथ में उनके साथ स्नेहा है और उन्होंने कहा कि हमें सचिन टंडन का गाना सुनना है। और इस टाइम पे जब आप मुझे इतने प्यारे प्यारे से गाने, और खास तौर पे सभी लोग बड़ा अच्छी तरह से रूल फॉलो करते हैं, जो हमारी मेलोडाउन सेगमेंट होती है ना उसमें बहुत ही प्यारे से दिल को छूने वाले गाने होते हैं सारे, ऐसे जो आपको आनंद दें। कोई ऐसा सैड गाना मैं नहीं बजाता और मैं कोशिश करता हूँ कि उन सैड सॉन्ग से दूर रहें हम लोग। आई मीन जिंदगी में यार भाग दौड़ करते करते शाम को जब आप घर पहुँचते हो रात को, वैसी थोड़ी देर बैठ के अगर रेडियो सुनते हो तो उसमें भी अगर मैं आपको ऐसे गाने सुनाऊंगा तो क्वाइट ऑब्वियस ही है। आई मीन ये नहीं है कि ऐसा प्रोग्राम नहीं लेके आऊंगा, क्वाइट ऑब्वियस ही है। किसी दिन एक दिन थोड़ा दिल हल्का करेंगे यार प्रोग्राम करने के, मतलब जैसे यू नो दोस्त यार बैठते हैं कि चलो आज दर्द बांटते हैं एक दूसरे के साथ। पर लेकिन इस मेलोडाउन सेगमेंट में आपको गाने सुनने को मिलते हैं जो आपको मतलब आपको दिल को थोड़ी ठंडक देते हैं। जैसे ये गाना है यार, मतलब कभी भी सुन लो आप इस गाने को, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं इस गाने को सुनता हूँ ना एक अजीब सी ठंडक मिलती है मुझे। एंड दिस सॉन्ग इज सॉन्ग ब्यूटिफुली बाय सचिन और ये गीत है

0: एवरीवन, दिस इज मी ज्योतिका तांगरी एंड आप सुन रहे हैं वेंसडे नाइट फीवर विद आरजे मनीष ऑन रेडियो तरान।
1: मीठी बातें, मीठे एहसास, मीठे ये पल बहुत ही खास, तो चलो कुछ मीठा हो जाए मनीष के साथ।

मीठी बातें, मीठे एहसास, मीठे ये पल बहुत ही खास। तो चलो कुछ मीठा हो जाए मनीष के साथ।

0: हाय, मैं हूँ कुमार सानू। आप सुन रहे हो वेडनेसडे नाइट फीवर विद मनीष,
1: आरजे मनीष ऑन तहराना।
2: और राइट, आप सुन रहे हैं मनीष के साथ वंजन नाइट फीवर के इस प्रोग्राम में। अब हमारी मेलोडाउन सेगमेंट, और मेलोडाउन सेगमेंट में जब हमारे साथ कुछ साथी भी हो जाते हैं तो चलिए उनसे भी बात करते हैं। अशोक जी हमारे साथ हो गए। अशोक जी, गुड इवनिंग टू यू, और आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है।
3: नमस्कार मनीष जी, नमस्कार। बहुत सालों से सुन रहा हूं मनीष जी आपको, जब से आप सराहना सुनो। अरे इतना अच्छी बातें आप इतना स्टोरी लेकर आते हो, सभी कुछ बहुत ही अच्छा लगता है। वेरी नाइस,
2: बहुत शुक्रिया सर, दैट्स दैट मींस अ लॉट।
3: हाँ जी बिल्कुल निकी, आपका मैं तो शो भी देखता है आपके, वो बोलते हैं ना बल्ले बल्ले, वो क्या होता है आवाज में, आपके स्टेज होस्ट भी करते हो, मैंने लोगों का देखा पूरा, आवाज में भी दम है पूरा, है ना। बहुत मजा आ रहा, बहुत अच्छा लगता है निकी, बहुत
2: शुक्रिया सर।
3: इतनी तारीफ पर उतनी कम है, जो ट्रू है वो ट्रू है, मैं सीधा बोलता हूँ
2: जी, है ना। It means a lot.

0: Mercury, just sign up for electricity and add broadband, mobile or both, and we'll give you 50% off your monthly broadband and mobile plan for 12 months. Terms and eligibility apply. Broadband availability may vary. Mercury, bring the buzz.
1: Drawing inspiration from urban communities around the world,
2: we present Big O Toy Toy, a brand new urban development in Papatoetoe. Brick, low maintenance, 2 and 3 bedroom homes from 649,000.
1: 5 minutes from New World, eateries, schools, City Rail Link, Puhinui Bus Interchange, and major motorways.
2: Join the new community. Selling now. Find out more at pikotoetoe.nz.
1: That's pikotoetoe.nz. इस मदर्स डे अपनी मम को एक ऐसा गिफ्ट दें जो पूरा साल उनके साथ रहे. isubscribe.co.nz पर आप मैगजीन सब्सक्रिप्शंस पर अप टू 56% की बचत कर सकते हैं, जहां पर आपको ओवर 2000 मैगजीन्स मिलेंगी. iSubscribe वो बेस्ट जगह जहां पर आपको अपनी मम के लिए मैगजीन मिल सकती है. प्लस इनका रिवॉर्ड्स प्रोग्राम ज्वाइन करने पर इंस्टेंट $5 का क्रेडिट पाएं. आज ही सेव करें iSubscribe के साथ isubscribe.co.nz.

0: You are tuned into with Manish, New Zealand's favorite evening Hindi radio show, only on Tarana.
1: भाई आपका शो सुनके बहुत अच्छा लगता है. It's just like feel like you know like connected to the home country.
2: Oh, thank you so much. क्या नाम है आपका सर?
1: और आपका voice है दर्शन. मैं वेलिंगटन से सुन रहा हूँ. मैं ऑकलैंड में नहीं रहता हूँ, लेकिन लाइक जब भी सुनता हूँ बहुत बहुत बढ़िया मजा आता है. सीरियसली सर, तो लोगों को स्वास्थ्य खिलाते रहिए और कीप हैप्पी.
2: और 100% और आप भी इस तरह से मेरे साथ बने रहिएगा. थैंक यू सो मच दर्शन.
1: नो वरीज, थैंक यू.

0: फ्यूल का दाम रोज बढ़ रहा है और स्मार्ट ड्राइवर्स अब स्विच कर रहे हैं। फ्यूचर है इफिशियंट ड्राइविंग का और वेस्ट सिटी ओमोडा जेको के साथ ये शिफ्ट और भी इजी हो जाता है। इंट्रोड्यूसिंग द पावरफुल J7 सुपर हाइब्रिड सिस्टम, परफॉर्मेंस भी, इफिशियंसी भी और ऑल इलेक्ट्रिक J5 EV, जीरो एमिशंस, मैक्सिमम सेविंग्स। आज ही वेस्ट सिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनकी एक्सपर्ट टीम से मिले। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट westcityautogroup.nz और सर्च ऑन सोशल्स फॉर वेस्ट सिटी ऑटो ग्रुप।
1: साली जी, ऑकलैंड फिर कब आओगी?
2: जीजू, मैं तो स्पेशली यहाँ क्राइस्टचर्च से बार बार ऑकलैंड बेकन बीन्स के लिए आती थी, पर आपको पता है वो हमारे यहाँ क्राइस्टचर्च में ही बेकन बीन्स खुल गया है, या एट 268 लिंकन रोड, एडिंगटन, क्राइस्टचर्च। अब यहाँ पे बेकन बीन्स के डिलिशियस बिस्किट्स, पैटीज, पेस्ट्रीज, केक्स, सब कुछ मिलता है। मैं तो कॉल करके ही अपना ऑर्डर दे देती हूँ 0800-786-101 पे। अब तो यहाँ क्राइस्टचर्च में ही है मेरा बेकन बीन्स।
1: तो हमसे मिलने नहीं आओगी?
3: कानून तोड़ दिया, अब तो तू बेटा क्रिमिनल हो गया।
4: तुम पे बहुत तरस आता है यार, पर पुलिस का मामला है तो।
3: डरो मत, गलती कभी कभी हो ही जाती है और कानूनी गलती हो जाने पर एक दरवाजा हमेशा खुला रहता है। गुल लॉ लीगल सर्विसेज फाउंडर मिस्टर गुल के पास लॉ के साथ साथ पुलिस डिपार्टमेंट का भी एक्सपीरियंस है। वो आपको सलाह ही नहीं देंगे बल्कि आपकी सिचुएशन को समझेंगे भी। कॉल टुडे ऑन 0223530872 और विजिट gullaw.co.nz।
5: Stay tuned to Tarana for all IPL updates.
6: IPL, the Indian Premier League. Get behind your favorite IPL team. Kyunki hum denge IPL par sabhi updates, reviews aur previews. Stay tuned to Tarana.
7: Brought to you by Indelible Homes and Chasers.
8: Meethi baatein, meethe ehsaas, meethe ye pal, bahut hi khaas. To chalo kuch meetha ho jaye, Manish ke saath.

0: You are tuned into with Manish, New Zealand's favorite evening Hindi radio show, only on Tarana.
1: हाँ जी, और यू नो वन ऑफ द बेस्ट डीजेस अराउंड ओकलैंड, तो क्या कह सकते हैं, पार्टी में चार चांद लगाने लोगो लव गुरु वो सब कुछ, और क्या कह सकते हैं.
2: थैंक यू, थैंक यू सो मच हिमांशु फॉर योर काइंड वर्ड्स यार.
3: रेडियो तराना की शान हो.
0: Stay tuned with Manish from 7:30 till 8 only on Tarana.

मीठी बातें, मीठे एहसास, मीठे ये पल बहुत ही खास। तो चलो कुछ मीठा हो जाए मनीष के साथ।

0: क्रिश मेरे साथ हैं, क्रिश नायडू।
1: थैंक यू मनीष जी, यादव ब्रदर सेड यू नो यू विल ब्रिंग अ डिफरेंट टच एंड फ्लेवर टू द प्रोग्राम। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू एंड कीप द टैलेंट। एंड ऑफ कोर्स आई हैव बीन टू मेनी इवेंट्स वेयर यू हैव बीन द एमसी एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर यू नो द वाइब दैट यू ब्रिंग टू द इवेंट्स इज अमेजिंग। बोथ फिजी इवेंट्स, इंडिया इवेंट्स एंड द वे यू यूनाइट एवरीवन। या जस्ट कीप द टैलेंट एंड स्टे हंबल मैन एज यूजुअल। थैंक यू वेरी मच।
2: थैंक यू सर। थैंक यू सो मच क्रिश भाई। थैंक यू, रियली अप्रिशिएट।

0: You are tuned into with Manish, New Zealand's favorite evening Hindi radio show, only on Tarana.
1: भाई आपका शो सुन के बहुत अच्छा लगता है. इट्स जस्ट लाइक फील लाइक यू नो लाइक कनेक्टेड टू द होम कंट्री.
2: थैंक यू सो मच. क्या नाम है आपका सर?
1: और आपका वॉइस है दर्शन. मैं वेलिंगटन से सुन रहा हूँ. मैं ऑकलैंड में नहीं रहता हूँ, लेकिन लाइक जब भी सुनता हूँ बहुत बहुत बढ़िया मजा आता है. सीरियसली सर, सर लोगों को आश्वस्त खिलाते रहिए और कीप हैप्पी.
2: और 100% और आप इस तरह से मेरे साथ बने रहिएगा. थैंक यू सो मच दर्शन.
1: नो वरीज, थैंक यू.
3: चले हैं पुराने सफर पर, कुछ पुरानी यादें और पुराने गीत लेकर. साथ हूं मैं आपका हम सफर, आपका आरजे मनीष. बॉलीवुड फ्लैशबैक.

0: You're listening to RJ Manish.
1: लेकिन साथ साथ में कॉलर्स भी लूंगा मैं. गुड इवनिंग रोशी, कैसे हैं आप?
2: बढ़िया हूँ मनीष भाई, कैसे हो आप?
1: जी मैं एकदम फर्स्ट क्लास. और कैसा चल रहा है? और आप प्रोग्राम में शामिल हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल.
2: मनीष जी, मैं फर्स्ट थिंग ये बोलना चाहूंगा कि आपकी आवाज नहीं सुनते तो ऐसा लगता है कुछ सुना सुना है. तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन वेनसडे. वेनसडे की राह में देखता रहता हूँ बिकॉज मैं ऊपर चलाता हूँ तो आपकी आवाज के बिना वो सुनापन रहता है. तो बहुत मिस किया आपको.
1: थैंक यू ऋषि, थैंक यू सो मच यार, बहुत शुक्रिया.

0: से मैं हूँ आपका कैप्टन सत्येंद्र शर्मा।
1: Drive with Captain Satyendra Sharma, weekdays from 4 to 7 p.m.

0: की हसल से ब्रेक लीजिए, पजल को छोड़ म्यूजिक की दुनिया में चलिए और थोड़ा चिल कीजिए विद मी नेहा इन द शो चिल विद नेहा, मंडे टू सैटरडे 1 PM टू 4 PM ओनली ऑन रेडियो तराना।
1: लाइफ तो बस हसल है।

0: टोनी।
1: रेडियो तराना आपका अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन।
2: हुसन तेरा साकी साकी बेक पूरी बेक।

Tarana Life with us on our Instagram handle, Radio Tarana.

0: वतन से दूर आपको वतन की याद दिलाता है, आपको खुश करता है, आपका ख्याल रखता है। आपका फेवरेट, आपका साथी रेडियो तराना।
1: जय सायराम। आज सार में है और भजनों का कार्यक्रम लेकर हम आए हैं। इस आधे घंटे का सफर है तो हमने तय किया है कुछ सुंदर भजनों के साथ। लीजिए सुनिए सबसे पहले ये सुंदर सा भजन।

मदर्स डे का मंथ है तो सभी का हम मदर्स डे का आशीर्वाद देते हैं और ये कहते हैं कि आप मदर्स डे मनाइए खूब धूमधाम से। और कृष्णा मैशअप का भजन आप सुनेंगे, इसके साथ गुरुबा जी को भी आप सुनिएगा। मैं हूँ मगन भाई जय साई राम।

जय श्री साराम। भगवत गीता किंचिता अधिता, गंगा जल लव कणिका पीता, सकृता अपि येन मुरारी समर्चा, क्रियते तस्य यमेना न चर्चा। ये श्लोक भज गोविंदम से लिया गया है। भगवत गीता किंचित अधीता, भगवत गीता आप जानते हैं गीता की बात कर रहे हैं। किंचित का अर्थ होता है इवन ए लिटल, थोड़ा बहुत भी। अधीता जितने पढ़ लिया हो, है स्टडीज। भगवत गीता किंचित अधीता, गंगा जल लव कणिका पीता। गंगा जल आप जानते हैं किसकी बात कर रहे हैं। लव कणिका का अर्थ है इवन ए ड्रॉप ऑफ गंगा वाटर, एक बूंद भी अगर गंगा जल का। पीता जिसने पी लिया हो, जिसने सिप किया हो। सकृता पी एट लीस्ट वंस, येना बाय होम, मुरारी समर्चा, जिसने भगवान मुरारी की पूजा की हो, मुरारी करते भगवान श्री कृष्ण। क्रियते तस्य इज डन टू हिम, यमेना विल जमा ना चर्चा, नेवर डिस्कशन। कहने का मतलब अंग्रेजी में कहा जाए, टू वन Who has studied the Bhagavad Gita even little? Who has sipped at least a drop of Ganga water? Who has worshipped at least once Lord Narayana, Lord Murari? To him, there is no discussion. नोटिफिकेशन किस चीज का? इवन यमराज कैन नॉट डिस्ट्रॉय हिम। इस श्लोक के अंदर तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण जो लगी हैं मुझे, मैं उसकी चर्चा करना चाह रहा हूं। पहला, भगवत गीता किंचित अधीता, गंगा जल लव कणिका पीता, सकृता अपि येन मुरारी समर्चा, क्रियते तस्य यमेना न चर्चा। पहली बात है द स्टडी ऑफ गीता, दूसरी बात है सिपिंग ऑफ गंगा जल, तीसरी है वर्शिप ऑफ मुरारी अर्थात गॉड भगवान। पहला है स्टडी ऑफ गीता, गीता को पढ़ना। अब आपने भैया गीता तो कितनी बार सुनी होगी, पढ़ी होगी, 5000 साल से ज़्यादा हो गया गीता है हमारे पास। कितने लोग आए, कितने चले गए, कितनों ने पढ़ी है। मेरा प्रश्न बहुत साधारण सा है, ए सिंपल क्वेश्चन, क्या जिन लोगों ने भगवत गीता पढ़ी है उनको मुक्ति प्राप्त हो गई है? नहीं ना। दूसरा है गंगा जल पीना या सिपिंग ऑफ गंगा जल, इवन ए ड्रॉप ऑफ गंगा जल। हो सकता है आप में से बहुत लोग हों जिन्होंने गंगा में स्नान किया हो, हो सकता है ऐसे बहुत से यहाँ पर व्यक्ति हों, बहुत से लोग हों, मेरे भाई बहन हों जिन्होंने गंगा जल पिया हो। हम यहां कह रहे हैं इवन ए ड्रॉप ऑफ गंगा जल, सही है ना। तो क्या जिन्होंने गंगा जल पिया है उनको मुक्ति प्राप्त हो गई है? तीसरी बात, वर्शिप ऑफ गॉड इवन वंस, एक बार भगवान की पूजा करना, मुरारी की पूजा करना। अरे भाई आप तो कितनी बार तो मंदिर गए हैं, आपने कितनी कथाएं सुनी होंगी, कितनी बार आपने परमात्मा के आगे, मूर्ति के आगे जाके माथा टेका होगा।
क्या आपके जीवन में कोई क्रांति आई, कोई रेवोल्यूशन आया? जैसे पहले से आज भी वैसे ही तो हैं, क्या मुक्ति मिली? वापस चलते हैं। भगवद गीता किंचित अधीता, स्टडी अ गीता इवन ए लिटल। यहां शब्द पे गौर कीजिएगा, इवन ए लिटल। कहने का तात्पर्य है, जिसने भगवद गीता को रति भर भी पढ़ा हो, थोड़ा सा भी पढ़ा हो, एक श्लोक भी पढ़ा हो, वह मुक्ति प्रदान कर सकता है। हम ये नहीं कह रहे हैं मुक्ति मिल जाएगी, हम कह रहे हैं इट हैज अ पोटेंशियल टू ग्रांट यू लिबरेशन, इट हैज अ पोटेंशियल टू गिव यू मुक्ति। ठीक है, आपको मुक्ति मिल सकती है, ये बात कह रही है। अदरवाइज विचार किया जाए, अन्यथा शास्त्र आपको छुड़ाएगा नहीं बल्कि बांध देगा। तात्पर्य यह है, गीता का एक श्लोक आपको मुक्ति दे सकता है अगर आप समझें तो, अगर आप उस पर चलें तो। अन्यथा ये श्लोक जो है आपके मस्तक में एक भार बन के बैठ जाएंगे। यू विल बी कैरिंग द वेट ऑफ ऑल द श्लोकस बट नो ट्रांसफॉर्मेशन। जब इनको पढ़ने के बावजूद हमारे जीवन में बदलाव नहीं आ रहा, परिवर्तन नहीं आ रहा, तो पढ़ने का फायदा क्या हुआ आपको? भाई आप किसी पंडित से मिल लो, आप जैसे उनके पास बैठेंगे ना, वो श्लोकों का ढेर लगा देंगे आपके सामने, संस्कृत में समझाएंगे बोल बोल के, आपको रति भर समझ नहीं आएगा, रति भर। फिर बोलेंगे यहाँ इस पुराण में है, इस गीता में है, रामायण में है, ब्रह्मसूत्र में है, इसमें उसमें है, रट्टे मार रखे हैं। जब उन्होंने डिग्री की होगी, पढ़ाई की होगी संस्कृत भाषा में, उन्होंने कहा जो भी उनकी स्पेशलाइजेशन होगी, भागवत गीता रामायण पुराण श्लोकों को रट लिया, उनका अर्थ बता रहे हैं, लेकिन उनको खुद को लालच खा रहा होगा, क्योंकि उनका पालन नहीं कर पाए। केवल स्कॉलरशिप, आप जरा सोचिएगा, शास्त्रों की स्कॉलरशिप, आपने शास्त्र को पढ़ा, गीता को पढ़ा, 18 अध्याय 700 श्लोक रट लिए, लेकिन रट्टा तो तोता भी मारता है, पैरट भी बोलता है, तो क्या उस तोते को मुक्ति प्रदान हो गई है? अरे भैया जो खुद डूब रहा हो आपको क्या उबारेगा? विचार करने योग्य बात है, महाभारत में कथा आती है कि गुरु द्रोण अपने शिष्यों पांडवों कौरवों को शिक्षा दे रहे थे, जब उन्होंने पहला अध्याय पढ़ाया, पहला लेसन पढ़ाया, पूछा कल मैं पूछूंगा, अगले दिन बच्चे वापस गए विद्यालय में, गुरुकुल में, गुरु ने पूछा कल मैंने ये पढ़ाया तो याद आ गया, सीख लिया? सब ने कहा हाँ हमें याद है, लेकिन युधिष्ठिर बोले मुझे याद नहीं हुआ। कहते कोई बात नहीं बेटा कल आना। अगले दिन फिर गुरुकुल में गए, युधिष्ठिर को नहीं समझ आया, कहते मुझे याद नहीं है सर। कई दिन हो गए, महाराज बोले, गुरु द्रोण बोले क्या बात है बेटा, एक छोटी सी बात मैंने समझाई है आपको, वो याद नहीं हुई अभी तक, बाकी सबको याद हो गई है। युधिष्ठिर बोले महाराज आपने जो समझाया मैं उतने अमल नहीं कर पा रहा हूं। बोला क्या था लेसन, क्या था सबक, क्या था? कि झूठ नहीं बोलना। महाराज युधिष्ठिर कभी असत्य नहीं बोलते थे, हमेशा सत्य बोलते थे।
जब तक मैं इसको अपने अंदर धारण नहीं करूंगा, जब तक मैं उसको प्रैक्टिस नहीं करूंगा, तब तक मुझे सीखने का क्या मतलब हुआ? इट इज नॉट स्क्रिप्चर विच मेक्स यू फ्री, बट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्क्रिप्चर दैट मेक्स यू फ्री। भगवद गीता किंचित अधीता। वेन यू रीड ए लिटिल बिट ऑफ भगवद गीता, डोंट ट्राई टू लर्न एवरीथिंग, अदरवाइज यू विल मिस ए लिटिल। थिंक इट ओवर, ए लिटिल ऑफ गीता, ए लिटिल ऑफ डिवाइन, ए लिटिल ऑफ अवेयरनेस ऑफ डिवाइन, दैट विल बिकम सीड इन द हार्ट, दैट विल स्प्राउट लेटर ऑन। थोड़ा सा आपने पढ़ लिया गीता के दिव्य शब्दों को, अगर आपने उसको समझ लिया, अपने हृदय में उतार लिया, वो बीज बन जाएंगे आगे। बीज एक पौधा बनेगा, पौधा एक वृक्ष बनेगा, और वृक्ष में से सुगंध आएगी। सब कुछ एक बीज के भीतर है। ऑल आर हिडन इन वन सीड। ब्राह्मणों का ये काम है कि समाज के अंदर अवेयरनेस और डिविनिटी लेकर आए। ब्राह्मणों का ये काम है, ये कर्तव्य है, काम नहीं कर्तव्य है, द ड्यूटी इज अ मॉरल ड्यूटी, कि लोगों के मस्तक में, लोगों के दिमाग में, लोगों के स्वभाव में, लोगों के जीवन में, लोगों के चरित्र में एक बदलाव लेकर आए। उनका प्रयास हमेशा वहां होना चाहिए, ब्रह्म क्यों ले जाना। द माइंड इज फुल ऑफ वर्ड्स, हमारा मस्तक शब्दों से भरा हुआ है, बट हार्ट इज अनटच्ड ऑफ गीता। सम कैन रीड गीता, सम कैन सिंग गीता, बट ए न्यू म्यूजिक इन द हार्ट। अगर आपने सूर्य की एक किरण को देखा, आप जान जाएंगे किरण ये कहां से आ रही है, सूर्य से आ रही है, सूर्य कितना प्रभावशाली है। दूसरा जो भाग, गंगा जल अब कणिका पीता, जिसने गंगा जल की एक बूंद को भी चखा हो, क्या आप गंगा जल का सारा पानी पी सकते हैं? नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है, असंभव। गंगा किनारे हजारों लोग वास करते हैं, रहते हैं, क्या उन सबको मुक्ति मिल गई है? उनके तो घर में नल में भी गंगा जल आता है। भक्ति रूपा गंगा, अर्थात भक्ति की एक बूंद भी आपको अगर आपने पी ली वो काफी है। भक्ति की एक बूंद भी अगर आपने पी ली, आप मीराबाई बन सकते हैं। हम कह रहे हैं इट हैज द पोटेंशियल। गंगा क्या है? ठंडी है, पवित्र है, भक्ति स्वरूप है, सागर की ओर जा रही है। शब्दों में गौर कीजिएगा, सागर की ओर जा रही है, सागर परमात्मा है। मन में ठंडक नहीं, मन में शांति नहीं, मन में तृप्ति नहीं, मन में संतोष नहीं, मन में पवित्रता नहीं। आर वी रियली प्योर इन अवर लाइफ, इन अवर थिंकिंग, इन अवर एटीट्यूड, इन अवर बिहेवियर, और सबसे बड़ी बात है इन अवर इंटेंशंस। पवित्रता का मखोटा पहनने से आप पवित्र नहीं हो जाते। पवित्रता चाहिए मन में, वाणी में, कर्मों में, इन थॉट्स, इन वर्ड्स एंड डीड्स। हार्मनी या अर्थात सामंजस्य, प्योरिटी, पवित्रता इन थॉट, वर्ड एंड डीड। थॉट का अर्थ है मन, वर्ड का अर्थ है शब्द, वाणी,
और डील करता है आपके कर्म। गंगा जल और कड़ी का पीता, सोचिएगा जरा, जब बच्चा पैदा होता है लोग खुशियां मनाते हैं, उसको गोद में उठाते हैं और हंसाते हैं, लेकिन बच्चे को कोई समझ नहीं होती है। बच्चे के मन में क्या विचार आ रहा होगा? कोई वासना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन धीरे धीरे संसार में वो रमता जाता है, रंगता जाता है, उसके अंदर सारी बुराइयां भी आनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हम वहाँ पर बच्चे को ठीक से गार्ड नहीं करते, ठीक से देखते नहीं हैं। तीसरी बात थी सकृता अभिजयन मुरारी समर्चा, जिसने एक बार भी मुरारी को याद किया हो, जिसने एक बार भी मुरारी को याद किया हो, ठीक है। एक बार जिसने भगवान को याद किया हो, आप घर में माला लेके बैठते हैं, राम नाम जप रहे हैं, आपने राम नाम को एक माला पढ़ ली, दो माला पढ़ ली, हजार मालाएं पढ़ ली, 10,000 मालाएं पढ़ ली, लेकिन मन के अंदर राम नहीं मिले, मन के अंदर राम बसे नहीं हैं। राम का नाम तो एक बार भी काफी होता है। एक बार ना एक गांव में अकाल पड़ गया, बरसात नहीं बहुत टाइम से, किसी ने कहा भैया वो पहाड़ के ऊपर जो मंदिर है ना, वहां जाकर अगर भगवान का यज्ञ करेंगे, पूजा करेंगे, तो बरसात जरूर बड़ी मूठनाता वर्षा हो जाएगी। ठीक है जी, पंडितों ने तय किया भाई अगले रविवार को नेक्स्ट संडे मॉर्निंग 9 बजे वहां पर एक हवन होगा, उसके बाद जोर की वर्षा हो जाएगी। तो सब लोग पहाड़ पर चल रहे थे, एक छोटा बच्चा भी जा रहा था हाथ में छाता लेके। तो पंडितों ने बोला क्या बात है बेटा, यहाँ पर कई महीने से बारिश नहीं हुई है, तुम छाता लेके ऊपर जा रहे हो, छाते की क्या जरूरत है? कहते महाराज मैं ऊपर जा रहा हूँ, हवन होगा, यज्ञ होगा बारिश के लिए, हवन खत्म होगा तो बरसात आएगी, मैं वापस कैसे आऊंगा, भीग थोड़ी जाऊंगा, भीगना थोड़ी मेरे को। बच्चे के मन में यह विश्वास है कि ऊपर जाके प्रार्थना करने से, पूजा करने से, हवन यज्ञ करने से बरसात होगी, क्योंकि उसको यह बताया गया। लेकिन पंडितों के मन में ये धारणा नहीं है, ये कॉन्फिडेंस नहीं है। प्रे विथ फेथ नॉट डिल्यूजन, इसलिए कहा इवन लिटिल बिट ऑफ गीता, वर्शिप गॉड इवन ए लिटिल बिट, वर्शिप का मतलब है परमात्मा को यह समझ लेना कि हर जगह परमात्मा है। पर्वत की चोटी में तू ही तू, मुझे याद आ रही अपने विद्यालय के दिनों की कविता, पर्वत की चोटी में तू ही तू, गंगा की लहरों में तू ही तू, पवन की तरंगों में तू ही तू, फूलों के खुशबू में तू ही तू, सूर्य के उजाले में तू ही तू, चंद्रमा की शीतलता में तू ही तू, माँ की ममता में तू ही तू, प्रत्येक प्राणी प्रेम प्राणी में चेहरा मुस्कुराता हुआ वह भी तू ही तू। भगवत गीता किंचिताधीता, गंगा जल लव कणिका पीता, सकृता अभिजैन मुरारी समर्चा, क्रियते तस्य शमेना चर्चा। जो व्यक्ति इन तीन चीजों को कर रहा हो उसको यमराज से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसका यमराज भी क्या बिगाड़ लेगा? विचार कीजिएगा जरा आप, उसका यमराज भी क्या बिगाड़ लेगा?
तो हम ये कह रहे हैं यहाँ पर इस चीज को आप एक, मैं शब्दों को खोज रहा हूँ क्या बोला जाए इसके लिए, आप इसको एक स्पिरिचुअल प्लान बना कर रह सकते हैं। आप फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं ना, मैं इतने पैसे जमा करूँगा, इतने इकट्ठे हो जाएंगे मेरे पास, तब मैं प्रॉपर्टी लूँगा, तब मैं मकान लूँगा, फ्लैट लूँगा, आदि आदि। हाँ, प्लान बनाते हैं, मैं इतने साल का हो जाऊँगी तब मैं विवाह करूँगी, तब मेरे बच्चे होंगे, तब मकान लेंगे। आप प्लानिंग करते हैं दुनिया भर के, हम हॉलीडे छुट्टी के लिए जाएंगे, हॉलीडेज में जाएंगे, लेकिन क्या स्पिरिचुअल प्लानिंग की है कभी? मेरे भीतर के विकार कब कम होंगे, मेरे भीतर के वासनाएं कब खत्म होंगी, काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर ये कब समाप्त होगा? इसलिए ये बहुत जरूरी है सेल्फ एनालिसिस। वो क्या चीज है भैया? एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, आपके अकाउंटेंट जो होते हैं आपके बिजनेस के अकाउंट बनाते हैं, लेकिन क्या हमने कभी अपने कर्मों का अकाउंट बनाया है, अपनी वासनाओं का अकाउंट बनाया है? मैं पिछले साल कहां से अब कहां पहुंचा हूं? तो आपको विचार करना होगा कि हम किस प्रकार से अपने भीतर ये बदलाव ला पाए। वो विचार करने से चीजें आएंगी, अपने आप तो आएंगे नहीं। और जब तक हम इस रास्ते पे चलने के लिए सीरियस नहीं होंगे, तब तक कोई फायदा है नहीं असल में। आप विचार कीजिएगा, भगवद गीता किंचिता धीता गंगा जल कणिका पीता सकृता पे येन तुम्हारी समर्चा क्रियते तस्ते मेना न चर्चा। और यहां से हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे किसी दूसरे विषय के साथ अगले सप्ताह। जय श्री साईं राम।

0: और संजेश आपका दिल बहलाने।
1: सुनिए मॉर्निंग बज सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 से 9 शिलेश और संजेश के साथ।
2: मॉर्निंग बज, मॉर्निंग बज, मॉर्निंग बज
3: रेडियो तरवाना टाइम चेक।
4: Proudly brought to you by Indelible Homes. Phone 0800-233-111. Website indelibleHomes.co.nz.
5: Hey, very good morning. Time check ये कर लेते हैं। सुबह के 6:03 जो है ये हो चुका है।
4: पैसिफिक में अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को भेजे डीजी सेल का $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप, या करे कैश ट्रांसफर $300 या उससे ज्यादा का इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ और जीते एक्साइटिंग प्राइजेस।
5: ट्रैफिक की ओर एक नजर, मोटरवे कॉन्स्टेलेशन ड्राइव से 16 मिनट्स ये लग रहा है। नॉर्थ वेस्टर्न पर मैसी से 17, सदर्न पर मैनेकाउ से 20, साउथ वेस्टर्न पर अभी सब ठीक ठाक दोनों तरफ, और टू द एयरपोर्ट आपको 24 मिनट्स जो है ये लगने वाला है। वेलिंगटन में अपर यूनिवर्सिटी सिटी सेंटर 20, लोअर हट से 16, अपर हट से 29, ईस्टबर्न से 28, और एयरपोर्ट की और अगर आप जा रहे हैं तो आपको 13 मिनट्स ये लगने वाला है।
4: Be in the draw to win one of 15 $500 cash prizes this Mother's Day with DigiSail. तो भेजे $20 का टॉप अप या $300 cash to your family and friends in the Pacific.
5: Alright, very good morning. आपको कहेंगे एक और एक दिन की शुरुआत हम कर रहे हैं। आज Thursday morning है, 7th of May, और बस धीरे धीरे वीकेंड की ओर हम बढ़ने लगे हैं। कल बस वीकेंड की शुरुआत होने ही वाली है, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे जो है ये भी हम कहेंगे। होपफुली आपका वेंसडे ठीक ठाक गया एंड यू गाइज ऑल हैड अ गुड डे। अब बैक एक और एक दिन की शुरुआत, आज थर्सडे है, बस फ्राइडे एकदम टचिंग डिस्टेंस पर आ चुका है। जितने भी हमारे रेगुलर लिसनर्स हैं आपको भी हम गुड मॉर्निंग कहना चाहेंगे। धीरे धीरे आप भी हमारे साथ में शामिल हो जाएंगे और मैसेजेस जो है ये भी आपसे आने लगेंगे। सो दैट्स ऑलवेज गुड टू नो कि आप दोस्त भी जाग चुके हैं। चलो मॉर्निंग बज की शुरुआत कुछ प्यारे प्यारे गाने से हम करने वाले हैं। वंस अगेन आप सभी को अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जो है ये हम कहना चाहते हैं।

0: जिंदगी बहुत कीमती है तो फ्यूनरल भी अलग ही होना चाहिए, ठीक वैसे जैसे जिंदगी उन्होंने जी थी। ऑकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम ने पिछले कई सालों से हमारी कम्युनिटी को बेस्ट फ्यूनरल सर्विस दी है। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन और भी किसी भी रिलीजन की जरूरत को समझकर बिल्कुल सही तैयारी की जाती है। यहाँ इजी पे फ्यूनरल प्लान भी अवेलेबल है। इजी इंस्टॉलमेंट टर्म्स पर एडवांस पेमेंट के बारे में पता करने के लिए कॉल करें 2788600।
1: So you're trying to eat less meat, but you know Jamie Oliver? Before you spend 45 minutes trying to make a can of lentils taste like dinner or turn a cauliflower into steak, listen to the sound of a BK plant-based Whopper patty sizzling on a flame grill. Smoky, juicy, and effortlessly tasty. Tofu? Burger King, king of plant-based. See burgerking.co.nz for details on our plant-based range.
2: Getting your home ready for winter now can make it easier to keep warm for less. Upgrades like insulation, double glazing, and efficient heat pumps can help keep heat in and reduce your energy bill for years to come. Search EECA, that's EECA, get winter ready.
3: Radio Tarana, ka hai ye plan? Business ko banaye Superman.
4: Apne business ko lekar jaiye nayi unchaiyon par by advertising on the leading radio station, Radio Tarana.

0: Call Ajeshni today on 02196-1386 for sales on Tarrana. So yaad rakhna, number ghumana, 02196-1386 for advertising on Radio Tarrana.
1: उधर सुबह आईपीएल का एक जो खेल है ये भी खेला गया, सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच में. व्हाट एन एक्साइटिंग गेम दैट वाज. पहले बैटिंग करते हुए सनराइजर्स ने 235 फॉर 4 जो है ये बनाया. अभिषेक शर्मा 35, ट्रेविस हेड 38, ईशन किशन 55 और हेनरिक क्लासन ने 69 जो है ये बनाया. नितेश कुमार रेड्डी ही चिप्ड इन 29 रनों के साथ में. और फिर चेस में पंजाब किंग्स जो है, प्रियांश ये अर्ली आउट हो गए, प्रभसिमरन सिंह ये भी आउट हो गए जल्द. कूपर कॉनली ने 100 रन जो है ये बनाया, बट स्टिल नॉट इनफ टू हेल्प हिज टीम. और इसमें सनराइजर्स हैदराबाद की जीत 33 रनों से हुई. एंड आई थिंक दिस इज पंजाब किंग का ये जो सेकेंड लॉस ऑफ द टूर्नामेंट जो है ये हो चुका है. और अब सनराइजर्स हैदराबाद वापस टेबल पर टॉप चले गए हैं. आज रात्रि को ओवल, टुमारो मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच में जो खेल है ये खेला जाएगा. आई थिंक क्वाइट एक्साइटिंग. और अब धीरे धीरे हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द टूर्नामेंट ये हम आ चुके हैं. फ्यू मोर मैचेस टू गो, वेल 3 वीक्स ऑफ मैचेस टू गो. और फिर उसके बाद में जो प्लेऑफ्स हैं और जो ग्रैंड फाइनल है ये 1 जून को रहेगा, जब यहाँ पर न्यूजीलैंड में किंग्स बर्थडे वीकेंड ये हम सेलिब्रेट करने वाले हैं. उधर नेवाडा यूएसए में राकेश सिंह भाई, आपका भी स्वागत है. गुड मॉर्निंग आपको भी कह रहे हैं. ऑनलाइन प्रोग्राम का मजा आप ले रहे हैं, आपको भी हम मॉर्निंग बज में स्वागत कर रहे हैं.

0: राजस्थान की मेहमान नवाजी के तो क्या कहने, और अब वही मेहमान नवाजी और वही स्वाद आपको मिलेगा यहाँ ऑकलैंड में एट श्री रेस्टोरेंट। ऑथेंटिक राजस्थानी एंड डिलिशियस इंडियन वेजिटेरियन क्विजीन, राजस्थान की मशहूर दाल बाटी चूरमा, चाट आइटम्स एंड मेनी अदर स्नैक्स एंड फुल मील्स। ऑकलैंड के मशहूर शेफ रामेश्वर आप सबको निमंत्रण दे रहे हैं टू द श्री रेस्टोरेंट एट 11 bar 726 ग्रेट साउथ रोड मानिकाव ऑपोजिट रेनबोज इन। और यहाँ फंक्शंस होस्ट करने के लिए भी बड़ी जगह अवेलेबल है। Shree Restaurant. Open 6 days, closed on Wednesdays.
1: If your business needs a boost, a push in the right direction, or some shelter to get you through, KiwiBank can help with Fast Capital, the digital loan application with real-time decisions. It's the fuel for your rocket, the wind in your sails, and an umbrella in the rain that allows you to grow, expand, or provide a buffer for your business. Search KiwiBank Fast Capital to apply online today. This is Kiwi. Eligibility criteria, lending criteria, T's and C's and fees apply.
2: Indelible Homes are specialized in building high-quality standalone and terraced houses at very reasonable prices. Please send your RC, BC drawings and they will build for you. Visit indelibalehomes.co.nz or call 0800-233-111. That's 0800-233-111.
3: हर थर्सडे रात 10 बजे से तराना के रंग रूपा के साथ
4: मॉर्निंग बज़। मॉर्निंग बज़, मॉर्निंग बज़
5: सुनिए। मॉर्निंग बज़ सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 से 9 शिलेश और संजेश के साथ।
6: मॉर्निंग बज ये चल रहा है सोनल के साथ में। आपको भी गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, आपका भी स्वागत। थोड़ी देर से आज आप शामिल हुए हैं, कोई बात नहीं, अब इसी तरह से हमारा साथ आप जरूर दीजिएगा। उधर कुछ हैवी वेदर वार्निंग्स ये दिए जा रहे हैं, स्पेशली फॉर दी साउथ आइलैंड अप टू 400 millimeters जो रेन है ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रिस्क ऑफ फ्लडिंग एंड स्लिप्स, अबाउट 30 hours ऑफ वेट वेदर जो है इट्स ऑन इट्स वे पार्ट्स ऑफ द साउथ आइलैंड के लिए। हैवी रेन वार्निंग जो है नॉर्दर्न और वेस्टर्न एरिया के लिए। सभी गेल्स तो काफी तेज गति से हवाएं जो है ये चलेगी, क्योंकि एक नहीं बट दो वेदर सिस्टम जो है अपना प्रेजेंस ये फील कराने वाली है। सो अगर अभी आपने नहीं देखा है रेन, वेल यू विल सून सी इट अराउंड द साउथ आइलैंड। और कुछ जो वार्निंग्स है ये दिए जा रहे हैं, तो वेदर अपडेट में मैं आपको जरूर बताऊंगा कि किस किस जगह पर क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ वेदर वार्निंग्स ये दिए जा रहे हैं। न्यूज में और क्या कुछ हो रहा है, बस संजेश ये भी हमारे साथ में हो जाएंगे न्यूज के साथ में, जो 7 बजे से शुरू होगा और बीच बीच में बारी बारी से आपके लिए वो जो छोटी न्यूज अपडेट्स ये भी पेश करेंगे।

0: यार मुझे फिजी जाना था।
1: कब जाना है?
0: दिसंबर की छुट्टियां हो जाए तब जाएंगे।
1: रेंटल सॉर्ट आउट कर लिया?
0: नहीं यार, नहीं मिला कुछ।
1: आई थिंक यू शुड कॉन्टेक्ट कोस्टल रेंटल कार्स। इनके पास फैमिली कार्स, SUVs और सभी लग्जूरियस गाड़ियां हैं और गाड़ियां अच्छी कंडीशंस में।
2: कोस्टल रेंटल कार्स, विजिट coastalrentalcars.com.fj और फॉर बुकिंग्स कॉल ऑन 0067965202228।
1: एक्सप्लोर फिजी द कोस्टल वे।
3: इंडिया जाना है तो सफर भी तो वैसा ही होना चाहिए। Fly with Air India from New Zealand. Easy return connections via Australia or Singapore to India. और फिर seamless travel within India. दिल्ली हो या अमृतसर, मुंबई हो या अहमदाबाद, Air India connects you to every corner of India. वही अपनी भाषा और वही अपना स्वाद और वही friendly Indian hospitality के साथ। तो अगली बार घर का सफर हो, Fly Air India. For more information, visit your local travel agent today.
4: How many deals can you get in a day? Hurry into Briscoe's today and find out with one day store-wide savings for, you guessed it, one day only. So hurry in and bag the savings. Stores open till 9 today only at Briscoe's. See online for T's and C's.
5: Namaste Auckland. Mushkil waqt mein Singh's Funeral Services aapke saath hain.
6: Ye offer karte hain complete funeral package. सिर्फ $4,299 से।
5: इस पैकेज में शामिल है ट्रांसफर्स, एम्बामिंग और सर्टिफिकेट, ग्रोवना कास्केट, लाइव स्ट्रीमिंग, एक घंटे का चैपल सर्विस, क्रिमेशन या बुरियल, डॉक्टर सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई एंड प्रोड्यूस करना। ओवरसीज रिपेट्रिएशन अवेलेबल है।
6: ये विन्स अप्रूव्ड है, ऑकलैंड रीजन के लिए वैलिड।
5: ऑकलैंड के बाहर के लिए कॉम्पिटिटिव रेट्स के लिए कॉन्टेक्ट करें शलिन सिंह को 0272929776। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
7: ऑकलैंड एंड वेलिंगटन ट्रैफिक रिपोर्ट।
8: सैटरडे 9th मई को तराना टीम के साथ आए शॉपिंग करने के लिए एट NZ Beds मानेकाव सुपर सेंटर स्टोर एंड गेट सम एक्सक्लूसिव डील्स जैसे वन फ्री पिलो विद एवरी परचेज ऑफ एनी बेड।
9: रास्ते पर अब ढेर सारे लोग निकलने लगे हैं। नॉर्दर्न मोटरवे कॉन्स्टेलेशन ड्राइव से 25 मिनट्स ये लग रहा है, सिल्वरडेल से आपको 48 मिनट्स, नॉर्थ वेस्टर्न पर मैसी से 28 मिनट्स लग रहा है, सदर्न पर मैनेकाव से 33, ड्रूरी से एक घंटा, साउथ वेस्टर्न बोथ वेज फाइन टू द एयरपोर्ट आपको 24 मिनट्स जो है ये लगेगा। वेलिंगटन में परेड रोड टू सिटी सेंटर 27 मिनट्स, लवाहट से 21, अपाहट से 47, ईस्ट बर्न से 38 मिनट्स ये लग रहा है, एयरपोर्ट आपको 14 मिनट्स ये लगने वाला है।
8: Mattresses starting from just $299. The widest range of budget beds and high-tech beds at NZ Beds. So, aaye inke Manikau Supercenter store mein on Saturday 9th May at the corner of Lambie Drive and Cavendish Drive.

0: इंडिया जाना है तो सफर भी तो वैसा ही होना चाहिए। फ्लाई विथ एयर इंडिया फ्रॉम न्यूजीलैंड, इजी रिटर्न कनेक्शंस वाया ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर टू इंडिया, और फिर सीमलेस ट्रैवल विद इन इंडिया। दिल्ली हो या अमृतसर, मुंबई हो या अहमदाबाद, एयर इंडिया कनेक्ट्स यू टू एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया। वही अपनी भाषा, वही अपना जैसा स्वाद, वही फ्रेंडली इंडियन हॉस्पिटैलिटी के साथ।
1: तो अगली बार घर का सफर हो, फ्लाई एयर इंडिया। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट योर लोकल ट्रैवल एजेंट टुडे।
2: देयर इज अ रीजन द बिग बेन सिक्स पैक इज अ गो टू इन कीवी होम्स। एवरीवन गेट्स हंग्री, जस्ट नॉट एट द सेम टाइम। समवनस जस्ट वॉक्ड इन, स्टार्विंग। समवनस हेडिंग आउट, also starving. Someone said they weren't hungry. Now they are. Someone's just eaten. And somehow hungry again. Waves of hunger just keep coming, but so do the pies. That's the genius of a Big Ben six-pack. So if hunger's a constant force at your place, grab a pack. Big Ben, feed your mission.
1: Hey everyone, मैं हूँ नेहा और इस सैटरडे आपको मिलूंगी एट NZ Beds मनिका सुपर सेंटर स्टोर, जहाँ पर आपको मिलेगा अप टू 70% डिस्काउंट ऑन सिलेक्टेड बेड्स, मैट्रेसेस फ्रॉम $299 एंड अ फ्री पिलो विद एवरी परचेज मेड इन द वीकेंड। सो सी यू दिस सैटरडे 10 AM टू मिडडे एट NZ Beds मनिका सुपर सेंटर।
3: ऑकलैंड एंड वेलिंगटन ट्रैफिक रिपोर्ट। पार्टनर विद रेडियो तिराना एंड रीच कम्यूटर्स अक्रॉस ऑकलैंड विद आवर ट्रैफिक रिपोर्ट स्पॉन्सरशिप।
4: ऑकलैंड में नॉर्दर्न मोटरवे कॉन्स्टलेशन ड्राइव से 25 मिनट्स, नॉर्थ वेस्टर्न पर मैसी से 28 मिनट्स, ये लग रहा है सदर्न पर मनेकाओ से 33, साउथ वेस्टर्न ऑल फाइन बोथ वेज टू द एयरपोर्ट आपको 24 मिनट्स जो है ये लगेगा। वेलिंगटन में परिरुआ से 27 मिनट्स, लवाहट से 21 मिनट्स अभी आपको लग रहा है, अपहट से 47, हेवी इन टू द मेलिंग लिंक ईस्टबर्न 38, एयरपोर्ट 15 मिनट्स जो है ये लगेगा, और स्ट्रॉन्ग विंड वार्निंग्स ये भी दिया जा रहा है ओवर द रेमुटाकर्स।
3: योर ब्रांड विल फीचर ड्यूरिंग मॉर्निंग एंड आफ्टरनून पीक आवर्स, इंश्योरिंग मैक्सिमम एक्सपोजर।

0: इस हफ्ते के स्टार ऑफ द वीक है म्यूजिक डायरेक्टर दिलीप और समीर सैन।
1: ब्रॉट टू यू बाय केएमबी कंस्ट्रक्शन। नया घर बनाना है और रिलायबल, ऑनेस्ट और कमिटेड कंस्ट्रक्टिंग सर्विस चाहिए तो कॉल करें भूपेंद्र कुमार को 021-874-871 पर।
2: वेल, स्टार ऑफ द वीक का जो गाना है ये आपको मैं सुनाने वाला हूँ टू एंड दिस आवर, और फिर 7 बजे से टाइम चेक और न्यूज़ का समय जो है ये भी हो जाएगा। वेदर चेकआउट कर लेंगे कि आज मेन सेंटर्स में वेदर क्या बता रहा है। और अगर आपने मिस कर दिया अर्लियर ऑन, साउथ आइलैंड के लिए कुछ हेवी वेदर वार्निंग्स, रेन और विंड ये बताए जा रहे हैं, तो इस पर भी कुछ जानकारी आपके साथ मैं दूंगा। आज सुबह यूएफए चैंपियंस लीग का जो दूसरा सेमीफाइनल ये भी बस शुरू होने वाला है, बायर्न म्यूनिख और उसके साथ में पीएसजी के बीच में। कल कुछ ओएफसी प्रो लीग के मैचेस हुए, इस पर भी जानकारी जो है ये हम आपके साथ में जरूर चेकआउट करेंगे। बट चलो अभी स्टार ऑफ द वीक का जो गाना है आपके लिए पेश करते हैं इस आओ में।

0: Radio Tarana. Time check.
1: Proudly brought to you by Indelible Homes. Phone 0800-233-111. Website indelibleHomes.co.nz.
2: वेरी गुड मॉर्निंग, टाइम चेक कर लेते हैं, सुबह के 7 बज चुके हैं।
3: वेदर रिपोर्ट ब्रॉट टू यू बाय क्रूकिया, विजिट क्रूकिया.co.nz।
2: ओकलैंड में आज पार्टली क्लाउडी जो वेदर है ये रहेगा, आइसोलेटेड शावर्स के साथ में। 21 डिग्रीज आज हाईएस्ट टेम्परेचर, ओवरनाइट 16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ये होने वाला है। वेलिंगटन में मोस्टली क्लाउडी, पॉसिबल शावर्स और आज काफी विंडी सा जो मौसम है ये बना रहेगा। 18 डिग्रीज आपके लिए हाईएस्ट टेम्परेचर, ओवरनाइट 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ये रहेगा वेलिंगटन में। क्राइस्टचर्च में हाई क्लाउड, स्केटर्ड मॉर्निंग और अर्ली आफ्टरनून रेन ये भी आप महसूस करेंगे। 21 डिग्रीज आप आज आपका हाईएस्ट टेम्परेचर, क्राइस्टचर्च ओवरनाइट 14 डिग्री सेल्सियस ये होने वाला है। चलो संजेश तैयार हो गए हैं न्यूज के साथ।
4: दिस इज तराना न्यूज,
5: समाचार सुनिए संजेश नारायण से। मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ा अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा कि या तो युद्ध समाप्ति के लिए प्रस्तावित समझौतों को स्वीकार करें, वरना अमरीका की ओर से भारी बमबारी का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट पर लिखा कि अगर ईरान तय शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाता है तो एपिक फ्यूरी अभियान का तुरंत अंत हो जाएगा, लेकिन अगर वे सहमत नहीं होते हैं तो बमबारी शुरू हो जाएगी जो पिछले स्तर से कहीं अधिक तेज और विनाशकारी होगी। दोनों पक्षों यानी कि अमेरिका और ईरान के अधिकारियों के बीच में एक बार फिर से पाकिस्तान में बातचीत हो सकती है।
6: We're dealing with people that want to make a deal very much and we'll see whether or not they can make a deal that's satisfactory to us. We have it very much under control. The blockade is unbelievable. The Navy's been incredible. The job they did is like a wall of steel. Nobody goes through. In particular, the Iranians, they're not getting anything through one way or the other. So they're out of business. And we'll see whether or not they are agreeing. And if they don't agree, they'll end up agreeing shortly thereafter. So that's the way it is.
5: इस बीच अमेरिका ने एक ईरानियन शिप को निशाना बनाया है। दूसरी ओर इसराइल की ओर से सीज फायर के दौरान यह पहली बार है जब बेरूत पर मिसाइल दागे गए हैं। क्रूज शिप पर हंटा वायरस के शिकार 3 मरीजों को नेदरलैंड्स से इवैक्यूएट किया गया है। नेदरलैंड्स फॉरेन मिनिस्ट्री के मुताबिक 41 वर्षीय डच नेशनल, 56 वर्षीय ब्रिटिश नेशनल और 65 वर्षीय जर्मन नेशनल को नेदरलैंड्स इवैक्यूएट किया गया है, जहां पर उनका टेस्ट कराया जाएगा। तीनों का टेस्ट सेनेगल में हुआ था, जिनमें से 2 में हंटा वायरस की पुष्टि हुई जबकि तीसरे मरीज में कुछ सिम्टम्स देखे गए हैं। इसी क्रूज शिप पर हंटा वायरस के शिकार होने के बाद में 3 यात्रियों की मौत हो गई। हंटा वायरस चूहों से फैलता है। मीडिया एंड कम्युनिकेशंस मिनिस्टर पॉल गोल्डस्मिथ का कहना है कि ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी BSA को इसलिए रद्द कर देने का फैसला किया गया है क्योंकि बदलते मीडिया इंडस्ट्री के लिए ये अनुकूल नहीं है। आपको बता दें कि एक पॉडकास्ट को लेकर के ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी का एक निर्णय आने के बाद में सवाल उठा था कि BSA की क्या भूमिका है। मंत्री पॉल गोल्डस्मिथ का कहना है कि देश में मीडिया काउंसिल है तथा अगर किसी को जर्नलिज्म को लेकर के कोई शिकायत होगी तो वहां शिकायत की जा सकती है। एक्सपर्ट्स ये सवाल कर रहे हैं कि देश में सिटीजनशिप हासिल करने के लिए टेस्ट करने की क्या जरूरत है और इससे क्या हासिल किया जाएगा। इंटरनल अफेयर्स मिनिस्टर और एक्ट सांसद ब्रूक वैन वेल्टन ने अनाउंसमेंट की है कि अगले साल के अंत से सिटीजनशिप की अर्जी लगाने वालों को एक एग्जाम देना होगा तथा उन्हें 75% क्वेश्चन का सही जवाब देना होगा। इन सवालों में बिल ऑफ राइट्स सहित क्रिमिनल ऑफेंसेस, वोटिंग राइट्स, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स और गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को लेकर के मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पश्चिम बंगाल के कोलकाता से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वहां पर भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी के PI चंद्रनाथ दत्त की कल रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना कोलकाता के मध्य ग्राम में हुई है। पुलिस के अनुसार देर रात हमलावरों ने चंद्रनाथ दत्त पर अंधाधुंध गोलीबारी की। जानकारी के मुताबिक उन पर कम से कम 4 गोलियां चलाई गई। इस बीच तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दो टूक लहजे में कहा है कि डिसमिस करना है तो करो, लेकिन मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स में अस्थिरता के बीच में बढ़ती ईंधन लागत और आपूर्ति दबावों से निपटने में फिजी की मदद के लिए ऑस्ट्रेलिया ने लक्षित बजट सहायता के रूप में 48 मिलियन डॉलर्स की राशि प्रदान की है। सुबह में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि यह धनराशि फ्यूल की कीमतों में अचानक आए झटकों के तत्काल प्रभाव को कम करने और क्षेत्रीय ईंधन केंद्र के रूप में फिजी की भूमिका को मजबूत करने के उद्देश्य से दी जा रही है। उन्होंने स्वीकार किया कि फिजी और व्यापक प्रशांत क्षेत्र वैश्विक व्यवधानों से असमान रूप से प्रभावित हो रहे हैं, विशेष रूप से मध्य पूर्व में तनाव के कारण से।
4: स्पोर्ट्स न्यूज।
5: ब्लैककैप्स क्रिकेटर जैकब डफी यूनाइटेड किंगडम के दौरे पर नहीं जाएंगे। ब्लैककैप्स टीम इसी महीने बाद में आयरलैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच जबकि इंग्लैंड के खिलाफ जून महीने में तीन टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी। जैकब डफी की पत्नी पहले बच्चे को जन्म देने वाली हैं, इसी वजह से डफी इस दौरे पर ब्लैककैप्स के साथ में यूनाइटेड किंगडम नहीं जाएंगे। काइल जेमिसन और विल ओरो की वापसी टीम में होने जा रही है। माइकल ब्रेसवेल टेस्ट क्रिकेट अब नहीं खेलेंगे जबकि मिचेल सेंटना चोटिल होने के कारण से वे इस दौरे पर नहीं जा रहे हैं। मैट हेनरी, नेथन स्मिथ और ब्लेयर टिकना ये सभी टीम में शामिल किए गए हैं। आईपीएल के टॉप ऑफ द टेबल मुकाबले में पंजाब को हार का सामना करना पड़ा है। सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब को 33 रनों से हराने के बाद में पॉइंट्स टेबल पर बढ़त हासिल कर ली और टॉप पर चली गई है। सनराइजर्स ने 20 ओवर्स में 235 फॉर 4 बनाए। पंजाब की टीम 20 ओवर्स में 202 फॉर 7 ही बना पाई है। सनराइजर्स के पास 11 मैचों के बाद 14 जबकि पंजाब के पास में 10 मैचों के बाद 13 पॉइंट्स। आईपीएल पर जानकारी चेसिस और इंडियन होम्स की ओर से और मत भूलिए कि चैंपियंस लीग का जो मैच सेमीफाइनल का मैच हो रहा है, पेरिस सेंट जर्मेन ने 3rd मिनट में डेम्बेले के द्वारा गोल बना दिया है। पेरिस सेंट जर्मेन की जीत बायर्न म्यूनिख से उसके होम ग्राउंड में 1-0 से होने लगी।
4: ऑकलैंड एंड वेलिंगटन ट्रैफिक रिपोर्ट।
1: इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम हाउस विद अस। Call 0800-233-111.
2: Northern Motorway Constellation Drive से 26 minutes ये लग रहा है। North Western पर Massey से 30, Southern पर Manukau से 35, South Western slow, Northbound Wiri के करीब और उधर to the airport आपको 24 minutes ये लगेगा। Wellington में Porirua to City Center 31 minutes, Lawahat से 31, Upper Hutt से 1 घंटा अब आपको लगेगा क्योंकि एक crash हुआ है south of Pitoni। ऑन रैंप ये अब ब्लॉक करने लगे हैं साउथ बाउंड लेन। ईस्ट बंद से 50 मिनट्स और एयरपोर्ट आपको 16 मिनट्स ये लगने वाला है।
1: व्हेन यू बिल्ड योर ड्रीम हाउस विद इंडेलिबल होम्स, यू कैन पर्सनलाइज एवरीथिंग फ्रॉम किचन एंड बाथरूम कलर्स टू फ्लोरिंग। प्राउड मेंबर्स ऑफ न्यूजीलैंड मास्टर बिल्डर्स।
7: कौन?
8: मैं यमराज हूँ।
7: ओहो, जय हो महाराज। लेने आए हो तो चलो।
8: कमाल है, जाने की इतनी जल्दी?
7: हाँ, मैंने अच्छी लाइफ जी है अभी तक और आगे मेरे फैमिली का भविष्य भी एकदम सेट है। ग्लोबल फाइनेंस वालों ने मेरा लाइफ इंश्योरेंस एकदम अप टू डेट कर रखा है।
8: फिर तो तुम्हें यहाँ कुछ और दिन रहना चाहिए और ये ज्ञान सब में बांटना चाहिए।
7: ओके, थैंक यू महाराज, मैं बांटता हूँ ये ज्ञान। सभी को कॉल करना चाहिए ग्लोबल फाइनेंस को 09255-5500 पर।
9: Global costs are surging. Rising inflation is on the horizon. Beat the hike with the iFurniture Beat Inflation Sale. Grab designer sofas, dining, beds and more at warehouse prices. Don't just watch prices go up, get ahead of them. Shop smarter at iFurniture and lock in the value today. Shop online at iFurniture.co.nz with NZ wide shipping. Visit us in Auckland, Hamilton and Christchurch. iFurniture. Better, cheaper, smarter.

0: रमेश और संजेश आपका दिल बहलाने।
1: सुनिए मॉर्निंग बज सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 से 9 जिलेश और संजेश के साथ।
2: मॉर्निंग बज, मॉर्निंग बज, मॉर्निंग बज।
3: यस, मॉर्निंग बज आप भी सुन रहे हैं सोनल और संजेश के साथ में। आपको गुड मॉर्निंग कहना चाहते हैं धर्मेश प्रसाद, आप भी हमारे साथ दे रहे हैं, आपको भी गुड मॉर्निंग। और उधर शैली शलेशनी, आपको भी गुड मॉर्निंग। जय को भी गुड मॉर्निंग, जनेन को भी हम गुड मॉर्निंग कहना चाहते हैं। और भी हमारे जो लिसनर्स अब साथ हो गए हैं, ऑनलाइन प्रोग्राम का मजा आप ले रहे हैं, वेलकम। आज थर्सडे 7th of May है और धीरे धीरे वीकेंड की ओर हम बढ़ने लगे हैं। होपफुली आपका जो दिन है ये ठीक ठाक जाए, अगर नहीं जा रहा होगा कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में आपके साथ में एक पॉजिटिव अफर्मेशन ये हम शेयर करेंगे। और लेटर ऑन आज मनी मैटर्स में अजय कुमार जी से भी हम बातें करने वाले हैं 7:45 के करीब। अगर आपको कोई गाना सुनना है तो भी आप मुझे बता सकते हैं, अदरवाइज आप दोस्तों के लिए प्यारे प्यारे जो गाने हैं ये तो मैंने पहले से ही लाइनअप कर लिया है। सो वंस अगेन वेलकम टू द मॉर्निंग बज सोनल के साथ में, आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग।

0: online and scan your Everyday Rewards card at checkout before Sunday 10th of May.
1: It's nesting season at Freedom. Save up to 50% off selected sofas, furniture and mattresses. That's up to 50% off. Hurry, sale ends Monday. Only at Freedom.
2: Find the perfect Mother's Day gift at Bunnings. Bring your mum in, have a coffee and have a look around. We've got gifts for the do-it-self mum, the crafty mum and the gardening mum. Get mum a gift she'll love from Bunnings.
3: जैसा सोचोगे वैसा पाओगे. Positive affirmation every day in Morning Buzz with Jilesh.
4: वेल, सोनल के साथ में पॉजिटिव एफर्मेशन ये हम शेयर करते हैं आज सुबह. और चलो गुड मॉर्निंग आप सभी को कह रहे हैं जहां पर भी आप प्रोग्राम का मजा ये ले रहे हैं. और एक जेंटल रिमाइंडर आपके लिए कि लाइफ को परफेक्ट नहीं होना है फॉर थिंग्स टू बी मीनिंगफुल. आपका लाइफ परफेक्ट नहीं होना चाहिए कि आपका लाइफ मीनिंगफुल रहे. मे बी आज आप थोड़ा सा हैवी फील कर रहे हैं एंड जस्ट हैव टू टेक वन स्टेप एट अ टाइम. कोई बात नहीं, प्रोग्रेस हमेशा जोर तोर से जो है ये नहीं होता है. आपको हमेशा दिखाना नहीं है कि आपके लाइफ में प्रोग्रेस होता है. समटाइम्स इट्स ऑल जस्ट अबाउट शोइंग अप ऑन अ न्यू डे. एक डीप ब्रेथ लीजिएगा, अपने आप के आसपास में कुछ ना कुछ आप अच्छा देखिएगा और एक काइंड वर्ड, एक छोटा सा जो मोमेंट है ये आप अपने लिए लीजिएगा. बस यही सोचिएगा कि यू हैव मेड इट सो फार, आगे चलकर आपके लिए लाइफ जो है ये आसान हो जाएगा. तो आज अपने साथ आप जेंटल रहिएगा. डोंट फॉरगेट कि अगर कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, बेटर डेज आर डेफिनेटली ऑन देयर वे.

0: This is Tarana News.
1: देश में दिसंबर चौथाई के मुकाबले भले ही मार्च चौथाई में अनएम्प्लॉयमेंट रेट गिरकर 5.3% हो गई है, लेकिन कुछ रीजन्स में अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी भी बहुत ज्यादा है। ऑकलैंड में पिछले 12 सालों के मुकाबले अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज्यादा 6.6% रिकॉर्ड हुआ है। वेलिंगटन में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.3% जबकि बे ऑफ प्लेंटी में 7.1% है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऑकलैंड में इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज्यादा है क्योंकि कई बड़े इंडस्ट्रीज अच्छा नहीं कर रहे हैं, जिनमें रिटेल और कंस्ट्रक्शन शामिल है। देश में फ्यूल स्टॉक कम हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ बिजनेस इनोवेशन एम्प्लॉयमेंट की ओर से जो डाटा जारी किया गया है, पिछले अपडेट के मुकाबले यानी कि 52 दिनों के मुकाबले अब देश में 49 दिनों के लिए पर्याप्त पेट्रोल है, जबकि डीजल की ओर देखा जाए तो पहले के 52 के मुकाबले 47 दिनों के लिए पर्याप्त डीजल इस वक्त देश में है। वहीं जेट फ्यूल, जिसे पिछले अपडेट में 58 दिनों के लिए पर्याप्त बताया गया था, ये गिर करके 55 डेज के लिए अब हो गया है। इस बीच सिंगापुर मलेशिया में फ्यूल को स्टोर करके रखने पर विचार किया जा रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर निकोला वालेस का कहना है कि मार्स्टन पॉइंट में डीजल को स्टोर करके रखा जा सकेगा, जबकि जेट फ्यूल रखने के लिए देश में जगह नहीं है तथा उसके लिए मलेशिया और सिंगापुर से बातें की जा रही है, लेकिन कोई फैसला भी नहीं हुआ है।
2: So we're considering a large range of ideas, and one of them that has been put to us is if you wanted a special strategic reserve, you could potentially store it offshore, available if you were coming into any shortages. So we'll work through all of those options. No decisions have been made.
1: मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ा अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा कि या तो युद्ध समाप्ति के लिए प्रस्तावित समझौतों को स्वीकार करें, वरना अमेरिका की ओर से भारी बमबारी का सामना करना पड़ेगा।
3: And if they don't agree, they'll end up agreeing shortly thereafter. So that's the way it is.
1: पश्चिम बंगाल के कोलकाता से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वहां पर भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी के पीआई चंद्रनाथ दत्त की कल रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस बीच निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पद से हटने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि बर्खास्त करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मैं इस्तीफा देने वाली नहीं हूं। उधर चैंपियंस लीग सेमीफाइनल के दूसरे के मैच में पेरिस सेंट जर्मेन की जीत अभी भी बायर्न म्यूनिख से 1-0 से हो रही है। लगभग 30 मिनट्स का मैच हो गया है। डेम्बेले ने 3 मिनट में गोल स्कोर किया था।
4: बच्चों बताओ, डिस्टेंस कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है?
5: मैम, डिस्टेंस इक्वल्स स्पीड इनटू टाइम।
4: जीनियस। अब बताओ, रीपेमेंट बढ़ाए बिना मॉर्गेज जल्दी खत्म करने का क्या फॉर्मूला है?
5: मैम, ग्लोबल फाइनेंस का मॉर्गेज जीनियस प्लान।
6: बच्चा बच्चा जानता है कि मॉर्गेज जल्दी खत्म करने का यही फॉर्मूला है, ग्लोबल फाइनेंस का मॉर्गेज जीनियस प्लान। फोन 09255-5500। टीज एंड सीज अप्लाई।
7: ग्लोबल फ्यूल प्राइसेस आर इंपैक्टिंग कीवीज, सो दीज इजी टिप्स कुड हेल्प यू स्ट्रेच अप टू 20% मोर फ्रॉम एवरी टैंक and make your money go further. First, watch your speed so it doesn't creep up. Try to accelerate gently and avoid braking too hard. Check your tire pressure regularly and lighten the load like roof racks or weight from your boot. These small changes all add up to make a real difference. Learn more at fuelsavingtips.govt.nz.
8: Join the Great Big Balance Check at New World. Check your balance in the New World app or ask a checkout to spend your New World dollars today. Only with Club Card. Only at New World. T's and C's apply.
9: Right now at Guthrie Bowron. Enjoy free curtain making on thousands of quality fabrics. Take 15% off selected blinds, shutters and motorization. Plus receive a free in-home measuring quote. Cozy up your home in time for the cooler months. Guthrie Bowron. Inspiration starts here.
10: Mecca's weekly deals are back. That means more of your favourites for less every week. Jump on the Macca's app and check out this week's offer. Macca's weekly deals, only on the app. T's and C's apply. Ba-da-ba-ba-ba.
11: Auckland and Wellington traffic report.
12: Enjoy the rich, creamy taste of Kashish yogurt from Kashish Food. Fresh, delicious, aur har meal ke liye bilkul perfect.
13: Northern Motorway Constellation Drive से 34 minutes ये लग रहा है। North Western पर Massey से 32, Southern पर Manukau से 42, to the airport आपको 24 minutes ये लगेगा। Wellington में Poly Road to City Centre 36 minutes, Salawahat से 45, Upper Hutt से 1 hour 15, Eastbourne से 1 hour 7 और airport आपको 17 minutes ये लगेगा।
12: घर के लिए कशिश योगर्ट की गुडनेस फ्रॉम कशिश फूड. ईट बेटर, लिव बेटर. अवेलेबल इन स्टोर्स नेशन.

0: आकाश और संजेश आपका दिल बहलाने।
1: सुनिए मॉर्निंग बज सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 से 9 जिलेश और संजेश के साथ।
2: मॉर्निंग बज
3: करवा के देख लिया पर ये बीमारी जाने का नाम ही नहीं ले रही।
4: तो डॉक्टर अजीत के पास गई, उनके आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेकर देखो।
3: आयुर्वेदिक वो काम करता है?
4: बिल्कुल, डॉक्टर अजीत पिछले 4 दशक से उन बीमारियों का स्थायी इलाज कर रहे हैं जिनसे लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी।
3: पर यह सुरक्षित तो है ना?
4: सिर्फ सुरक्षित नहीं, यह तो आपकी पूरी लाइफस्टाइल को सेहतमंद बना देता है।
5: कंसल्टेशन एंड अपॉइंटमेंट्स के लिए डॉक्टर अजीत को आज ही कॉल करें 09303-0065 पे या विजिट 465 पानल रोड पानल, वेबसाइट ayurda.com।
6: सुनते हो, घर बनाना स्टार्ट करना है पर मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है बजट और डिलेज की।
7: हाँ, इसीलिए सही बिल्डर चूज करना बहुत जरूरी है।
6: पर कौन? सब लोग तो अलग अलग बताते हैं।
7: मैंने KMB कंस्ट्रक्शन के बारे में बहुत सुना है, वो घर बिना स्ट्रेस टाइम पे और बजट के अंदर कंप्लीट कर देते हैं।
6: सच?
7: हाँ, 18 ईयर्स का एक्सपीरियंस है ओकलैंड में और जो काम लेते हैं कंप्लीट करके ही देते हैं। चलो भूपेंद्र कुमार को कॉल कर लेते हैं 021-874-871 पर, kmbconstruction.co.nz पर देख भी लेते हैं।
8: Fall in love with your home again with an ANZ Reno loan. A home loan top-up of up to $50,000 at just 2.5% per annum, fixed for 3 years. Minimum 20% equity eligibility lending rules, terms and fees apply. Available for a limited time. ANZ, we do how.
9: If you're out there working hard, it's time to put down the tools and pick up a pie. Just head into your nearest Zed and show your Zed business fuel card to get $1 off any pie. Now that's worth going to work for. Ends 25 May while stocks last.
10: Farmers has the best gifts for mum. Surprise her with a new fragrance or beauty gift. Keep her cozy with a new robe and sleepwear. Treat her with some new styling tools or a gorgeous diffuser or candle. Celebrate mum this Mother's Day. Farmers, your department store.
11: Money Matters on Morning Number 1 brought to you by Global Financial Service Limited. Weekdays at 7:45 a.m. Global Finance. Phone 09255-5500.
12: Yes, Money Matters segment every day, Monday to Friday, 7:45 AM, ये हम लेकर आते हैं। और आज Thursday है तो आज हमारे साथ में अजय जी ये भी हो गए हैं। अजय भाई, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप?
13: सुनील जी, आई एम वेरी गुड, हाउ आर यू?
12: यस, मैं भी ठीक हूँ, बस वीकेंड नजदीक आ गई है तो उसके लिए थोड़ा सा एक्साइटमेंट ये बढ़ चुका है। बट कमिंग बैक टू ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज, और आज थर्सडे है तो थर्सडे को इंश्योरेंस पर बातें होती है। अजय जी, आप थोड़ा सा बताइएगा कि लोग जब इंश्योरेंस लेते हैं, कभी कभार, वेल कभी कभार नहीं, 90-95% ऑफ द टाइम लोग इंश्योरेंस लेते हैं फिर उसके बाद में भूल जाते हैं, प्रीमियम्स जाता रहता है बट कोई रिव्यू वगैरह जो है ये नहीं करवाते हैं, एंड देन ईयर प्रति ईयर वो जाता ही रहता है। तो आप बताइएगा कि कैसे अगर हम इंश्योरेंस लेते हैं, आफ्टर इंश्योरेंस के बाद में कैसे हम इसको बेहतरीन कर सकते हैं, क्या कुछ हमें करना चाहिए या माइंड में रखना चाहिए कि इंश्योरेंस लेने के बाद में ही आई थिंक वी शुड स्टिल रिव्यू ईयर पर ईयर, और कैसे इसको हम बेटर कर सकते हैं, इसके बारे में आप बताइएगा प्लीज।
13: सुनील जी, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, परंतु डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप का इंश्योरेंस ले रखा है, कितने इंश्योरेंस ले रखे हैं, कितना प्रीमियम पे कर रहे हैं और आप उसको कैसे बेटर बनाना चाहते हैं, क्या बेटर बनाना चाहते हैं, किस मामले में आपको पिंच हो रहा है। जैसे कि कुछ लोगों की थिंकिंग है कि प्रीमियम बहुत बढ़ रहा है, बहुत बर्डन हो गया है, तो इसको कैसे कम किया जाए, तो उनको फिर अलग सॉल्यूशन दिया जाएगा। कुछ लोगों का ये रहता है कि अगर जो हमने इंश्योरेंस लगा इसकी जरूरत भी है या नहीं हमको अभी इस समय, क्योंकि उनकी सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए हैं, जैसे उन्होंने अपना मॉर्गेज पे ऑफ कर दिया, उनके चिल्ड्रन बड़े हो गए हैं, वो अभी इंडिपेंडेंट हो गए हैं, तो उनको इस टाइप के इंश्योरेंस की या उतने ज्यादा इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है जितना वो सोचते थे पहले, आज से 20 साल पहले या 15 साल पहले, तो उनको फिर अलग सोल्यूशन देंगे। तो किस, जो भी इंश्योरेंस आपने ले रखा है उसको कैसे बेटर बनाना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं, उसके प्रकार से पर्सनलाइज सोल्यूशन ही दिया जा सकता है। बट इन जनरल कुछ चीजें हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि अगर आप कभी स्मोकर थे और जब आपने इंश्योरेंस लिया था और अब आप नॉन स्मोकर हो गए हैं, तो आप और 1 साल हो गया आपको नॉन स्मोकर हुए, तो आपका प्रीमियम कम हो सकता है। तो अगर इस टाइप का अगर आपकी सिचुएशन है तो आपको उसका एडवांटेज लेना चाहिए। अगर आप इंश्योरेंस कंपनी को या अपने इंश्योरेंस एडवाइजर को बताएंगे कि अब मैं पहले नॉन स्मोकर था जब मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, अब नॉन स्मोकर हूँ, तो आपकी लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम या ट्रॉमा इंश्योरेंस या और जो इंश्योरेंस उनका प्रीमियम कम हो सकता है। इसी प्रकार से जब आपने इंश्योरेंस लिया था उस समय आपकी हेल्थ कंडीशन कुछ खराब थी, मान लीजिए आपको ब्लड प्रेशर था या कोलेस्ट्रॉल हाई था या डायबिटीज थी, तो अब आपने इम्प्रूवमेंट कर लिया अपने लाइफ स्टाइल चेंज करके और अब ये चीजें काफी रिड्यूस हो गई हैं, और उस समय इंश्योरेंस कंपनी ने अगर आपको पॉलिसी देते समय कुछ प्रीमियम इंक्रीज कर दिया था तो इंश्योरेंस कंपनी रिव्यू करके उसको कम भी कर सकती है। बात करना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी से, लेटेस्ट मेडिकल रिजल्ट्स भेजने पड़ेंगे आपको। या आपने जब अपनी पॉलिसी ली उस समय आप काम कर रहे थे, आपने इनकम प्रोटेक्शन या मॉर्गेज प्रोटेक्शन पॉलिसी ले रखी थी, परंतु अब आप नहीं काम कर रहे हैं, तो फिर इनकम प्रोटेक्शन पॉलिसी में तो क्लेम मिलेगा नहीं, क्योंकि आप तो काम ही नहीं कर रहे हैं, आपकी तो इनकम आई नहीं रही, तो प्रोटेक्ट क्या करेंगे। तो फिर ऐसे तो रिव्यू करके अपना प्रीमियम कम कर सकते हैं इस टाइप की पॉलिसी में। तो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन क्या है, परंतु ये फैक्ट है जैसा कि आपने भी कहा है कि अगर आपने पॉलिसी ली है तो उसको रिव्यू करना चाहिए रेगुलरली, ये देखना चाहिए इसको बेटर कैसे बनाया जाए, ये भी देखना चाहिए कि आपकी क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उसको कैसे ओवरकम किया जाए, और ये भी देखना चाहिए कि बहुत से केसेस हमें देखने को मिलते हैं उनके पास इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, उनको क्लेम मिलना चाहिए, वो लेते ही नहीं है क्लेम, उनको पता ही नहीं होता है कि क्लेम अप्लाई करना है। तो अगर ऐसी आपकी सिचुएशन है तो क्लेम भी लेना चाहिए, अगर आप प्रीमियम दे रहे हैं तो आप फिर क्लेम भी लीजिए अगर आपका क्लेम बनता है एज पर दी पॉलिसी टर्म्स कंडीशन। और बहुत से कुछ लोग इस तरह से चिंतित होते हैं कि उनका लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम बहुत बढ़ गया, तो आजकल ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है जिनमें प्रीमियम को फ्रीज किया जा सकता है फॉर एवर, इवन डिपेंड करता है आपको उससे बेनिफिट होगा या नहीं होगा, तो सही केस पे पर्सनलाइज ओपिनियन दी जा सकती है। बट एक बार आपने इंश्योरेंस लिया, कोई भी इंश्योरेंस लिया है, उसको तो रेगुलर रिव्यू करके ये जरूर देखना चाहिए कि आप जो प्रीमियम दे रहे हैं उसकी वैल्यू भी आपको मिल रही है या नहीं मिल रही है, या मिलेगी नहीं मिलेगी, और वो इंश्योरेंस आपके लिए कितना यूजफुल है और उसको बेटर कैसे बनाया जाए और ज्यादा यूजफुल कैसे बनाया जाए।
12: वेल थैंक यू वेरी मच अजय जी इतनी जानकारी शेयर करने के लिए। हैव अ फैंटास्टिक थर्सडे, अब बातें नेक्स्ट वीक करेंगे आपसे मंडे को, ठीक है?
13: थैंक यू।
12: ओके थैंक यू। ये थे हमारे साथ में अजय कुमार जी ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज। तो अगर आपका भी इंश्योरेंस है और आप भी सोच रहे हैं इसको रिव्यू कराने के लिए, वेल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको रिव्यू जरूर करिएगा। इनको आप कॉल कर सकते हैं 09255-5500 मंडे टू फ्राइडे 9:30 to 6 ये खुले रहते हैं, सैटरडेज को भी ये काम करते हैं 12 to 5 PM ये आपको जरूर मिलेंगे, या आप इनको विजिट भी कर सकते हैं अलग अलग इनके जो सेंटर्स है न्यूजीलैंड भर में, इधर ओकलैंड में, हैमिल्टन में, नॉर्थ शोर में, सभी जगह पर आपको इनके ब्रांचेस मिलने वाले हैं।
14: ऑकलैंड एंड वेलिंगटन ट्रैफिक रिपोर्ट।
15: पापाटोई, फ्लैट बुश और पापाकुरा के बाद अब DH सुपरमार्केट का सबसे बड़ा स्टोर खुल गया है इन हेंडरसन। दैट्स राइट, योर लोकल इंडियन ग्रोसरी स्टोर नाउ इन हेंडरसन एट 5 मोजेल एवेन्यू ऑफ लिंकन रोड हेंडरसन। ह्यूज क्लीन हाइजीनिक प्लेस टू शॉप विद एम्पल पार्किंग।
12: नॉर्दर्न मोटरवे कॉन्स्टलेशन ड्राइव से 36 मिनट्स ये लग रहा है, नॉर्थ वेस्टर्न पर मैसी से 42, सदर्न पर मैनेकाव से 49, साउथ वेस्टर्न पर स्लो नॉर्थ बाउंड एट विरी टू द एयरपोर्ट आपको 24 मिनट्स ये लगेगा। वेलिंगटन में परेडवा से सिटी सेंटर 36 मिनट्स, लवाहट से 45, ईस्ट बन से 1 घंटा टू द एयरपोर्ट आपको 17 मिनट्स लगेगा।
15: फ्रेश वेजिटेबल्स, ऑथेंटिक स्पाइसेस और सभी इंडियन ग्रोसरी सामान बहुत ही अच्छे प्राइसेस में। DH Supermarket now in Henderson at 5 Moselle Avenue off Lincoln Road.
16: इस हफ्ते के स्टार ऑफ द वीक है म्यूजिक डायरेक्टर दिलीप और समीर सैन।
17: ब्रॉट टू यू बाय KMP Construction, नया घर बना रहे हैं या एक्सटेंशन कर रहे हैं तो आज ही कॉल करें भूपेंद्र कुमार को 01874871 पर।

0: Kia ora, Aotearoa. Good news. The starting age for the National Bowel Screening Program has dropped from 60 to 58 years old. You don't need to do anything. When you turn 58 or 59, you'll be sent a free bowel screening kit. Happy birthday. Even better, you'll get a free kit every 2 years until you turn 75. Bowel screening can find cancer early when it can often be successfully treated. It's free, quick and easy. Bowel screening saves lives. When you get your kit, just do
1: अरे, Indelible Homes वाली गुड़िया इतनी बड़ी हो गई।
2: Hi, मैं हूँ गुड़िया, भाई गुड़िया, जिसके भैया ने उसे रूम से बाहर निकाल दिया था। अब मेरे पास मेरा अपना रूम है, बहुत बड़ा, बहुत अच्छा। Thanks to Indelible Homes. Thank you. See you.
3: नया घर बनाना हो या सब डिवाइड करना हो, Indelible Homes. Phone 0800 233 111.
4: How many deals can you get in a day? Hurry into Briscoe's today and find out with one day storewide savings for, you guessed it, one day only. So hurry in and bag the savings. Stores open till 9 today only at Briscoe's. See online for T's and C's.
5: Hear that? That's the sound of discount day. Get 10 cents off per litre at Mobil when you want it, even on game day. Choose your discount day each week, only in the Mobil NZ app. Let's go. For a limited time only, T's and C's apply.
6: This is the life, eh? Getting stuck in, making the most of every adventure that comes your way. But if you get hurt, who gets harmed? Well, you obviously. But it might not stop there. Because an injury, even a minor one, can affect your mates, your whānau, the people who count on you. So while you're out enjoying yourself, take a moment to have a hmm and ask yourself, if you get hurt, who gets harmed? Find out more at acc.co.nz.
7: Radio Tarana.
8: Proudly brought to you by Indelible Homes. Phone 0800 233 111. Website indelibleHomes.co.nz.
9: गुड मॉर्निंग टाइम चेक ये कर लेते हैं, सुबह के 8 बज गए हैं.
10: Weather report brought to you by Crookia. Visit crookia.co.nz.
9: वेदर ये चेकआउट करते हैं. कल ओकलैंड के लिए बताया गया है कि थोड़ा सा जो शावर्स है ये रहेगा. लेटर ऑन इन द इवनिंग ये बारिश में बदल जाएगी. 21 डिग्रीज कल हाईएस्ट टेम्परेचर रहेगा ओकलैंड में. ओवरनाइट 14 डिग्री सेल्सियस ये होने वाला है. वेलिंगटन की ओर वेल इट्स गोना बी वेरी विंडी टुमारो, फ्यू शावर्स और फिर लेटर ऑन इन द इवनिंग ये बारिश में बदल जाएगा. 18 डिग्रीज आपके लिए कल का हाईएस्ट टेम्परेचर. ओवरनाइट 14 डिग्री सेल्सियस. और क्राइस्टचर्च में वेल पार्टली क्लाउडी विद अ चांस ऑफ शावर्स मॉर्निंग में और आफ्टरनून में भी. 21 डिग्रीज आपके लिए हाईएस्ट टेम्परेचर. ओवरनाइट 11 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है ये बताया गया है. अब साउथ आइलैंड के लिए वार्निंग जो है ये दिया गया है. हैवी रेन वार्निंग ऑरेंज, हैवी रेन वॉच और कुछ थंडरस्टॉर्म आउटलुक्स जो है ये भी दिए गए हैं फॉर द नॉर्थ वेस्ट एंड ईस्ट ऑफ द साउथ आइलैंड. सो नेल्सन, वेस्टपोर्ट, ब्लेनम, फ्रेंड्स जोसेफ, यहाँ पर भी काफी गंभीर बारिश जो है नॉन स्टॉप 30 आवर्स तक ये होने वाली है. संजेश तैयार हो गए हैं न्यूज के साथ.
11: दिस इज तराना न्यूज.
12: समाचार सुनिए संजेश नारायण से. नेशनल सरकार में मंत्री क्रिस बिशप का कहना है कि वे न्यूजीलैंड फेस्ट पार्टी सांसद और मंत्री शेन जोन्स से सहमत है कि रफ स्लीपर्स को स्ट्रीट से हटाना होगा. लेकिन जिस तरह से शेन जोन्स ने रफ स्लीपर्स या जो लोग स्ट्रीट पर रहते हैं उनको हटाने की बात कही है वह उससे सहमत नहीं है. शेन जोन्स ने ऑकलैंड के एक बिजनेस ऑडियंस को संबोधित करते हुए कहा कि न्यूजीलैंड फेस्ट पार्टी अपने चुनावी घोषणा पत्र यानी कि इलेक्शन मैनिफेस्टो में संघर्ष छोटे और मध्यम व्यवसायों, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस को अधिक सहायता प्रदान करेगी भले ही उन्हें खुद होमलेस लोगों को स्ट्रीट से हटाना पड़े. ऑकलैंड बिजनेस चैम्बर के कार्यक्रम में 300 से अधिक कारोबारी नेताओं को संबोधित करते हुए न्यूजीलैंड फेस्ट पार्टी के उपनेता ने स्वीकार किया कि व्यवसाय संघर्ष कर रहे हैं. प्रश्नोत्तर सत्र के दौरान उन्होंने चैम्बर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सैमन ब्रिजेस से कहा, मुझे अपने कई स्मॉल और मीडियम बिजनेस के लिए चिंता है, न केवल ऑकलैंड में बल्कि पूरे राज्य में. हमें उनकी स्थिति सुधारने के लिए आगे चलकर नीतिगत हस्तक्षेपों की एक समर्पित श्रृंखला लानी होगी। उन्होंने ऑकलैंड के केंद्रीय शहर में बेघर होमलेस लोगों की समस्या और उन्हें हटाने के आदेश लागू करने की योजना पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि मैं सल्वेशन आर्मी द्वारा फैलाई गई इस धारणा से सहमत नहीं हूं कि सड़कों और गलियों से आवारा लोगों यानी कि जो लोग होमलेस हैं उनको हटाना किसी तरह से उनकी स्थिति और खराब कर रहा है। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन का कहना है कि सिटीजनशिप के लिए कुछ प्रश्नों का जवाब देना वे नहीं सोचते कि ये गलत है। गौरतलब है कि सरकार अगले साल के अंत से सिटीजनशिप हासिल करने वाले एप्लीकेंट्स के लिए एक टेस्ट लाने जा रही है जिसमें 75% अंक लोगों को लाने होंगे तभी वे सिटीजनशिप के लिए क्वालिफाई होंगे। प्रधानमंत्री का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया और यूके पहले से ऐसा कर रहे हैं।
7: And it's probably not a bad thing that actually New Zealand, you know, new New Zealanders are positively ascribing, you know, some pretty basic stuff about women's rights.
12: देश में दिसंबर चौथाई के मुकाबले भले ही मार्च चौथाई में अनएम्प्लॉयमेंट रेट गिरकर 5.3% हो गई है लेकिन कुछ रीजन्स में अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी भी बहुत ज्यादा है। ऑकलैंड में पिछले 12 सालों के मुकाबले अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज्यादा 6.6% रिकॉर्ड हुआ है। वेलिंगटन में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.3% जबकि बे ऑफ प्लेंटी में 7.1% है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऑकलैंड में इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज्यादा है क्योंकि कई बड़े इंडस्ट्रीज अच्छा नहीं कर रहे हैं जिनमें रिटेल और कंस्ट्रक्शन शामिल है। देश में फ्यूल स्टॉक कम हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ बिजनेस इनोवेशन एम्प्लॉयमेंट की ओर से जो डाटा जारी किया गया है पिछले अपडेट के मुकाबले यानी कि 52 दिनों के मुकाबले अब देश में 49 दिनों के लिए पर्याप्त पेट्रोल है जबकि डीजल की ओर देखा जाए तो पहले के 52 के मुकाबले 47 दिनों के लिए पर्याप्त डीजल इस वक्त देश में है। वहीं जेट फ्यूल जिसे पिछले अपडेट में 58 दिनों के लिए पर्याप्त बताया गया था ये गिर करके 55 डेज के लिए अब हो गया है। इस बीच सिंगापुर मलेशिया में फ्यूल को स्टोर करके रखने पर विचार किया जा रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर निकोला वालेस का कहना है कि मार्सडन पॉइंट में डीजल को स्टोर करके रखा जा सकेगा जबकि जेट फ्यूल रखने के लिए देश में जगह नहीं है तथा उसके लिए मलेशिया और सिंगापुर से बातें की जा रही है लेकिन कोई फैसला भी नहीं हुआ है।
13: So we're considering a large range of ideas and one of them that has been put to us is if you wanted a special strategic reserve, you could potentially store it offshore available if you were coming into any shortages. So we'll work through all of those options. No decisions have been made.
12: मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ा अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा कि या तो युद्ध समाप्ति के लिए प्रस्तावित समझौतों को स्वीकार करें वरना अमरीका की ओर से भारी बमबारी का सामना करना पड़ेगा।
14: And if they don't agree, they'll end up agreeing shortly thereafter. So that's the way it is.
12: पश्चिम बंगाल के कोलकाता से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वहां पर भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी के पीआई चंद्रनाथ दत्त की कल रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस बीच निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पद से हटने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि बर्खास्त करना चाहो तो कर सकते हो लेकिन मैं इस्तीफा देने वाली नहीं हूं।
11: स्पोर्ट्स न्यूज।
12: यूएफए चैंपियंस लीग सेमीफाइनल के दूसरे लेग का मैच हाफ टाइम तक पेरिस सेंट जर्मेन और बायर्न म्यूनिख के बीच में खेला जा चुका है। यह मैच जर्मन क्लब बायर्न म्यूनिख के होम ग्राउंड में खेला जा रहा है। डेम्बेले ने 3rd मिनट में पेरिस सेंट जर्मेन की ओर से गोल बनाकर के टीम को 1-0 से आगे कर दिया है। 6-4 एग्रीगेट के साथ में पेरिस सेंट जर्मेन की टीम इस मैच में आगे हो गई है। याद रहे इस मैच में जिस टीम की जीत होगी उसका सामना फाइनल में आर्सेनल से होगा। आईपीएल के टॉप ऑफ द टेबल मुकाबले में पंजाब को हार का सामना करना पड़ा है। सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब को 33 रनों से हराने के बाद में पॉइंट्स टेबल पर बढ़त हासिल कर ली और टॉप पर चली गई है। सनराइजर्स ने 20 ओवर्स में 235/4 बनाए। पंजाब की टीम 20 ओवर्स में 202/7 ही बना पाई। सनराइजर्स के पास 11 मैचों के बाद 14 जबकि पंजाब के पास में 10 मैचों के बाद 13 पॉइंट्स। आईपीएल पर जानकारी चेजर्स और इंडेलिबल होम्स की ओर से।
11: Auckland and Wellington traffic report.
8: Pacific में अपने family and friends को भेजे DigiCell का $20 या उससे ज्यादा का top up या करे cash transfer $300 या उससे ज्यादा का इनकी किसी भी partner website से My Cash Wallet के साथ और जीते exciting prizes.
9: Motorways की ओर एक नजर। Auckland Motorway and Northern Motorway Constellation Drive से 36 minutes northwestern पर मैसी से 42 southern पर मैंने कहा से 49 to the airport आपको 24 minutes जो है ये लगेगा। वेलिंगटन में अपर एडवर्ड सिटी सेंटर 35 मिनट्स, लोअर हट से 45, अपर हट से 1 घंटा, ईस्टबर्न से 1 घंटा और एयरपोर्ट आपको 17 मिनट्स ये लगने वाला है.
8: Be in the draw to win one of 15 $500 cash prizes this Mother's Day with DigiSale. So, bheje $20 ka top up ya $300 cash to your family and

0: रमेश और संजेश आपका दिल बहलाने।
1: सुनिए मॉर्निंग बज सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 से 9 जिलेश और संजेश के साथ।
2: मॉर्निंग बज, मॉर्निंग बज, मॉर्निंग बज।
3: लिमिटेड फॉर द फर्स्ट टाइम रेंट टू बाय फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी टू ओन अ ब्रांड न्यू होम। इफ यू हैव कीवी सेवर एंड सम डेट, Ashik Homes can still help. Got some credit issue? No issue. Finance can be arranged from just 5% deposit. Stop renting, start owning. Buy direct from the developer. Over $50 million of brand new houses available. Call 021-277-0859 or visit ashikhomes.co.nz.
4: Chalo, let's go.
5: Bilkul nahi jaunga.
4: अरे जाना जरूरी है, चलो।
5: मैं जाऊंगा, अब डेंटर के पास नहीं जाऊंगा।
4: बाबा, वी आर गोइंग टू डॉक्टर राजीव, जिनके पास 25 इयर्स से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, एंड ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट व्हेन इट कम्स टू डेंटल केयर। और इनके यहाँ आजकल डेंटल क्लीन एंड पॉलिश पे स्पेशल्स भी चल रहे हैं फॉर जस्ट $120 टीज एंड सी सप्लाई एट 357 ग्रेट साउथ रोड, ओटाहू।
6: सालों से न्यूजीलैंड में डेंटल केयर में विश्वसनीय नाम डॉक्टर राजीव एट ओटाहू डेंटल केयर। फॉर अपॉइंटमेंट्स कॉल ऑन 0927675 64, that's 2767 564, or visit otahuhudental.co.nz.
7: चाहे पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है। वेस्ट सिटी GWM हवेल, हवेल की हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पर डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स। आज ही वेस्ट सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेला और उनकी एक्सपर्ट टीम से मिले। लिमिटेड टाइम ऑफर, टीज एंड सीज अप्लाई। For more information, visit westcityautogroup.nz or search on socials for West City Auto Group.
8: Introducing Pizza Hut's new Tikka and Paneer range. Rich tikka base, creamy paneer, bold flavor. Get the first taste from $10.99 pickup at Pizza Hut. Limited time only, T's and C's apply.
9: Get into Bunnings today and get cooking, because you can pick up a Mistral 6.5 litre digital air fryer for just $69. But hurry, only while stocks last. Shop online or in-store at Bunnings Warehouse.
10: उधर वेलिंगटन में मुकेश और लीला रेड्डी, आप भी प्रोग्राम सुन रहे हैं लवा हट में। आप दोस्तों को भी गुड मॉर्निंग एंड स्वागत कर रहे हैं मॉर्निंग बज प्रोग्राम में। हैमिल्टन में भीम सिंह भाई, ठाकुर भीम सिंह, गुड मॉर्निंग आपको भी, और आप भी एंजॉय कर रहे हैं, प्रोग्राम का मजा ले रहे हैं। हैमिल्टन में अभी मौसम सुबह सुबह क्लाउडी सा जो है ये बना हुआ है, आपको भी हम प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। और संडे को मदर्स डे है, उधर डीजीसीएल की ओर से भी आप इस मदर्स डे प्यार से भी ज़्यादा भेज सकते हैं वापस घर। सेंड $20 टॉप अप या $300 का मनी ट्रांसफर अगर आप माई कैश वॉलेट में भेजते हैं इन द पैसिफिक, आपको भी मौका मिल रहा है 1 of 15 $500 जो कैश प्राइजेस है ये भी आप जीत सकते हैं। सो डीजीसीएल, कनेक्ट, शेयर एंड विन। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। इसके बारे में और भी जानकारी जो है ये आप प्राप्त कर सकते हैं। प्रोग्राम का जो लास्ट आवर है ये भी अब शुरू हो चुका है। कुछ और प्यारे प्यारे गाने चेकआउट करेंगे कि आज 7th of May को कौन सा वो नेशनल दिन ये भी सेलिब्रेट किया जाता है। ट्रैफिक अपडेट्स आपके लिए और संजेश कुछ और न्यूज़ अपडेट्स जो है इस घंटे पर आपके साथ में ज़रूर शेयर करेंगे।

0: Hey Hamiltonians, guess what? अब आपके यहाँ Hamilton में आ गया है Global Finance. For any kind of home loan, business loan, commercial loan, refixing या refinancing के लिए contact करें Global Finance को, जो mortgage के साथ साथ insurance में भी specialize करते हैं. Life, trauma, health insurance, हर चीज के लिए Global Finance. Now in Hamilton at Unit 26, 20 Clyde Street, Hamilton East. Phone 07577-0888. Global Finance, now in Hamilton.
1: माँ.
2: हाँ मेरे लाल.
1: खुश हो ना माँ?
2: बहुत मेरे पुत्र.
1: नागर अच्छा है ना माँ?
2: बहुत वधिया है पुत्र.
1: आशीर्वाद दो ना माँ.
2: हमेशा खुश रहे, चढ़दिया कलावाच रहे हैं मेरे पुत्र.
1: गालियाँ तो वैसे ही देती रहती है माँ.
2: चुप फिट्टे मुँह तेरे. बहुत मेरा प्यार है मेरे बच्चे.
3: न्यूजीलैंड के मोस्ट ट्रस्टेड और एक्सपीरियंस सब डिविजन एंड बिल्डिंग स्पेशलिस्ट इंडेलिबल होम्स. फोन 0800-233-111.
4: What kind of businesses run on business fiber? Businesses with no time for downtime, businesses that could flatline when deadlines are missed, and businesses that simply can't afford to be offline. If you need fast restoration when there's a network outage, get your business running on business fiber.
5: Tiaki Wai is your new council-owned water organisation. From 1st July, Tiaki Wai will deliver water services across Wellington, Hutt Valley and Porirua. Find out more at tiakiwai.co.nz.
6: इस हफ्ते के स्टार ऑफ द वीक है म्यूजिक डायरेक्टर दिलीप और समीर सैन.
7: ब्रॉट टू यू बाय केएमबी कंस्ट्रक्शन. नया घर बनाना है और रिलायबल, ऑनेस्ट और कमिटेड कंस्ट्रक्टिंग सर्विस चाहिए तो कॉल करें भूपेंद्र कुमार को 021-874-871 पर.
8: वेल मॉर्निंग बस को यहीं हम समाप्त कर रहे हैं. जाते जाते आपके लिए एक और एक स्टार ऑफ द वीक का जो गाना है ये मैं छोड़े जा रहा हूँ. आप दोस्त इंजॉय कीजिएगा अपना थर्सडे और एक बार कल मुलाकात करेंगे आपके साथ में फ्राइडे मॉर्निंग को. इंजॉय योर थर्सडे गाइस. सी यू टुमारो मॉर्निंग 6 बजे. बाय.

0: कौन?
1: मैं यमराज हूँ।
0: ओह जय हो महाराज, लेने आए हो तो चलो।
1: कमाल है, जाने की इतनी जल्दी?
0: हाँ, मैंने अच्छी लाइफ जी है अभी तक, और आगे मेरे फैमिली का भविष्य भी एकदम सेट है। ग्लोबल फाइनेंस वालों ने मेरा लाइफ इंश्योरेंस एकदम अप टू डेट कर रखा है।
1: फिर तो तुम्हें यहाँ कुछ और दिन रहना चाहिए और ये ज्ञान सब में बांटना चाहिए।
0: ओके, थैंक यू महाराज, मैं बांटता हूँ ये ज्ञान। सभी को कॉल करना चाहिए ग्लोबल फाइनेंस को 09255-5500 पर।
2: A good lawyer is recognized for their experience, trustworthiness, and understanding of their client's legal needs. Over the past 30 years, Schaubner is chosen by many, consultant with Sutcliffe Matson Law, now based in new premises at Botany Junction, for property, business, subdivisions, leasing, relationship property, wills, trusts, powers of attorney, and other legal matters. Call Schaubner on 021-625-708 or email schaubner@smlaw.net.nz.

0: लखनऊ गर्म या ठंडा, रिलायंस वेंटिलेशन का हाजिर हो जाएगा बंदा। कॉल अस नाउ फॉर अ फ्री कोट ऑन 0800 787 111। रिलायंस वेंटिलेशन मेक्स
1: हैप्पी हेल्दी होम्स। इस मदर्स डे को बनाए और भी स्पेशल डीजी सेल के साथ। बस भेजे $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या $300 या उससे ज्यादा का कैश ट्रांसफर इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक, और आपका नाम तुरंत जाएगा ड्रॉ में टू विन वन ऑफ द 15 $500 कैश प्राइज। तो $20 का टॉप अप भेजे या $300 का कैश, और डीजी सेल के साथ मौका पाए जीतने का $500 कैश। T's and C's apply.
2: Whiteware Super Sale is on now at Noel-Leeming. Get up to 25% off whiteware and cookware. Plus, check out our finance options available. Conditions and exclusions apply. Whiteware Super Sale ends Tuesday 12th May. Only at Noel-Leeming.
3: माँ हमारे सच्चे दोस्त एक नजर में पहचान लेती है, इस मतलब ही दुनिया को बहुत अच्छे से जानती है, इसीलिए तो हद से ज्यादा ख्याल रखती है। बुखार हमें होता है, चिंता इन्हें, ठंड इन्हें ज्यादा लगती है, स्वेटर हमें तो पहनाती है। माँ अक्सर खुद का काम भूल जाया करती है, पर हमारी ख्वाहिशें वो इन्हें बिना बताए याद रहती है।
4: आप सभी को तराना टीम की तरफ से हैप्पी मदर्स डे।
5: रेडियो तराना, टाइम चेक।
1: Proudly brought to you by Indelible Homes. Phone 0800-233-111. Website indelibleHomes.co.nz.
6: Tarana Studio में सुबह के 9 बज गए हैं।
7: This is Tarana News.
8: समाचार सुनिए संजेश नारायण से। लेबर पार्टी की डेप्यूटी लीडर कामिल सेपलोनी ने न्यूजीलैंड फेस्ट पार्टी डेप्यूटी लीडर शेन जोन्स की उस टिप्पणी की निंदा की है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें होमलेस लोगों को स्ट्रीट से हटाना पड़ा तो वे खुद ऐसा करेंगे। न्यूजीलैंड फेस्ट पार्टी के डेप्यूटी लीडर ऑकलैंड बिजनेस चैम्बर में 300 से ज्यादा बिजनेस लीडर्स को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी की चुनाव घोषणा पत्र के मुताबिक वे मुश्किलों का सामना कर रहे स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस की सहायता करेंगे। उन्होंने कहा कि सल्वेशन आर्मी के मुताबिक जो लोग रफ स्लिपिंग करते हैं उनको स्ट्रीट से हटाने से उनकी स्थिति को और खराब कर दिया जाएगा। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए लेबर पार्टी के डेप्यूटी लीडर कामिल सेपलोनी का कहना है कि वह इससे सहमत नहीं है।
9: They do sound very threatening, and Shane Jones himself should know that he does not have the legal powers to go and physically uplift other New Zealanders from any place, including the streets. And so Shane should know better than that.
8: ऑकलैंड सिटी रेल लिंक के पूर्व चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शॉन स्वेने का मानना है कि इस प्रोजेक्ट को जितने में तैयार किया जा रहा है उससे आधे में तैयार किया जा सकता था। इस प्रोजेक्ट पर कुल $5.5 बिलियन खर्च होगा। पहले इस प्रोजेक्ट की कीमत $3.4 बिलियन बताई गई थी। इन्फ्लेशन और COVID-19 पैंडेमिक के कारण से खर्चे बढ़े हैं। शॉन स्वेने का कहना है कि कई चुनौतियों के कारण से इस प्रोजेक्ट के कॉस्ट बढ़े हैं। दो सालों तक डबलिन में काम करने के बाद में वे अब सिडनी में काम करने के लिए जाने वाले हैं। इस दौरान उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बातें कही कि इस प्रोजेक्ट को जितने में तैयार किया जा रहा है उसके आधे कीमत में तैयार किया जा सकता था। लेबर पार्टी की डेप्यूटी लीडर कामिल सेपलोनी का कहना है कि उन्हें यह नहीं समझ आता कि क्यों देश में सिटीजनशिप हासिल करने के लिए टेस्ट करना होगा। रेडी तराना से बातें करते हुए हमने उनसे पूछा था कि क्या वह सोचती हैं कि ये सही कदम है।
9: A test to qualify for citizenship. I don't even understand why you know this is being proposed. You know, even some of the expectations around English language, you know, for me personally, you know, I had a father that came here in 1964 from the Pacific Islands. He didn't have any English, but he learnt it very quickly, and he contributed a great deal to this country in terms of the work that he undertook on the railways and in the freezing works. We need to value our new migrant workers. We need to value the contribution that they make, and we need to be able to ensure that when they come here, that they are respected and they feel safe and they are valued for the work that they are doing.
8: प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से सिटीजनशिप टेस्ट के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और यूके में कई सालों से ऐसा हो रहा है तथा वे इसका समर्थन करते हैं।
10: And it's probably not a bad thing that actually New Zealand, you know, new New Zealanders are positively ascribing, you know, some pretty basic stuff about women's rights.
8: पश्चिम बंगाल की निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पद से हटने से इनकार कर दिया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद में तृणमूल कांग्रेस ने आंतरिक मंथन तेज कर दिया है। ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास पर बुलाई गई महत्वपूर्ण बैठक में पार्टी के 80 नवनिर्वाचित विधायकों में से मात्र 70 ही पहुंचे, जबकि करीब 10 विधायक अनुपस्थित रहे हैं और कहां गायब हुए यह पता नहीं बताया जा रहा है कि इस बैठक में विपक्ष के नेता के चयन पर भी चर्चा की गई।
7: स्पोर्ट्स न्यूज।
8: पेरिस सेंट जर्मेन ने यूएफए चैंपियंस लीग के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर ली है। पेरिस सेंट जर्मेन का मैच आज बायर्न म्यूनिख के साथ में 1-1 गोल से बराबर में समाप्त हुआ, लेकिन एग्रीगेट 6-5 स्कोर के साथ में पेरिस सेंट जर्मेन की टीम ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर ली है। फाइनल में उसका सामना आर्सेनल से होगा। फ्रेंच क्लब की ओर से 3rd मिनट में डेम्बेले ने गोल बनाया था। बायर्न म्यूनिख की ओर से हैरी केन ने इंजरी टाइम में गोल बनाकर के मैच को 1-1 से बराबर कर दिया। भले ही मैच बराबर रहा, लेकिन एग्रीगेट स्कोर की ओर देखा जाए तो पेरिस सेंट जर्मेन 6-5 से आगे है और ऐसे में उसने यूएफए चैंपियंस लीग के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर ली है।
6: जागोरे कम लाइफ का आयोजन किया गया है पास्ता अनिल और रीना कान द्वारा। ये हिल्स चर्च 179 हिल्सबरा रोड में होने जा रहा है 9 मई को शाम को 6 बजे से, और जानकारी के लिए आप 0211017959 पर संपर्क कर सकते हैं। पुलिस रिक्रूटमेंट सेमिनार का आयोजन किया गया है शनिवार 23 मई को सुबह 9:30 से दिन में 12 बजे तक फिकलिंग कन्वेंशन सेंटर 546 माउंट एल्बर्ट रोड 3 किंग्स में। श्री वेंकटेश्वरा देवास्थानम चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से भोजन मेला होने जा रहा है रविवार 17 मई की सुबह 11 से शाम को 4 बजे तक 378 आररीमू रोड रामारामा में। एंट्री बिल्कुल ही फ्री है।
1: इस मदर्स डे को बनाए और भी स्पेशल डीजी सेल के साथ। बस भेजे $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या $300 या उससे ज्यादा का कैश ट्रांसफर इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक, और आपका नाम तुरंत जाएगा ड्रॉ में टू विन वन ऑफ द 15 $500 कैश प्राइज। तो $20 का टॉप अप भेजे या $300 का कैश और डीजी सेल के साथ मौका पाए जीतने का $500 कैश। टीज एंड सीज अप्लाई।
11: एल्स डिस्काउंट फर्नीचर पापा टोए में चल रहा है अमेजिंग स्पेशल फ्रॉम बेड्स, डाइनिंग सुइट्स एंड लाउंज सुइट्स। खरीदिए ब्यूटीफुल 7-पीस डाइनिंग सुइट या क्वालिटी कॉर्नर लाउंज सुइट और लग्जूरियस क्वीन पिलो टॉप पॉकेट स्प्रिंग मैट्रेस एट रीजनेबल प्राइस। क्वालिटी फर्नीचर लो प्राइस में। एल्स डिस्काउंट फर्नीचर लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल 355 ग्रेट साउथ रोड पापाटोय।
6: क्या काम की भाग दौड़ से कपड़ों का ढेर बढ़ता जा रहा है? वरी मत कीजिए, स्टोडार्ड रोड लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनर्स मॉन्ट्रोस के आपकी मदद के लिए तैयार है। यहाँ आपको मिलता है 24 आवर्स सेल्फ सर्विस लॉन्ड्रोमैट, या फिर आप अपने कपड़े छोड़ दीजिए और इनकी टीम वॉश ड्राई और फोल्ड करके आपको बिल्कुल तैयार देगी। यहाँ सूट्स, ब्लेजर, शर्ट्स, ड्रेसेस और फॉर्मल वेयर के प्रोफेशनल ड्राई क्लीनिंग भी करते हैं, और डुबे ब्लैंकेट से स्पोर्ट्स गेयर की सफाई भी यहाँ पर होती है। स्टोडार्ड रोड लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनर्स 220 स्टोडार्ड रोड मॉन्ट्रोस को। आसान, भरोसेमंद और 24/7।
12: Get a $100 digital Visa card with AMI. Buy a new comprehensive car policy online before the end of September. Visit ami.co.nz. T's and C's apply. AMI, on your side.
13: बात बड़ी आसान सी है मेरी जान, लोग यूं ही नहीं कहते ओल्ड इज गोल्ड। तो मजा लीजिए ब्लैक एंड व्हाइट तराने का, ब्लैक एंड व्हाइट के साथ साथ थोड़े बहुत कलर्स भी।
6: कोई सोफे पर भी पालथी मार करके हमारे इस प्रोग्राम को मजा ले रहा है, कोई सोफे पर बैठ के पैरों को हिला हिला करके चाय या कॉफी की सुबह सुबह मजा लेते हुए प्रोग्राम सुन रहा है, कुछ लोग तो अभी भी कंबल के अंदर है ठंड का मौसम जो आ गया। जो लोग ऑफिस में सुन रहे हैं वो तो अपने ऑफिस के टेबल पर ही कानों में ये फोन्स लगाए हुए प्रोग्राम सुन रहे हैं। कुछ कुछ दुकानों में भी हमारे इस प्रोग्राम को सुना जाता है, तो वहां के बड़े से स्पीकर में रेडियो तराना के ब्लैक एंड व्हाइट तराने प्रोग्राम का मजा आप ले रहे हैं। फिर चाहे न्यूजीलैंड में है, न्यूजीलैंड से बाहर है, किसी एक गैरेज में प्रोग्राम को सुन रहे हैं, बाबा शॉप में सुन रहे हैं, ग्रोसरी स्टोर में सुन रहे हैं, कैफेटेरिया में सुन रहे हैं, स्वीट शॉप में सुन रहे हैं, सुपरमार्केट में सुन रहे हैं, घर पर सुन रहे हैं, गाड़ी में सुन रहे हैं, रेडियो तराना के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करते हैं। ये जो साउंड आ रहा है बहुत ही क्रिस्टल क्लियर आ रहा है, क्योंकि आप डिजिटल साउंड में सुन रहे हैं। अभी हमारे AM चैनल को तकरीबन 2 हफ्ते और लगेंगे सुचारू रूप से काम करने के लिए। तब तक आप इस पर ही हमारे प्रोग्राम का मजा ले, नहीं तो कुछ लोग तो शायद वापस AM चैनल पर सुनने की आदत चली जाएगी। आप यहीं पर हमारे साथ जुड़े रहेंगे। जो भी हो, हम पुराने गानों का संगम करके आपके लिए 1 घंटे का प्रोग्राम हर सोमवार से शुक्रवार तक लेकर के आते रहेंगे। कभी कभार अगर आपको मौका मिले तो आप हमारे पास टेक्स्ट या ईमेल भी कर सकते हैं, मौका मिले तो। अगर ना कर सके कोई बात नहीं, फिर भी हम आपको यहाँ से याद करते रहेंगे और आपके लिए खूबसूरत नगमे रेडियो तराना के जरिए आपके कानों तक पहुंचाते रहेंगे। कल जैसा हमने बताया था, मुबारक बेगम साहिबा पर एक और दिलचस्प प्रोग्राम आपके लिए लेकर के हम हाजिर खदमत हो गए हैं। आज मैं सबसे पहला गाना जो आपको सुनाने जा रही हूं, इस गाने को हमने लिया है फिल्म अबे हयात से। 1955 में प्रेमनाथ और साथ में शशिकला को लेकर के ये फिल्म बनाई गई थी। इस फिल्म में बहुत सारे गाने थे जिस पर हेमंत कुमार, गीता दत्त जी, आशा ताई ने आवाज दी थी। उनमें से एक ये गाना और एक और इसके बाद में दूसरा गाना भी अबे हयात का होगा। इस फिल्म में मुबारक बेगम साहिबा जी ने भी माँ का रोल किया था।

0: जब बात होती है पर्दों की तो नाम आता है डी कैरोल कर्टन्स का, जो कर्टन्स के साथ साथ स्पेशलाइज करते हैं इन सन फिल्टर रोलर ब्लाइंड्स, जो दिन में दे सही लाइट और यूवी रे से प्रोटेक्शन और नाइट में दे कंप्लीट प्राइवेसी। इनके सभी ड्रेप्स एंड कर्टन्स आते हैं विद फ्री लाइनिंग, प्लस तराना का नाम मेंशन करने पर 20% का डिस्काउंट। कम एंड मीट देयर फ्रेंडली टीम एट 19 मॉर्निंग साइड ड्राइव, माउंट एल्बर्ट। फोन 09-815-3811। डी कैरोल कर्टन्स।
1: मम्मी मम्मी, एयरफोन कान माथी निकाल जरा।
2: અરે
1: કેટલા વર્ષથી નવું ઘર કરતી હતી, આપણે લઈ લીધું ને ઇન્ડેલેબલ વાળાનું નવું ઘર।
2: તું કેટલો સારો છો દીકરા।
1: મમ્મી નવું ઘર છે, સાચવ જરા, બધું અહીંયા વેરવિખેર પડ્યું છે।
2: તમે ઝેન્ઝી વાળા ઘડીમાં કામ કરાવો છો, હે ભગવાન।
1: મમ્મી
2: ઘર બનાવવા વાળાનો ખૂબ ખૂબ આભાર।
1: ધન્યવાદ ઇન્ડેલેબલ હોમ્સ।
3: ન્યુઝીલેન્ડ કે મોસ્ટ ટ્રસ્ટેડ ઓર એક્સપિરિયન્સ સબ ડિવિઝન એન્ડ બિલ્ડિંગ સ્પેશિયલિસ્ટ ઇન્ડેલેબલ હોમ્સ। ફોન 0800-233-111।
4: કાનૂન તોડ દે, अब तो तू बेटा क्रिमिनल हो गया।
5: तुम पे बहुत तरस आता है यार, पर पुलिस का मामला है तो।
4: डरो मत, गलती कभी कभी हो ही जाती है और कानूनी गलती हो जाने पर एक दरवाजा हमेशा खुला रहता है। गुल लॉ लीगल सर्विसेज फाउंडर मिस्टर गुल के पास लॉ के साथ साथ पुलिस डिपार्टमेंट का भी एक्सपीरियंस है। वो आपको सलाह ही नहीं देंगे बल्कि आपकी सिचुएशन को समझेंगे भी। कॉल टुडे ऑन 0223530872 और विजिट gullaw.co.nz।
6: श्री वेंकटेश्वर देवस्थानम चैरिटेबल ट्रस्ट आप सबको आमंत्रित करते हैं इनके भोजन मेला फूड कार्निवल में टू सपोर्ट लॉर्ड वेंकटेश्वर टेंपल प्रोजेक्ट।
0: ये होगा संडे 17 मई को 11 AM टू 4 PM,
6: 378 RRIMU रोड, रामा रामा साउथ ऑकलैंड में। एंट्री फ्री है, फ्री सॉफ्ट ड्रिंक्स रहेंगे, फ्री फूड बाय शिवानी रेस्टोरेंट एंड इडली सांबर, ज्वेलरी एंड क्लोथिंग स्टोर्स, हेना आर्टिस्ट, फेस पेंटिंग, बाउंसी कासल्स और बहुत कुछ।
0: और इन्फॉर्मेशन के लिए कॉन्टेक्ट करें शिवानी जी को 0218700012 पर।
6: वन टेम्पल वन कम्युनिटी, इटर्नल ब्लेसिंग्स।
7: 60s, 70s, 80s और कभी कभी 50s से भी ब्लैक एंड व्हाइट तराने अब करेंगे आपके दिन सुहाने।
3: मुझे याद है रेडियो फिजी में एक शख्सियत काम किया करते थे, ट्रांसपोर्ट विभाग संभालते थे, जितेंद्र सिंह जी। और वो पुराने फिल्मों के, पुराने गानों के इतने बड़े आशिक थे कि कभी कभार उनको सुन करके ऐसा लगता था कि उनको तो रेडियो पर होना चाहिए था, इस तरह की नॉलेज थी। मेरी भी खुशकिस्मती थी कि उनके नीचे हमने काम किया, हमारे लिए भी कई बार उन्होंने ट्रांसपोर्ट अरेंज किए थे। मैं इसलिए उनके नाम का जिक्र कर रही हूँ क्योंकि मुझे याद है कि वो अक्सर जागृति फिल्म का जिक्र किया करते थे। वो कहते थे आहा, क्या फिल्म थी जागृति, ऐसी फिल्म कभी बनी नहीं, जिस तरह का कॉन्सेप्ट इसमें रखा गया। वो फिल्म और फिल्म के गाने के अक्सर वो तारीफ किया करते थे। सो 1955 की फिल्म जागृति का गाना हम अगला गाना आपको सुनाने वाले हैं। सत्यन बोस ने ये फिल्म बनाई थी, अभी भट्टाचार्य, राजकुमार गुप्ता, रतन कुमार और विपिन गुप्ता को लेकर के। हेमंत कुमार जी ने इस फिल्म में म्यूजिक दिया था। और कल मैंने इस फिल्म का गाना आपको सुनाया था, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं। उस फिल्म का एक और नगमा हम अभी आपको सुनाने जा रहे हैं और इसके बाद में फिल्म काला पानी का गाना आने वाला है। ये फिल्म भी 1958 में बनाई गई थी, जिसमें मुबारक बेगम साहिबा ने देव साहब की मां का रोल किया था। नवकेतन फिल्म के झंडे तले ये फिल्म बनाई गई थी और राज खोसला ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। देव साहब की हीरोइन इस फिल्म में बनी थी मधुबाला जी, आशा उनका नाम था, उन्होंने जर्नलिस्ट का रोल किया था। इस फिल्म के लिए देव साहब ने फिल्मफेयर अवार्ड फॉर द बेस्ट

0: Ashik Homes Limited. For the first time, rent to buy. Fantastic opportunity to own a brand new home. If you have Kiwi Saver and some debt, Ashik Homes can still help. Got some credit issue? No issue. Finance can be arranged from just 5% deposit. Stop renting, start owning. Buy direct from the developer. Over $50 million of brand new houses available. Call 021-277-0859 or visit ashikhomes.co.nz.
1: There's a reason the Big Ben six-pack is a go-to in Kiwi Homes. Everyone gets hungry, just not at the same time. Someone's just walked in, starving. Someone's heading out, also starving. Someone said they weren't hungry, now they are. Someone's just eaten, and somehow hungry again. Waves of hunger just keep coming, but so do the pies. That's the genius of a Big Ben six-pack. So if hunger's a constant force at your place, grab a pack. Big Ben, feed your mission.
2: कोई बेकार सामान है फेंकने के लिए, ई-वेस्ट हो या कोई अजीब चीज, तो उसे सीधा बिन में ना डालें। पता करें कि वो कहाँ जाना चाहिए। oaklandcouncil.govt.nz/whereitgoes पे। तमाकी तुरुकी, ओल्टुगेदर ओकलैंड।
0: Hey everyone, मैं हूँ नेहा और इस Saturday आपको मिलूंगी at NZ Beds Manukau Super Center Store, जहाँ पर आपको मिलेगा up to 70% discount on selected beds, mattresses from $299 and a free pillow with every purchase made in the weekend. So see you this Saturday 10 AM to midday at NZ Beds Manukau Super Center.
3: कभी तलत महमूद, कभी आशा जी, कभी रफी साहब का स्वर गूंजेगा, कभी लता दीदी के, कभी किशोर साहब आ जाएंगे, लेकिन सभी ब्लैक एंड व्हाइट जमाने के कलाकार और कभी कभी कलर्स भी ब्लैक एंड व्हाइट तराने।
4: अपने जमाने की बहुत ही मशहूर पर्दे की माँ मुबारक बेगम साहिबा, जिनकी कंपटीशन लीला चिटनिस, ललिता पा और दुर्गा खोटे जैसी थी, उस जमाने में भी अपना नाम चिन्ह बनाना ये कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए टैलेंट की जरूरत होती है और वो टैलेंट कूट कूट करके माँ का दिल का प्यार इनके अंदर भरा हुआ था। इसलिए कई लोग जब भी इनसे मिलते थे इंडस्ट्री में, झुक कर इनका पैर छूते थे, क्योंकि वो उनको सिर्फ पर्दे पर ही नहीं, ऐसे भी मुबारक बेगम साहिबा को माँ का दर्जा देते थे। उनकी एक और फिल्म आई थी 1960 में, गुरुदत्त ने फिल्म बनाई थी चौधवी का चांद। इस फिल्म में गुरुदत्त जी मेन रोल में थे, वो असलम का रोल किया था और वहीदा रहमान जमीला बनी थी। रहमान इस फिल्म में थे नवाब प्यारे मियां का रोल उन्होंने किया था। नवाब प्यारे मियां की अम्मी जान का रोल मुमताज बेगम साहिबा ने किया था। इस फिल्म में टुनटुन भी थी, मीनू मुमताज, जॉनी वोका, फरीदा जलाल ने भी एक्टिंग की थी। उसी फिल्म का ये गाना मैं आपको सुनाऊंगी, नेक्स्ट गाना हमारा यही रहेगा। 1960 की ये फिल्म थी जिसको गुरुदत्त जी ने प्रोड्यूस किया था और ये एक लव ट्राइंगल होती है जिसमें असलम, जमीला और नवाब प्यारे की मोहब्बत की कहानी होती है। नवाब प्यारे और असलम साहब दोनों एक ही लड़की से प्यार कर बैठते हैं। ये फिल्म बहुत ही बड़ी हिट थी बॉक्स ऑफिस पर, वन ऑफ द हाईएस्ट क्रॉसिंग हिंदी मूवीज उस जमाने की ये हो गई थी। 2003 में आउटलुक मैगजीन ने इसको एक पोल किया था, 25 लीडिंग इंडियन डायरेक्टर्स ऑफ बेस्ट बॉलीवुड मूवीज ऑफ ऑल टाइम, तो उसमें इनका नाम आया था 28th पोजीशन पर, 7 मुस्लिम सोशल्स यू मस्ट वॉच टाइटल में ये आया था, इस फिल्म का नाम आया था। आपने नहीं देखी है तो आपको ज़रूर ये फिल्म देखनी चाहिए। अगला गाना मुबारक बेगम साहिबा की फिल्म का ये होगा और उसके बाद का जो गाना, क्योंकि मैं बैक टू बैक दो गाने आपको सुना रही हूँ, काला बाजार का तराना होगा। एक बार फिर से रघुवीर का रोल देव साहब ने इस फिल्म में किया था, वहीदा रहमान अलका सिन्हा बनी थी उनके ऑपोजिट और इस फिल्म में मुबारक बेगम मिसेस सिन्हा बनी थी, अलका सिन्हा की माँ का रोल उन्होंने किया था। इसमें विजय आनंद, चेतन आनंद, नंदा, हेलन जैसे बड़ी स्टार कास्ट लेकर के ये फिल्म बनाई गई थी। इस फिल्म के सभी गानों को लिखने वाले थे शैलेंद्र और एस डी बर्मन ने म्यूजिक से इस फिल्म के गानों को सजाया था। तो चौधवी का चांद के बाद में काला बाजार का अगला तराना आपके आवाज में सुनाएंगे। पहला गाना रफी साहब की आवाज में, दूसरा आशा ताई और मन्ना डे जी की आवाजों में।

0: दुनिया गोल है, ऊपर से खोल है, अंदर जो देखो प्यारे बिल्कुल पोलम पोल है। ये दुनिया गोल है ऊपर से।
1: ये कहां से मर गए, ट्यून बदलो।
2: मेरे मौला बुला लो मदीने, मुझे लगे मौत के आने पसीने, मुझे मेरे मौला बुला लो मदीने। इसे
3: नहीं बाबा, मुझे।
4: अच्छा बेटा अच्छा, लंबी उम्र हो।
0: ऊपर से खोल है, अंदर जो देखो प्यारे बिल्कुल पोलम पोल है। ये दुनिया गोल है। वाह।

0: जा।
1: अपने डेली कुकिंग को बनाए और भी हेल्दी और भी टेस्टी कशिश ब्रांड के रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स के साथ। और अब आप इंजॉय कर सकते हैं कशिश का फ्रेश डोसा बैटर फॉर सॉफ्ट फ्रेश इडलीज एंड क्रिस्पी डोसास। अपनाए कशिश का डोसा एंड इडली बैटर। और सीमित समय के लिए इनकी एक्साइटिंग ऑफर में डोसा बैटर रेंज में से कोई भी डोसा बैटर लें और साथ में पाए 250 ग्राम का कशिश जिंजर गार्लिक पेस्ट फ्री। नो एडेड केमिकल्स, नो विनेगर, फ्रेशली ग्राउंड इन न्यूजीलैंड जिंजर गार्लिक पेस्ट बाय कशिश। और कशिश का डोसा बैटर अवेलेबल एट ऑल मेजर इंडियन आउटलेट्स।
2: इट्स इजी फॉर लाइफ एडमिन टू स्लिप डाउन द लिस्ट। So, we're politely interrupting this show to remind you that winter immunizations, including flu, are available now. Let's get them sorted at bookmyvaccine.nz or ask your healthcare provider.
3: How many deals can you get in a day? Hurry into Briscoe's today and find out with one day store-wide savings for, you guessed it, one day only. So hurry in and bag the savings. Stores open till 9 today only at Briscoe's. See online for T's and C's.
4: Yaar, mujhe Fiji jana tha.
5: Kab jana hai?
4: दिसंबर की छुट्टियां हो जाए तब जाएंगे।
5: रेंटल सॉर्ट आउट कर लिया?
4: नहीं यार, नहीं मिला कुछ।
5: आई थिंक यू शुड कॉन्टेक्ट कोस्टल रेंटल कार्स। इनके पास फैमिली कार्स, एसयूवीज और सभी लग्जूरियस गाड़ियां हैं और गाड़ियां अच्छी कंडीशंस में।
6: कोस्टल रेंटल कार्स, विजिट coastalrentalcars.com.fj और फॉर बुकिंग्स कॉल ऑन 0067965202228।
7: एक्सप्लोर फिजी द कोस्टल वे।
8: लाइट कैमरा एक्शन। कभी राज कपूर ने खुद को ही एक्शन कहा या कभी किसी से एक्शन करवाया। मधुबाला जी, दिलीप साहब, सुरैया जी, सुनील दत्त जी, नरगिस जी, देव साहब, नादिरा साहिबा, मनोज कुमार, आशा पारिक जी, जितेंद्र नंदा जी और धर्मेंद्र, नूतन, संजीव कुमार और निरुपा रॉय और प्रेम चोपड़ा, सैरा बानो जी, अमिताभ बच्चन और वहीदा रहमान, सब सब सब के सब पुराने लेकिन बहुत ही अच्छे तराने, ब्लैक एंड व्हाइट तराने।
9: ऐसे बहुत कम मौके मिले हैं जबकि हमने आपको फिल्म बरसात की रात के नगमे सुनाए हैं। राज कपूर जी को जब ट्रिब्यूट दिया था तो उनके लीस्ट प्लेड सॉन्ग्स हमने आपको सुनाए थे। मुझे नहीं लगता कि ये जो गाना अभी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ हमने कभी भी ब्लैक एंड व्हाइट तराने प्रोग्राम में आपको सुनाया है। मैं इस गाने की हिस्ट्री देख करके बता रही हूँ, बाकी के प्रोग्राम्स में बजते बट इस प्रोग्राम में नहीं। सो बरसात की रात का गाना हम आपको सुनाने जा रहे हैं। 1960 की वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज थी। इस फिल्म ने 1.75 करोड़ कलेक्ट किया था नेट पहले हफ्ते में और टोटल ग्रॉस इसका 3.5 करोड़ था। वन ऑफ द बिगेस्ट मूवीज ऑफ इंडियन सिनेमा जिसमें म्यूजिक के साथ साथ में कव्वाली ने भी खूब धूम मचाई थी। रोशन साहब ने सभी गानों को कंपोज किया था। साहिल लुधियानवी जी ने इस फिल्म के नगमों को लिखा था। आज उस फिल्म का ये गाना हम आपको सुनाने जा रहे हैं प्रोग्राम में जबकि हम मुमताज़ बेगम साहिबा को ट्रिब्यूट दे रहे हैं।

0: रेडियो तराना पर आप सुन रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट तराने।
1: मुझे नहीं लगता हमारे लिसनर्स को ये फर्क पड़ता है कि किन हमारे आर्टिस्ट कौन होते हैं, बस आपको तो अच्छे नगमे चाहिए और कंटेंट अच्छा होना चाहिए कि हम आर्टिस्ट के बारे में, जो भी आर्टिस्ट उस डे का स्टार हो, उनके बारे में हम विस्तृत तौर से बताएं, उनके फिल्मों के बारे में बताएं। बट मेन मतलब तो आपका सुनहरे गानों से ही होता है, राइट? अब कल के जो सुनहरे गाने मगन जी ने चुने हैं वो इस तरह से, और हमारे पास में एक कॉल आया। कभी कभी मेरे होता होगा मेरे से कि मैं नामों के प्रोनाउंसिएशंस में शायद कभी कभी उल्टा सीधा हो जाता होगा। NALINI, कुछ लोग इसको नालिनी कहते हैं, लेकिन अगर वो मराठी आर्टिस्ट हो तो नलिनी होना चाहिए, नालिनी नहीं, नलिनी होना चाहिए। और ललिता पावर कुछ लोग कहते हैं, बट एक्चुअली में ललिता पवार होना चाहिए। सो एज आई एम डूइंग दिस प्रोग्राम, मैं भी बहुत सारी चीज़ों को लर्न कर रही हूँ अपने लिसनर्स के जरिए। एंड थैंक यू दीपक जी।

नहीं राखे भी नहीं है हम, लेकिन कल गाने को ज़रूर लेकर के आएंगे क्योंकि ये हमारे स्टार से ताल्लुक़ रखता है ये तराना, और अगर वक्त रहा तो ये गाना भी शामिल करेंगे।

0: Rana. Dime check.
1: Proudly brought to you by Indelible Homes. Phone 0800-233-111. Website indeliblehomes.co.nz.
2: सुबह के 10 बजे हैं.
3: This is Tarana News.
4: समाचार सुनिए संजेश नारायण से. लेबर पार्टी के डेप्यूटी लीडर कमल सेपोलोनी ने पे इक्विटी वाला मामला यूनाइटेड नेशंस के समक्ष ले जाने वाले फैसले का समर्थन की है. न्यूजीलैंड काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन सहित कई संगठनों ने संयुक्त राष्ट्र में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है और उससे ये जांच करने का अनुरोध किया है कि क्या न्यूजीलैंड सरकार द्वारा वेतन समानता या पे इक्विटी कानूनों में किए गए बदलाव महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के समान है. पिछले साल कॉलिशन सरकार ने 180,000 वर्कर्स, जिनमें ज्यादा महिलाएं हैं, जो कि केयर और डिसेबिलिटी सपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ और कम्युनिटी सहित सोशल सर्विसेज में काम करती हैं, उनके पे इक्विटी क्लेम्स को रद्द करने की अनाउंसमेंट की थी. रेडी तराना के साथ इंटरव्यू में हमने लेबर पार्टी के डेप्यूटी लीडर कमल सेपोलोनी से पूछा था कि क्यों इस मुद्दे को यूनाइटेड नेशंस के समक्ष ले जाना जरूरी हुआ.
5: Well, I mean, when you think about the way in which pay equity was secretly just ripped out from under New Zealand women, you can see how and why there would be a claim that could be taken up with the UN. There was no consultation. Even our Ministry for Women was not included in any of the conversations around the scrapping of pay equity. It has huge implications in terms of our ability to close the gender pay gap moving forward, and it's about fairness and discrimination. So you can see why there was a case to take forward, and we all will be watching it with great interest.
4: प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन का कहना है कि सिटीजनशिप के लिए कुछ प्रश्नों का जवाब देना वे नहीं सोचते कि ये गलत है. गौरतलब है कि सरकार अगले साल के अंत से सिटीजनशिप हासिल करने वाले एप्लीकेंट्स के लिए एक टेस्ट लाने जा रही है, जिसमें 75% अंक लोगों को लाने होंगे, तभी वे सिटीजनशिप के लिए क्वालिफाई होंगे. प्रधानमंत्री का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया और यूके पहले से ऐसा कर रहे हैं.
6: And it's probably not a bad thing that actually New Zealand, you know, new New Zealanders are positively ascribing, you know, some pretty basic stuff about women's rights.
4: देश में दिसंबर चौथाई के मुकाबले भले ही मार्च चौथाई में अनएम्प्लॉयमेंट रेट गिरकर 5.3% हो गई है, लेकिन कुछ रीजन्स में अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी भी बहुत ज्यादा है. ऑकलैंड में पिछले 12 सालों के मुकाबले अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज्यादा 6.6% रिकॉर्ड हुआ है. वेलिंगटन में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.3%, जबकि बे ऑफ प्लेंटी में 7.1% है. विशेषज्ञों का कहना है कि ऑकलैंड में इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज्यादा है क्योंकि कई बड़े इंडस्ट्रीज अच्छा नहीं कर रहे हैं, जिनमें रिटेल और कंस्ट्रक्शन शामिल है. देश में फ्यूल स्टॉक कम हुआ है. मिनिस्टर ऑफ बिजनेस इनोवेशन एम्प्लॉयमेंट की ओर से जो डाटा जारी किया गया है, पिछले अपडेट के मुकाबले यानी कि 52 दिनों के मुकाबले अब देश में 49 दिनों के लिए पर्याप्त पेट्रोल है, जबकि डीजल की ओर देखा जाए तो पहले के 52 के मुकाबले 47 दिनों के लिए पर्याप्त डीजल इस वक्त देश में है. वहीं जेट फ्यूल, जिसे पिछले अपडेट में 58 दिनों के लिए पर्याप्त बताया गया था, ये गिर करके 55 डेज के लिए अब हो गया है.
3: स्पोर्ट्स न्यूज.
4: पोर्चुगीज क्लब बेनफिका टीम के विंगर जियालुका प्रेस्टियानी पर वर्ल्ड वाइड बैन लागू किया गया है. 20 वर्षीय प्रेस्टियानी को पिछले महीने यूएफए ने 6 मैचों का प्रतिबंध लगाया था, जब उन्होंने फरवरी में चैंपियंस लीग मैच के दौरान रियल मैड्रिड खिलाड़ी वेनेसिस जूनियर पर सामलैंगिक विरोधी टिप्पणी की थी. उन्होंने इस आरोप को स्वीकार कर लिया था. एक मैच का अस्थायी प्रतिबंध पहले ही लग चुका है और अब उन पर 2 और मैचों का प्रतिबंध लगेगा. बाकी 3 मैचों का प्रतिबंध 2 साल के लिए निलंबित रहेगा और अगर उन्हें अर्जेंटीना की ओर से वर्ल्ड कप में खेलने के लिए टीम में चुना जाता है तो वे वर्ल्ड कप के प्रथम 2 मैचेस नहीं खेल पाएंगे.
7: घर को स्वस्थ रखने के लिए अपने बेडशीट्स और पिलो केसेस को हर 7 से 10 दिन में जरूर धोएं, ताकि डस्ट, माइट्स और एलर्जीज दूर रहें. आप चिंता मत करो, ये काम स्टोडार्ड रोड लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनर्स मॉन्ट्रोस स्किल को सौंप दो. यहाँ आपको 24/7 सेल्फ सर्विस लॉन्ड्रोमैट या फिर आप अपने कपड़े यहाँ छोड़ दीजिए और यहाँ की टीम वॉश, ड्राई और फोल्ड करके आपको कपड़े दे देंगे. स्टोडार्ड रोड लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनर्स 220 स्टोडार्ड रोड मॉन्ट्रोस स्किल. आसान, भरोसे 7 और 24/7।
8: ताजी एजे के घर दिया और हमें
9: तुम्हारे पास है घर,
8: वो तो हम खरीदा है, तुम नहीं देगा हमें कुछ।
9: ये तुम लोग को जो मंगता हमसे है, हमें दे देगा कि नहीं यार?
8: रान दो, नहीं मंगता।
9: तुम चाहे मुंह फुलाओ चाहे चिल्लाओ, एक सेंट नहीं देगा।
8: हाँ सब लेके जाना।
9: हाँ हम लेके जाएगा, लड़कन तो हमने कंगाल कर दी यार, चल दो यहाँ से।
7: ताजी के नहीं तंग करो, अपन घर अपने बनवा लो। इंडेलिबल होम्स के रिंग करो 0800-233-111 पे।
10: सैटरडे 9th मई को रेडियो तराना की टीम आपको शॉपिंग करवाने वाली है इन एनजे बेड्स मानिकाओ सुपर सेंटर स्टोर, और एक्सक्लूसिवली उस वीकेंड इन स्टोर डील्स के अलावा यू विल रिसीव अ फ्री पिलो विद एवरी परचेज मेड ऑफ एनी बेड। ट्रेड इन ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं और आपको फ्री लोकल डिलीवरी भी मिल सकती है। टीज एंड सीज अप्लाई। एनजे बेड्स विद 40 इयर्स इन बिजनेस एंड थाउजेंड्स ऑफ हैप्पी कस्टमर्स, ये आपको देंगे गारंटीड बेस्ट प्राइस। और 9th मई को मिलते हैं इनके मानिकाओ सुपर सेंटर वाले at the corner of Lambie Drive and Cavendish Drive.
11: Want to go halvesies with Mercury? Just sign up for electricity and add broadband, mobile or both, and we'll give you 50% off your monthly broadband and mobile plan for 12 months. Terms and eligibility apply. Broadband availability may vary. Mercury, bring the

कबीर जी ने कहा है कि सच कहूँ तो जग रूठे, झूठ बोलूँ तो राम। कबीर बेचारा क्या करे, दोनों कठिन है काम।

0: प्यारा गाना था ना, मैंने खुद बहुत सालों बाद ये तराना सुना लता दीदी की आवाज़ में, फिल्म अग्रीमेंट का ये तराना था। अगर आपको लगता है कि कठिन सवालों का जवाब और कठिन मुद्दों पर जवाब सिर्फ न्यूजीलैंड के पॉलिटिशियंस को अभी फ़िलहाल देना पड़ रहा है, न्यूजीलैंड की जनता को, तो ऑस्ट्रेलिया के पॉलिटिशियंस को तो और भी कठिन सवालों का जवाब देना पड़ रहा है। हो ये रहा है कि पिछले 10 सालों से ज़्यादा से आइसिस में ऐसे 10 लोग हैं जिनके परिवार वाले सीरिया में रहते थे, लेकिन उनके पास में ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट था, तो वो 10 सालों से सीरिया में रह रहे थे। वो कई दिनों से कैंप में हैं, जिस कैंप के ज़रिए वो वापस ऑस्ट्रेलिया आना चाहते थे, लेकिन वहाँ के मिनिस्टर ने सीधे तौर से, कम से कम मिनिस्टर बर्क ने एक पर तो टेम्प्ररी स्टे लगा दिया था कि वो पर्सन तो ऑस्ट्रेलिया आ ही नहीं सकता है, लेकिन कई सालों की कोशिशों के बाद अब ये लोग वापस आज ही ऑस्ट्रेलिया लौट करके आ रहे हैं, क्योंकि इनके पास में ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट है और क्योंकि इनके पास में रिटर्न टिकट है। अगर किसी के पास में ये होता है तो ऑस्ट्रेलिया का कानून ये कहता है कि उन लोगों को देश में आने से कोई रोक नहीं सकता। इन लोगों पर रोक इसलिए लगाई जा रही है क्योंकि कुछ कानूनों का उल्लंघन हुआ है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और दुनिया के बहुत सारे देशों में कानून है कि सीरिया के सर्टन इलाके में कुछ लोग जाकर के रहते हैं तो उनके ऊपर सवाल खड़े होते हैं। इन लोगों के ऊपर ये भी आरोप लग सकता है कि इन्होंने कुछ ह्यूमन के अगेंस्ट काम किया है, जैसे कि स्लेवरी में इन लोगों ने हाथ बटाया, ह्यूमन स्लेवरी में हाथ बटाया है। तो ये लोग आज आ रहे हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टेक्निकली इनको रोक नहीं सकता है, हालांकि ऑपोजिशन की तरफ से और ऑस्ट्रेलिया की जनता कह रही है कि हाउ डू यू नो कि ये लोग रेडिकलाइज नहीं है, क्योंकि इन्होंने डायरेक्टली टेररिस्ट के साथ में काम किया है। ये महिला और बच्चे आ रहे हैं, इनके पति ऑलरेडी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में जुड़े हुए हैं, सो हाउ डू वी नो कि ये नहीं होंगे। पर ऑस्ट्रेलिया एक मुश्किल में है, वो कुछ कर भी नहीं सकता इस मामले में। सो ये लोग आज शाम को ऑस्ट्रेलिया समय अनुसार सिडनी में लैंड हो रहे हैं और ऐसा समझा जाता है वहां से ये मेलबर्न की तरफ रवाना होंगे। वो जैसे ही ऑस्ट्रेलिया में उतरेंगे उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा इन्हीं ग्राउंड्स पर, और फिर उनसे पूछताछ की जाएगी, उनके बच्चों की देखरेख की जाएगी। ऑब्वियसली उन्हें तो गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। नाउ द प्रोसेस विल बी कि इन लोगों को सिविलियंस पर रखना पड़ेगा, और एक व्यक्ति को, 9 लोग आ रहे हैं, एक व्यक्ति को सिविलियंस करने के लिए $2 मिलियन खर्चा होता है सालाना तौर पर। तो न्यूजीलैंड इतना या ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा बर्डन लेने के लिए तैयार नहीं है, जैसे इनकी व्हाई आर वी गेटिंग दिस पीपल, बट कानून को तोड़ा नहीं जा सकता। तो लेट्स सी कि ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मामला चल रहा है अभी ऑस्ट्रेलिया में।
1: यू आर लिसनिंग टू पापा।
2: किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि प्रेम अंधा क्यों होता है, क्योंकि हमारी मां ने हमें बिना देखे ही हमसे प्यार करना शुरू कर दिया था। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं दो भाइयों की, जिनके माता पिता चल बसे थे, लेकिन ये दुनिया छोड़ने से पहले माता पिता ने दोनों भाइयों को बराबर बराबर हिस्से का खेत दे दिया था, बराबर बराबर जमीन दोनों में बांट दी थी। दोनों भाइयों में जो बचपन में प्यार था, जिस खेल के साथ में वो आगे बढ़े, जिस उमंग के साथ वो जिंदगी में आगे बढ़े, वही प्यार वही मोहब्बत बड़े होने के बाद भी बनी हुई थी। कभी कोई विवाद नहीं हुआ, कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, प्रेम मोहब्बत से रह रहे थे। दोनों भाई अपना खेती करते थे, मस्त रहते थे। बड़े भाई की शादी हो गई, जो उसकी वाइफ थी, जो भाभी थी। छोटा वाला भाई उन्हें मां समझता था, कहता था मां के आशीर्वाद के बिना कोई काम नहीं होगा, उनकी सलाह के बिना कुछ नहीं करूंगा। बड़े भाई को खेती में कुछ समझ नहीं आता, छोटे से पूछ लेता, छोटे को समझ में नहीं आता, बड़े से पूछ लेता। जिंदगी आराम से कट रही थी, बहुत मेहनत की खेती में, ईश्वर की कृपा हुई, बरसात भी बहुत अच्छी हुई, बहुत अच्छी फसल हुई, अनाज तैयार हो गया। दिन में जब लंच टाइम होता था तो बड़ा वाला जाता था, छोटा वाला रखवाली करता था, फिर छोटा वाला जाता था, बड़ा वाला रखवाली करता था। तो जब ये अनाज तैयार हो रहा था, बड़े वाले भाई ने कहा मैं भोजन करके आता हूं, छोटे से कहा तुम ध्यान रखना। जैसे ही बड़े भैया गए, छोटे वाले ने सोचा कि बड़े भैया की तो गृहस्थी है, परिवार और बड़ा होगा, बच्चे होंगे, मैं इतने सारे अनाज का क्या करूंगा, इतना सारा अनाज हो गया। उसने अपने हिस्से में से 10 बोरी गेहूं निकाला और फटाफट फटाफट बड़े भैया के हिस्से में डाल दिया, उस खेत में जाके डाल दिया जल्दी जल्दी, उसे लगा कहीं भैया ना आ जाए। बड़े भैया वापस आए, तब तक ये अपना काम कर चुका था। बड़े भाई ने आते कहा कि जाओ जाकर के भोजन कर लो, खाना अब तैयार है। छोटा गया भोजन करने के लिए, बड़े भाई के माइंड में भी एक ख्याल आया। बड़े भाई ने सोचा कि छोटे वाले की अभी शादी होनी है, गृहस्थी जमनी है, परिवार बड़ा होगा, मैं इतने सारे अनाज का क्या करूंगा। उसने अपने हिस्से में से 10 बोरी गेहूं निकाला, फटाफट छोटे वाले भाई के खेत में जाकर के डाल दिया। छोटा वाला भाई जब तक वापस आया, इधर इसने अपना काम कर दिया। दोनों भाइयों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा। कमाल की बात यह रही कि अनाज जितना था उतना का उतना ही रहा। 10 बोरी छोटे ने बड़े वाले के खेत में डाली, बड़े वाले ने छोटे वाले के खेत में डाली, लेकिन प्यार दोनों भाइयों के मन में एक दूसरे के लिए बढ़ चुका था। बहुत छोटी सी प्यारी सी मोहब्बत वाली कहानी है, लेकिन सिखाती है कि परिवार में प्यार रहना चाहिए। जहां प्यार है वहीं परिवार है। एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूं, जो अक्सर आपसे कहता हूं, कि बिना परिवार के साथ के जीवन में कुछ हो नहीं सकता। जैसा मैंने शुरू में कहा कि प्यार अंधा क्यों होता है, क्योंकि जब हम पेट में थे, हम मां की कोख में थे, मां ने हमारा चेहरा नहीं देखा था, तब से मां हमसे मोहब्बत करती है। वो मोहब्बत बरकरार रहेगी तो दुनिया खूबसूरत रहेगी। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपने परिवार के प्यार के साथ और अपनी सच्ची मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।
0: डिजिसेल की ओर से भी आपको मदर्स डे के लिए बेस्ट विशेस दिए जा रहे हैं, और आपके लिए बस 2-3 दिन बाकी है कि मदर्स डे के लिए आप टॉप अप कराएं $20 का, या $300 मनी ट्रांसफर करें माई कैश वॉलेट में पैसिफिक में कहीं पर भी, और 15 में से $500 का एक कैश इनाम आपका हो सकता है। डिजिसेल की पूरी टीम की ओर से आपको मदर्स डे की शुभकामनाएं।
1: You're listening to Pavan.
0: अगले ब्रेक के बाद रेडियो तराना के न्यूज एडिटर संजय नारायण ने लेबा एमपी लेबा के डेप्यूटी लीडर कामिल सपलोनी से बातें की, और उन्होंने उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है कि सरकार क्या इनफ जानकारियां हमें दे रही है एज फार एज फ्यूल अलर्ट, क्योंकि अगर फ्यूल की खपत ज्यादा या फ्यूल का जो लेवल है वो खत्म हो रहा है, तो क्या इनफ इन्फॉर्मेशन है कि अगर फ्यूल अलर्ट लेवल दूसरे लेवल पर जाना हो तो क्या किया जाएगा, ये सवाल पूछा। और दूसरा सिटीजनशिप को लेकर के कमल सपलोनी ने क्या कहा, जो अभी फिलहाल सिटीजनशिप के लिए अब कठिन प्रश्नों से होकर के लोगों को गुजरना पड़ेगा टू बिकम सिटीजन ऑफ द कंट्री। ये सब सवाल और अन्य सवालों के साथ में संजेश हाजिर हो जाएंगे राइट आफ्टर दिस एडवर्ट ब्रेक।
3: आर यू हैविंग ट्रबल विद पुलिस और फेसिंग क्रिमिनल चार्जेस एंड नीड समवन हु कुड बेस्ट रिप्रेजेंट यू इन द कोर्ट ऑफ लॉ? गुल लॉ लीगल सर्विसेज विद ओवर 20 इयर्स ऑफ एक्सपर्ट क्रिमिनल लिटिगेशन एक्सपीरियंस, दे नो बोथ प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस साइड ऑफ द लॉ। देयर फाउंडर मिस्टर गुल, एन एक्स सीनियर न्यूजीलैंड पुलिस प्रोसिक्यूटर, स्पीक्स योर लैंग्वेज। यूज गुल लॉ लीगल सर्विस where expertise meets understanding. Visit gullaw.co.nz today, or you can call on 022-353-0872 today.
4: इस मदर्स डे को बनाए और भी स्पेशल डिजिसेल के साथ। बस भेजे $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या $300 या उससे ज्यादा का कैश ट्रांसफर इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक, और आपका नाम तुरंत जाएगा ड्रॉ में टू विन वन ऑफ द 15 $500 कैश प्राइज। तो $20 का टॉप अप भेजे या $300 का कैश, और डीजी सेल के साथ मौका पाएं जीतने का $500 कैश। टीज एंड सीज अप्लाई।
5: इंडिया जाना है तो सफर भी तो वैसा ही होना चाहिए।
4: फ्लाई विद एयर इंडिया फ्रॉम न्यूजीलैंड, इजी रिटर्न कनेक्शंस वाया ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर टू इंडिया, और फिर सीमलेस ट्रैवल विद इन इंडिया। दिल्ली हो या अमृतसर, मुंबई हो या अहमदाबाद, एयर इंडिया कनेक्ट्स यू टू एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया।
5: वही अपनी भाषा और वही अपना स्वाद और वही फ्रेंडली इंडियन हॉस्पिटैलिटी के साथ। तो अगली बार घर का सफर हो, फ्लाई एयर इंडिया। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट योर लोकल ट्रैवल एजेंट टुडे।
6: For the one who's always been there, celebrate her with Pandora.

0: पापा टोय, फ्लैटबुश और पापाकुरा के बाद अब डीएच सुपरमार्केट का सबसे बड़ा स्टोर खुल गया है इन हेंडरसन। दैट्स राइट, योर लोकल इंडियन ग्रोसरी स्टोर नाउ इन हेंडरसन एट 5 मोजेल एवेन्यू ऑफ लिंकन रोड हेंडरसन। ह्यूज क्लीन हाइजीनिक प्लेस टू शॉप विद एम्पल पार्किंग। यहाँ पर आपको मिलेंगे फ्रेश वेजिटेबल्स, ऑथेंटिक स्पाइसेस और सभी इंडियन ग्रोसरी सामान बहुत ही अच्छे प्राइसेस में। डीएच सुपरमार्केट नाउ इन हेंडरसन एट 5 मोजेल एवेन्यू ऑफ लिंकन रोड। Ashik Homes Limited, for the first time, rent to buy. Fantastic opportunity to own a brand new home. If you have Kiwi Saver and some debt, Ashik Homes can still help. Got some credit issue? No issue. Finance can be arranged from just 5% deposit. Stop renting, start owning. Buy direct from the developer. Over $50 million of brand new houses available. Call 021-277-0859 or visit ashikhomes.co.nz.
1: How many deals can you get in a day? Hurry into Briscoe's today and find out with one day store-wide savings for, you guessed it, one day only. So hurry in and bag the savings. Stores open till 9 today only at Briscoe's. See online for T's and C's.
0: Hey everyone, मैं हूँ नेहा और इस सैटरडे आपको मिलूंगी एट NZ Beds मानिका सुपर सेंटर स्टोर, जहाँ पर आपको मिलेगा अप टू 70% डिस्काउंट ऑन सिलेक्टेड बेड्स, मैट्रेसेस फ्रॉम $299 एंड अ फ्री पिलो विद एवरी परचेज मेड इन द वीकेंड। सो सी यू दिस सैटरडे 10 AM टू मिड डे एट NZ Beds मानिका सुपर सेंटर।

सचिव राम आज 18 इयर्स के हो रहे हैं। खुशी के इस दिन पर आज आपको आपके मम्मी और डैडी ने बहुत सारा प्यार दिया है। मम्मा है आपकी शमी, डैडी आपके शलेन और फोर होल्डन प्लेयर्स मनिकाओ। साथ में आपके परिवार वाले यहाँ न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, यूएसए से आपको बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। आपके मम्मा और पप्पा आज आपको बहुत दुलार और प्यार दे रहे हैं। सचिव राम 18th बर्थडे आपको तराना की ओर से भी बहुत बहुत बार मुबारक हो। आज सिद्धार्थ और उनकी पत्नी शिवांगी की 12th वेडिंग एनिवर्सरी मनाई जा रही है। खुशी के इस दिन पर आज आपको बहुत सारा आप मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया चले गए और ऑनलाइन हमें भी फिलहाल सुन रहे हैं। आप दोनों को आज के दिन के लिए शुभकामनाएं। एंड सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच। आई एम वेरी श्योर आप रेडियो तराना को वहां बहुत प्रमोट कर रहे होंगे। आप दोनों को सिद्धार्थ एंड शिवांगी 12th वेडिंग एनिवर्सरी बहुत बार शुभ हो। श्रद्धा आप दोनों की बड़ी बेटी है, शिवानिया आप दोनों की छोटी बेटी है। सिद्धार्थ के पापा जी है शिवान, माँ है रीटा, शिवांगी के पापा जी डॉक्टर प्रणव कुमार है, मम्मा है आपकी निर्मला, साथ में सिद्धार्थ के भाई है संदीप, भाभी है दिव्या और त्रिशान है संदीप और दिव्या के बेटे राजा है, साथ में राहुल शिवांगी के भाई है, हिमांगी शिवांगी की भाभी है और सौम्या राहुल और हिमांगी की बेटी की ओर से आपको बहुत सारा प्यार मिल रहा है। सिद्धार्थ और शिवांगी 12th बर्थडे आपको बहुत बहुत बायस 12th वेडिंग एनिवर्सरी बहुत बहुत बार शुभ हो। आज मेनी मेनी हैप्पी विटर्न्स ऑफ द डे टीम तराना की ओर से आशा वाधवन सनीवेल में और बरकत अली खोजा जी आपका लिनफील्ड में बर्थडे मनाया जा रहा है। आप दोनों को हमारी टीम की ओर से बेस्ट विशेस। आशा वाधवन और बरकत अली खोजा साहब, मेनी मेनी हैप्पी विटर्न्स ऑफ द डे। आपके लिए आज आप खुशी का दिन है तो हमारे लिए दुगनी खुशी का दिन है, क्योंकि हमारे लिसनर की खुशी हमारे लिए उससे भी बड़ी खुशी। शाम को 6:30 बजे कैप्टन आपको याद करेंगे। मैसेजेस उसके लिए आप टेक्स्ट कर दें 8812 या आप ईमेल कर सकते हैं info@tarana.co.nz पर। बहुत ही प्यारा ये गाना शब्बीर कुमार और साथ में लता दीदी की आवाज़ में आज सागर ने हमारे पास आपके लिए भेजा है। बापी लहरी ने म्यूजिक से सजाया है और इस फिल्म में मुख्य रोल में जितेंद्र पद्मनी थी। फिल्म का नाम सुहागन। गाने के बोल पर गौर करना जनाब।

0: ये बहुत ही खूबसूरत दो गाना आपको सुना रहे थे लता दीदी और साथ में शब्बीर कुमार फ्रॉम सुहागन का ये गाना था। आज के केक ड्रो में सचिव का नाम निकला है, कंग्रेचुलेशंस टू यू सचिव ने, साचिव कंग्रेचुलेशंस टू यू। आपको रिंग करना होगा ऑन 0800-786-101 पर आज बिफोर 2 PM प्लीज।
1: डैडी कैसे? राम राम।
2: ठीक बेटा, राम राम। घर बने? कहाँ तक पहुँचा?
1: पेंटिंग हुए डैडी।
2: कितना अच्छा बिल्डर मिल गए रे। क्या नाम है उन लोगों के?
1: इनडेलिबल होम्स।
2: हमारे पास भी 10-15 घर रहता, अगर हमारे टाइम पे ऐसा बिल्डर मिल जाता।
1: अभी भी सकता बनाए डैडी, बना के हमें दे दो। हाँ,
2: वाह।
0: न्यूजीलैंड के मोस्ट ट्रस्टेड और एक्सपीरियंस सब डिविजन एंड बिल्डिंग स्पेशलिस्ट इनडेलिबल होम्स। फोन 0800-233-111।
3: जब बात होती है पर्दों की तो नाम आता है डी कैरो कर्टन्स का, जो कर्टन्स के साथ साथ स्पेशलाइज करते हैं इन सन फिल्टर रोलर ब्लाइंड्स, जो दिन में दे सही लाइट और यूवी रे से प्रोटेक्शन और नाइट में दे कंप्लीट प्राइवेसी। इनके सभी ड्रेप्स एंड कर्टन्स आते हैं विद फ्री लाइनिंग, प्लस तराना का नाम मेंशन करने पर 20% का डिस्काउंट। कम एंड मीट देयर फ्रेंडली टीम एट 19 मॉर्निंग साइड ड्राइव, माउंट एल्बर्ट। फोन 0981538111। डी कैरल कर्टन्स।
4: इस मदर्स डे को बनाए और भी स्पेशल डीजी सेल के साथ। बस भेजे $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या $300 या उससे ज्यादा का कैश ट्रांसफर इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक, और आपका नाम तुरंत जाएगा ड्रॉ में टू विन वन ऑफ द 15 $500 कैश प्राइज। तो $20 का टॉप अप भेजे या $300 का कैश और डीजी सेल के साथ मौका पाएं जीतने का $500 कैश। T's and C's apply.
5: Else Discount Furniture. Papa Toy में चल रहा है amazing specials. From beds, dining suites and lounge suites. खरीदिए beautiful 7-piece dining suite या quality corner lounge suite और luxurious queen pillow top pocket spring mattress at reasonable price. Quality furniture low price में. Else Discount Furniture. Limited stock available. 355 Great South Road, Papa Toy.
6: इस हफ्ते के स्टार ऑफ द वीक हैं म्यूजिक डायरेक्टर दिलीप और समीर सैन।
7: ब्रॉट टू यू बाय केएमबी कंस्ट्रक्शन। नया घर बनाना है और रिलायबल, ऑनेस्ट और कमिटेड कंस्ट्रक्टिंग सर्विस चाहिए तो कॉल करें भूपेंद्र कुमार को 0218748711 पर।
0: और जल्द बगैर झिझक के, अगर आप बगैर डिले के अगर घर बनाना चाहते हैं वो भी बजट के अंदर और बगैर झंझट के, तो आप ज़रूर केएमबी कंस्ट्रक्शंस को कांटेक्ट करें। आप भूपेंद्र कुमार से डायरेक्ट बातें करेंगे, इनका इस प्रोफेशन में बहुत सालों का तजुर्बा है और पेशे से वो एक इंजीनियर भी है। ऐसे में उनकी तरफ से हम, जबकि दिलीप सेन, समीर सेन को इस हफ्ते उनके नगमे सुना रहे हैं, बीच बीच में माधुस रे के गाने भी हम आपको सुना रहे हैं। इस बार माधुस रे का एक तराना मैं आपको सुनाने वाली हूँ रफ़ी साहब की आवाज़ में। उसी पर किसी ने माँ के बारे में लिखा है कि माँ के लिए कुछ लिख सके ऐसे शब्द वेद व्यास भी ना तलाश पाए, माँ के लिए कुछ कह पाए ऐसा शब्द सरस्वती भी ना सोच पाई। माँ के सामने अंबर छोटा है, माँ के सामने सागर उथला है, माँ के सामने पर्वत कंकड़ सा, माँ के सामने इंद्रधनुष फीका है। माँ है तो सृष्टि का अस्तित्व है, माँ है तो धरती की पहचान है, माँ है तो ब्रह्मांड का मान है, माँ के आगे सब कुछ थोड़ा है। माँ एक शब्द में संपूर्णता है, माँ एक भाव का राग है, माँ एक प्रार्थना का स्वर है, माँ एक पूर्णता का एहसास है।

0: Chasers Abuja Mix ka full range dekhe on chasers.co.nz. Chasers, feel the flavor.
1: Resene is New Zealand's most trusted paint brand, made in New Zealand for our unique conditions. Resene's quality, innovative paints and wood stains, plus the huge variety of colors, are ideal for homeowners and professional painters. Always choose Resene for your decorating projects.
2: At IKEA, turn clutter into calm. With our wide range of storage solutions. Because behind every mess, every avalanche of toys is a new possibility. Shop in store or at ikea.co.nz.
3: IKEA.
4: जो लोग IM चैनल के बारे में पूछना चाहते हैं, हमसे या जानना चाहते हैं, लुक्स लाइक कि एक और हफ्ते का काम अभी बाकी है एंड लुक्स लाइक कि ये डेड टाइम आउटेज रहेगा. इसके बारे में और जानकारियां हमें इस हफ्ते बाद में या कल बाद में हमें मिलने वाली है, लेकिन आपको सिर्फ बताना चाहते थे कि आप ऑनलाइन सुन रहे हैं तब तो ये मैसेज आप तक पहुंच ही रही है, अगर नहीं सुन रहे तो ये मैसेज किसी तक किसी तरह से और पहुंच भी नहीं सकती. बट अगर आप ऑनलाइन अभी फिलहाल सुन रहे हैं ऐप के जरिए, आई हार्ट रोवा ऐप, कुछ लोग गूगल सर्च करते हैं, जहां तहां उनको मौका मिलता है वहां से सुनते हैं, बट कीप यू पोस्टेड कि अभी फिलहाल क्या चल रहा है. अपग्रेड का काम ये एक हफ्ते तक और चलेगा एंड होपफुली अर्ली नेक्स्ट वीक एक बार फिर से आप AM पर हमें सुन सकेंगे.
5: हम चाहे हंसी का नकाब गम पर लगाएं या गम का नकाब हंसी पर, या हजार बार समझाएं माँ सच्ची कुछ नहीं हुआ है. अच्छा बेटा फिर मुंह क्यों इतना उतरा हुआ है. इन्हें कही अनकही हर बात का अंदाजा होता है,
6: आप सभी को तराना टीम की तरफ से हैप्पी मदर्स डे.
7: रेडियो तराना टाइम चेक.
8: प्राउडली ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स. फोन 0800 233 111. वेबसाइट indelibleHomes.co.nz.
4: 11 बज चुके हैं.
9: दिस इज तराना न्यूज.
10: समाचार सुनिए संजेश नारायण से. रूरल सेंट्रल नॉर्थ आइलैंड के एक प्रॉपर्टी में एक दंपति की हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. ब्रेंडन और ट्रीना कोल की हत्या पिछले साल गोली मार कर कर दी गई थी. पुलिस ने पुष्टि की है कि 30 वर्षीय आरोपी पर मैरा वाले चार्जेस लगा दिए गए हैं. दंपति को उनके रुवतीति फार्म के ड्राइववे में गोली मार दी गई थी. उनके शव वहीं पड़े रहे जहां वे गिरे थे और कई दिनों बाद यानी 13 दिसंबर को वे मिले थे. टेक्सास के एक डिलीवरी ड्राइवर जिन्होंने 7 साल की लड़की का अपहरण करने के बाद में उनके साथ में दुष्कर्म किया था और हत्या कर दी थी को मौत की सजा सुनाई गई है. ये घटना 30 नवंबर 2022 की है. 34 वर्षीय टेना होना को 7 साल की लड़की का अपहरण करने और उनके साथ में दुष्कर्म करने का आरोप लगा है. होना ने दावा किया था कि उनके फेडेक्स वैन से टक्कर लगने के बाद में अथेना घायल हो गई थी, जिसके बाद में वे घबरा गए थे और उन्होंने उनका गला दबाकर हत्या कर दी. लेकिन पुलिस का मानना है कि जब लड़की का अपहरण किया गया तो उन्हें कोई चोट नहीं लगी थी. लड़की अथेना स्ट्रेन की लाश उनके घर से 17 किलोमीटर दूर उनके गायब होने के 2 दिनों बाद नग्न अवस्था में मिली थी. लेबर पार्टी की डेप्यूटी लीडर कामिल सेपोलोनी का कहना है कि कॉलिशन सरकार में शामिल एक्ट और न्यूजीलैंड फेस्ट पार्टियां ये साबित करना चाहती हैं कि किसके पास में बेहतर इमिग्रेशन पॉलिसी है. उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब एक्ट पार्टी ने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी की अनाउंसमेंट की है. एक इंटरव्यू में जब हमने कामिल सेपोलोनी से पूछा कि क्या वो सोचती हैं कि कॉलिशन सरकार स्थिर है, तो उन्होंने कहा कि कभी कभी ये नहीं पता चलता कि कॉलिशन पार्टनर्स सरकार में है या वे एक दूसरे के विपक्ष में है.
11: They have been eating each other in recent weeks in particular. You know, even in question time in the house, sometimes you have to wonder who the opposition is because you've got Nicola Willis and Winston Peters going each other when they are supposed to be part of the same government. More recently, you've had Erica out there condemning David Seymour and the ACT Party's policy on immigration. So they haven't been able to hold it together. We already saw them cracking.
10: मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ा अल्टीमेटम दिया है. उन्होंने कहा कि या तो युद्ध समाप्ति के लिए प्रस्तावित समझौतों को स्वीकार करें वरना अमरीका की ओर से भारी बमबारी का सामना करना पड़ेगा.
3: And if they don't agree, they'll end up agreeing shortly thereafter. So that's the way it is.
10: पश्चिम बंगाल के कोलकाता से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है. वहां पर भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. बताया जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी के पीआई चंद्रनाथ दत्त की कल रात गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस बीच निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पद से हटने से इनकार कर दिया है. उन्होंने कहा कि बर्खास्त करना चाहो तो कर सकते हो लेकिन मैं इस्तीफा देने वाली नहीं हूं.
9: स्पोर्ट्स न्यूज.
10: न्यूजीलैंड वुमेन्स क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के दौरे पर डेवलपमेंट टीम को 18 रनों से हरा दी है. न्यूजीलैंड की पूरी टीम 48 ओवर में 200 रन बनाते हुए आउट हो गई थी. न्यूजीलैंड को बड़ा झटका तब लगा जब कैप्टन एमेलिया के और मैरी ग्रीन सहित चार खिलाड़ी 49 रन पर ही आउट हो गए थे. एमेलिया के और मैरी ग्रीन सिर्फ एक ही रन बना पाए लेकिन जेस के 44 और फ्लोरा डेवनशेयर के 30 सहित इजी शार्प के 22 रन के बदौलत व्हाइट फैंस ने अपनी पारी संभाली. इस मैच में सुजी बेट्स ने 3 जबकि रोजमेरी मेयर और नैन्सी पटेल ने 2-2 विकेट लिए. इंग्लैंड डेवलपमेंट टीम 182 रनों पर 49th ओवर में आउट हो गई. व्हाइट फैंस टीम इंग्लैंड के खिलाफ 3 ओडीआईज और 3 T20 मैचेस के लिए तैयारी कर रही है. पहला मैच रविवार को रहेगा.
12: Weather report brought to you by Krukia. Visit krukia.co.nz.
4: क्राइस्टचर्च में आज सुबह हल्की बूंदाबांदी हुई थी और आज पूरे दिन तेज हवा चलने के लिए अनुमान लगाया जा रहा है. आज टेम्परेचर मैक्सिमम 19 जाएगा. रात को गिर के तिर सिर्फ 16 तक जाने वाला है. यूल फील हॉट टुडे क्राइस्टचर्च वासियों. 5:24 PM पर सनसेट होगा. कल भी सुबह की शुरुआत कल सुबह की शुरुआत धूप के साथ में होगी और फिर दोपहर के बाद बूंदाबांदी के आसार 60% है. कल का मैक्सिमम टेम्परेचर 19 डिग्री सेल्सियस फोरकास्ट किया जा रहा है. वेलिंगटन में आज धूप भी खिली हुई है और थोड़ी बहुत बारिश भी होने के दोपहर के बाद आसार है. तेज हवा भी चलने वाली है. 18 आज का मैक्सिमम टेम्परेचर. रात को 15 मिनिमम. रात को 80% चांसेस बारिश के. आज 5:20 PM पर सनसेट होगा. कल भी विंडी पीरियड रहेंगे. तेज हवा के साथ साथ में हल्की बारिश के लिए अनुमान लगाया जा रहा है. कल का मैक्सिमम टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस. हैमिल्टन में आज पार्टली क्लाउडी पीरियड्स रहेंगे. आज का मैक्सिमम टेम्परेचर अप टू 23 डिग्री सेल्सियस जाने वाला है. मिनिमम ओवरनाइट 14 डिग्री सेल्सियस. आज 5:26 PM पर सनसेट होगा. कल रेडार पर बारिश नजर आ रही है. कल का मैक्सिमम टेम्परेचर इन हैमिल्टन 20 डिग्री सेल्सियस. ऑकलैंड में आज धूप भी है, बादल भी है और दोपहर के बाद आइसोलेटेड शावर्स के लिए भी फोरकास्ट किया जा रहा है. थोड़ी तेज हवा चलने वाली है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की ओर से. गर्मी रहेगी क्योंकि 22 आज का मैक्सिमम जाएगा. रात को तो बहुत गर्मी रहेगी. हो सकता है आपको कंबल की जरूरत नहीं पड़ेगी. मिनिमम 18 डिग्री सेल्सियस रात को टेम्परेचर रहेगा. 5:29 PM पर सनसेट होगा. कल और परसों के लिए बताया जा रहा है कि दोपहर के बाद बूंदाबांदी के आसार है. कल का मैक्सिमम टेम्परेचर इन ऑकलैंड 20 डिग्री सेल्सियस.
13: लॉस ऑफ अ लव्ड वन इज एन अनफिल्ड वैक्यूम. डिमाइस न्यूज.
4: दुख के साथ सूचित किया जाता है कि राकी फीजे के स्वर्गीय बेचू प्रसाद के बेटे कैमरन चंद के पिता गो प्लेस दी गार्डन्स के बॉब कृष्ण चंद का अंतिम संस्कार आज दिन में 1 बजे एंस फ्यूनरल होम 11 बॉलीवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा. दोबारा सुनिए. सूचित किया जाता है कि राकी फीजी के स्वर्गीय बेचू प्रसाद के बेटे कैमरन चंद के पिता गो प्लेस दी गार्डन्स के बॉब कृष्ण चंद का अंतिम संस्कार आज दिन में 1 बजे एंस फ्यूनरल होम 11 बॉलीवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा. दुख के साथ सूचित किया जाता है कि यलांड्रो तावा फीजी के स्वर्गीय मुनसामी के बेटे ऑकलैंड के शारदा मणि के पति ऑकलैंड के रोनील कृष्ण पुजारी मेलबर्न के शालिनी कृष्णा के पिता सुब्रमणि और गोविंदा के भाई रॉबर्ट स्केल्टन मनुरेवा के श्री कृष्णा उर्फ हैरी का अंतिम संस्कार कल दिन में 1 बजे एनजेड इंडियन फ्यूनरल सर्विसेज द्वारा मनकाव मेमोरियल गार्डन्स 361 पुइने रोड ऑकलैंड में किया जाएगा. शोक सहानुभूति के लिए आप 021-029-265-78 पर संपर्क कर सकते हैं. दोबारा सुने। सूचित किया जाता है कि लांड्रोता वाफीजी के स्वर्गीय मुनसामी के बेटे, ऑकलैंड के शारदा मनी के पति, ऑकलैंड के रोनिल कृष्ण पुजारी, मेलबर्न के शालिनी कृष्णा के पिता, ऑकलैंड के सुब्रमणि और गोविंदा के भाई रॉबर्ट स्कैल्टन मनुरिवा के श्री कृष्ण और हैरी का अंतिम संस्कार कल दिन में 1 बजे एनजेड इंडियन फ्यूनरल सर्विसेज द्वारा मनुकाव मेमोरियल गार्डन्स 361 पोहिनी रोड वीरी में किया जाएगा। शोक सहानुभूति के लिए आप 02102926578 पर संपर्क कर सकते हैं।
14: शोक सूचनाएं ऑकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम की तरफ से।
4: जीवन में कुछ पल बहुत ही अलग होते हैं और जब किसी प्रियजन को अलविदा कहना हो तो हर चीज आसान होनी चाहिए और सम्मानजनक भी। ओकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम में सभी धर्मों के अंतिम संस्कार की सेवा प्रदान की जाती है। इनके इजी पे फ्यूनरल प्लान के साथ परिवार के लिए काम थोड़ा आसान हो जाता है और एडवांस पेमेंट और इजी इंस्टॉलमेंट टर्म्स के बारे में जानकारी के लिए आप उन्हें आज ही 2788600 पर रिंग करें। ओकलैंड इंडियन फ्यूनरल होम, हर विदाई में सम्मान और सेवा।
15: न्यूजीलैंड के कई बड़े बड़े इवेंट्स में होने वाले जो बड़े बड़े माकी आप देखते हैं ना, अरे मनुकाओ दिवाली सिख गेम्स में ये माकी इवेंट्स ऑकलैंड माकी एंड पार्टी हायर के हैं। 20 सालों से हैं बिजनेस में। इनके माकी बड़े स्ट्रांग होते हैं बॉस। घर पे फंक्शन हो तो टाइम पर माकी लग जाएगा और टाइम पर उतर भी जाएगा। इवेंट्स ऑकलैंड का नंबर लिखें 09265 0505 और सुनिए ये पोर्टल लू भी हायर पर देते हैं। इवेंट्स ऑकलैंड को कॉल करें 09265 0505
16: और तराना का नाम मेंशन करने पर आपको स्टेज हायर्स, मंडप और माकीज पर अप टू 5% का डिस्काउंट भी मिलेगा।
17: यार मुझे फिजी जाना था।
18: कब जाना है?
17: दिसंबर की छुट्टियां हो जाए तब जाएंगे।
18: रेंटल सॉर्ट आउट कर लिया?
17: नहीं यार, नहीं मिला कुछ।
18: आई थिंक यू शुड कॉन्टेक्ट कोस्टल रेंटल कार्स। इनके पास फैमिली कार्स, SUVs और सभी लग्जूरियस गाड़ियां हैं और गाड़ियां अच्छी कंडीशंस में।
19: कोस्टल रेंटल कार्स, विजिट coastalrentalcars.com.fj और फॉर बुकिंग्स कॉल ऑन 00679652028।
20: एक्सप्लोर फिजी द कोस्टल वे।
21: Stay tuned to Tarana for all IPL updates.
22: IPL, the Indian Premier League. Get behind your favorite IPL team. Kyunki hum denge IPL par sabhi updates, reviews aur previews. Stay tuned to Tarana.
23: Brought to you by Indelible Homes and Chasers.

0: पवन,
1: आज डोनाल्ड ट्रंप की खबरों पर ये वायरस की खबर भारी पड़ रही है, क्योंकि ये खबर सबसे बड़ी खबर है। 2018 में सदन अर्जेंटीना में कुछ लोगों की जान गई थी, नीली 3 डजन लोग एक जगह पर निवास करते थे और उनमें से ये लोग इन्फेक्टेड हुए थे और 11 लोगों की जान चली गई थी। उनकी बीमारी बताया जा रहा है कि निमोनिया और रेस्पिरेटरी इश्यूज के कारण हुई थी। अब ये बात सामने आ रही है कि एंडस वायरस, ये स्ट्रेन होता है रोडेंट हेंटावायरस के तरह ही वो ट्रांसमिट होता है एक इंसान से दूसरे इंसान तक, और ऐसा समझ में आता है कि यही वो वायरस है जिसकी वजह से 8 और लोग MV हॉन्डियस क्रूज शिप में बीमार हो गए हैं और कुछ लोगों को कल एयरलिफ्ट भी किया गया है। ये जो UPN आउटब्रेक था 2018 में, इसके बारे में, इस स्ट्रेन के बारे में कोई खास जानकारियां तब नहीं थी, अब भी नहीं है। डॉक्टर गुस्तावो पलासियो, जो अभी फिलहाल इस वायरस के आउटब्रेक के वक्त भी जानकारियां इकट्ठे कर रहे हैं और वो भी स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि इसका अभी कोई इलाज नहीं है दुनिया में, इसलिए इसको इतनी जल्दी फॉलो किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि कहीं किसी और तक नहीं फैलना चाहिए, क्योंकि अगर फैला तो कोई इलाज इसका अभी फिलहाल नहीं है। 2020 में न्यू इंग्लैंड जर्नल में बताया गया था, एक स्टडी की गई थी उसके लिए, डॉक्टर ने बताया कि प्रोबेबली इसके बारे में कोई ऐसी बात है ही नहीं कि लोगों को इसके बारे में पता हो, क्योंकि हिस्ट्री भी अगर वो उठाकर देखते हैं लगभग 300 लोगों को ही ये बीमारी हुई थी। हिस्ट्री में देखे दुनिया में आज तक 300 केसेस ही ऐसे आए हैं जो इस वायरस से पीड़ित हुए हैं, विच इज़ कॉल्ड हेंटावायरस। सो जितने भी लोग क्रूज शिप में थे अब सबको पकड़ने के आसार ऐसे नज़र आ रहा है, जो पसंजा के एक दूसरे के थ्रू गए होंगे, ऐसा समझा जाता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ये ट्रांसमिट हुआ होगा। कल मैं थोड़ा बहुत पढ़ रही थी कि शायद ये चूहों के जरिए भी फैल सकता है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की गई है, तो फिर मैं इसमें बताना नहीं चाहूँगी, बट वुड नॉट लाइक टू स्पेकुलेट एट ऑल, पर ये अभी फिलहाल एक चिंता का विषय दुनिया में बना हुआ है, हेंटावायरस।

0: ऐसी कास्ट लेके, नॉन स्टार कास्ट लेके वगैरह, वो थोड़ा हिचक रहे थे। उन्होंने कहा कोई कोई स्टार लेके आइए तो हम लोग फिर प्यार से फिल्म बनाएंगे। तो तब संध्या ने बोलते बोलते कहा कि उसकी नज़र के सामने शाहरुख खान और रानी मुखर्जी, ये दो दो एक्टर्स थे। तो वो तो एकदम उछल पड़ा, देखा तो उन्हीं को लेके करेंगे फिल्म, और उन्हीं को लेके फिर फिल्म बन गई। एक इंटरेस्टिंग बात ये भी मैं कहना चाहूँगा कि जब हमने शाहरुख से मुलाकात की और उनको संध्या ने पूरी कहानी सुनाई, पूरे स्क्रिप्ट, ही यूज टू स्मोक अ लॉट एट दैट टाइम, अभी अभी मैंने पढ़ा कि उसने स्मोकिंग छोड़ दी है, तो लेकिन उस समय वो कंटिन्यूसली, तो उसने नरेशन खत्म होने के बाद एक और सिगरेट जलाई और यही सवाल पूछा। लेकिन उस सवाल से पहले मैंने एक जो कमेंट की थी संध्या के नरेशन के बाद, मैंने शाहरुख से ये कहा कि हमारे यहाँ जो डबल रोल होते हैं वो नॉर्मली एक ब्लैक और एक वाइट, एक अच्छा आदमी एक बुरा आदमी, ऐसा होता है। यहाँ दिक्कत ये है कि दोनों अच्छे आदमी हैं, दोनों जो रोल्स हैं वो दोनों अच्छे आदमी,
1: तभी तो दुविधा होगी।
0: और नहीं, और इसीलिए मुझे अच्छे एक्टर की ज़रूरत है और इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तो उसने सिगरेट जला के पूछा कि सर वुड यू माइंड इफ आई प्रोड्यूस दिस फिल्म। फिर तो सारे पत्ते बिल्कुल ही बदल गए, जो प्रोड्यूसर थे उनसे उसने राइट्स खरीद लिए और उन्होंने कहा हम बनाएंगे रेड चिलीज के, और उन्होंने रेड चिलीज के, एज अ प्रोड्यूसर आई कैन से दैट शाहरुख ने ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ी जो करनी चाहिए फिल्म के लिए, जो मैं चाहता था, ऐसी एक भी बात उसने नहीं छोड़ी। ही वॉज अ एक्सलेंट प्रोड्यूसर, एब्सोल्युटली एक्सलेंट प्रोड्यूसर।
2: डीजी सेवल की ओर से हैप्पी मदर्स डे, और आपको ये भी याद दिलाया जा रहा है कि $20 का टॉप अप करें या $300 का मनी ट्रांसफर करें माई कैश वॉलेट में पैसिफिक में कहीं पर भी, और $500 कैश प्राइज 15 में से एक आपका हो सकता है। डीजी सेल आपको हैप्पी मदर्स डे कहते हुए याद दिलाना चाहेंगे कि किसी को भी पैसिफिक में अगर पैसे भेजना हो, वर्मा को भी भेजना हो, तो डीजी सेल को ज़रूर याद रखें। उन्हीं की ओर से यह सेगमेंट आपके लिए लाया जा रहा था, और आपको याद दिला दें कि कल आप हमारे प्रोग्राम को सुनते रहिएगा, क्योंकि कल एक बार फिर से D8 सुपरमार्केट उनके वीकेंड के स्पेशल के लिए ऐलान करेंगे। याद रखिएगा D8 सुपरमार्केट अभी नई नई खुली हुई ये सुपरमार्केट है 5 मोजेल एवेन्यू ऑफ लिंकन रोड हैंडरसन में, और वीकेंड्स में इनके धमाकेदार स्पेशल्स होते हैं जिसके लिए आपको रेडियो तराना का फेसबुक फॉलो करते रहना पड़ेगा फॉर नवीनतम स्पेशल्स। आज पवन पीडिया में मैं आपको बताने वाली हूँ चिकन के बारे में, चिकन के बारे में। सो द थिंग इज कि कई लोगों का कहना है कि चिकन धोना चाहिए, कई लोगों का कहना है कि चिकन नहीं धोना चाहिए, यू नो राइट। कई लोग कहते हैं कि बगैर धोए ही, यहाँ के न्यूजीलैंड के एक्सपर्ट्स कहते हैं यू शुड नेवर वॉश चिकन। सो एक कतर की एक एक्सपर्ट है जिन्होंने कई सालों तक इस क्षेत्र में काम किया है जहां पर मीट कंजम्पशन कैसे होना चाहिए, स्पेशली चिकन, और इसमें कैसे कैसे क्या क्या बैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया की वजह से ही कहा जाता है कि चिकन नहीं धोना चाहिए। सो उन्होंने लेटली भी क्या कहा है, अहाना नज़र हफीज इनका नाम है, कतर की रहने वाली है, नज़ा सेट की एक्सपर्ट है इस क्षेत्र में, इन्होंने पढ़ाई की है। सो उनका क्या कहना है, चिकन धोए या नहीं धोए, अगर धोए तो कैसे धोए, ये जानकारी आज मैं पवन पीडिया में शेयर करूंगी इस एड ब्रेक के उस पार।
3: इस मदर्स डे को बनाए और भी स्पेशल डीजी सेल के साथ, बस भेजे $20 या उससे ज्यादा का टॉप अप या $300 या उससे ज्यादा का कैश ट्रांसफर इनकी किसी भी पार्टनर वेबसाइट से माई कैश वॉलेट के साथ टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन द पैसिफिक, और आपका नाम तुरंत जाएगा ड्रॉ में टू विन वन ऑफ द 15 $500 कैश प्राइज। तो $20 का टॉप अप भेजे या $300 का कैश, और डीजी सेल के साथ मौका पाए

0: जीतने का $500 कैश. T's and C's apply.
1: Chemist Warehouse has now opened in Fungaparoa. Find the new Chemist Warehouse in Fungaparoa next to the Coast Shopping Mall.
0: With the biggest range of all your health and beauty essentials at the lowest prices, they've got everything you need to look and feel your best. They are open 7 days a week from early till late, including public holidays. If you can't make it in-store, shop online 24/7. Chemist Warehouse, great savings every day.
2: नमस्ते ऑकलैंड, मुश्किल वक्त में सिंग्स फ्यूनरल सर्विसेज आपके साथ हैं।
3: ये ऑफर करते हैं कंप्लीट फ्यूनरल पैकेज सिर्फ $4,299 से।
2: इस पैकेज में शामिल है ट्रांसफर्स, एम्बामिंग और सर्टिफिकेट, ग्रोवना कास्केट, लाइव स्ट्रीमिंग, एक घंटे का चैपल सर्विस, क्रिमेशन या बुरियल, डॉक्टर सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई एंड प्रोड्यूस करना, ओवरसीज रिपेट्रिएशन अवेलेबल है।
3: ये विन्स अप्रूव्ड है, ऑकलैंड रीजन के लिए वैलिड।
2: ऑकलैंड के बाहर के लिए कॉम्पिटिटिव रेट्स के लिए कॉन्टेक्ट करें शलिन सिंह को 0272929776। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: हम सभी सही तरह से रिसाइकल करना चाहते हैं, तो याद रखें प्लास्टिक 1, 2 और 5 को रिसाइकल करें और धरती को जीवित रखें। सही तरह से रिसाइकल करना आपके हाथों में है। सर्च करें ओकलैंड काउंसिल रिसाइक्लेबल आइटम्स, तमकी तुरुकी, ऑल टुगेदर ओकलैंड।
5: 3 मिनट का पवन पीडिया, नो समथिंग न्यू ऑन पवन पीडिया।
6: तो ये एक अनरिटन रूल है कि चिकन धो करके नहीं बनाना चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन USDA फूड सेफ्टी एंड इंस्पेक्शन सर्विसेज भी रिकमेंड करते हैं कि कोई भी पोल्ट्री का प्रोडक्ट बनाने से पहले धोना नहीं चाहिए, क्योंकि मेन रीजन ये होता है कि इसका बैक्टीरिया स्प्लैश हो जाता है। तो इसी के मुतल्लिक अहाना नफीस हफीज, ये फूड सेफ्टी ऑफिसर है और एक कंटेंट क्रिएटर भी है फ्रॉम कतर, उन्होंने एक आर्टिकल निकाला, एक वीडियो दरअसल निकाली, वहीं से मैंने ये जानकारियां निकाली। अकॉर्डिंग टू अहाना, मेजर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस आपको अगेंस्ट बताते हैं कि आप चिकन ना धोया करें या पोल्ट्री चीजें ना धोया करें। सो उन्होंने कहा कि अगर आप, बट हमारा देसी स्टाइल है, हम बगैर धोए कहाँ खाना बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, बताया जाए ना धोएं लेकिन फिर भी धोएंगे। एंड उसके पीछे वजह है क्योंकि आना कहती है कि बहुत सारे इवन बुच्चा के लोग कहते हैं कि जब हैंडल करते हैं वो मीट एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, जहां रखा जाता है, जितने लोग हैंडल करते हैं उसमें गर्द कुछ फर्स वगैरह रह जाते हैं, तो फिर क्यों, या फेदर्स वगैरह, फर नहीं, फेदर रह जाता है, पंख वगैरह, तो वो सब तो साफ करना ही होता है और पता नहीं किसने क्या छुआ कैसे, उसके मुताबिक उनको धोना ही पड़ता है। सो जस्ट फॉर योर पीस ऑफ माइंड, आप अगर धोना भी चाहते हैं कि आप रिस्क मिटिगेट कर सके, तो आप चिकन को एक बाउल में रख के उसमें पानी डालें, ऐसा रनिंग वाटर में नहीं, ऐसे पानी गिरता रहे और आप धोए, क्योंकि मेन चीज है कि इसका छींटा इधर उधर नहीं जाना चाहिए। आप में से ज्यादा लोग ऐसे करते होंगे कि चिकन धोने के बाद जो नॉर्मल चीजों से आप धोते हैं या चिकन बनाने के, उससे नहीं धोना चाहिए, इसको गर्म पानी में अलग से धोना बहुत जरूरी है, क्योंकि चिकन मीट में ऐसे बैक्टीरिया है जो बहुत खतरनाक हो सकते हैं अगर ये रह जाते हैं, और ये बैक्टीरिया सिर्फ और सिर्फ पकाने से ही मरते हैं, धोने से नहीं। सो पीस ऑफ माइंड के लिए अगर आप धोना भी चाहते हैं तो इधर उधर छींटा ना पड़े, जितनी भी सामान आपने चिकन के लिए यूज़ किया है उनको अच्छी तरह से धो करके, सही डिटर्जेंट का बार बार धो करके, इनको गर्म पानी से धो करके, धूप में रख करके, बाकी बर्तनों से अलग, और फिर जहाँ पर आप इसको धोते हैं वहाँ पर भी छींटा इधर उधर नहीं पड़े। तो रनिंग वोटा में आप इसको नहीं धोएंगे तो छींटा नहीं पड़ेगा, ज़्यादा छींटे पड़ने के आसार कम हो जाएंगे। तो ऐसे ही बोल में रख करके अगर आप सावधानी से बगैर, अच्छी तरह से देखे, बगैर स्प्लैश करे अगर आप ये धो सकते हैं, तो प्रॉब्लम धोने की नहीं होनी चाहिए। चिकन का जब तक वो 75 डिग्री सेल्सियस हीट पर नहीं बनाया जाता, पूरी तरह से चिकन बन जाना चाहिए। अगर कहीं पर भी आप कुछ खरीद कर भी लेकर आते हैं, कभी चिकन अंदर से कच्चा रहता है, जस्ट थ्रो इट अवे एंड डोंट ईट इट, खाए नहीं, क्योंकि चिकन का जो बैक्टीरिया होता है, आप यकीन मानिए, मैं किसी दिन आंकड़े लेकर के आऊँगी कि इसकी वजह से कितने लोग बीमार होते हैं, कितने लोगों की जान चली जाती है। सो फूड सेफ्टी की तरफ से आपको, या फूड सेफ्टी के लिए आपको ये ध्यान देना चाहिए कि आप इन सब बातों पर ध्यान दें। सो अगर धोने का भी मन है तो तरीका सही होना चाहिए पोल्ट्री मीट धोने का।

0: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Fiji Airways is on sale now. Fly to Fiji from just $309 one way. Or enjoy a stopover in Fiji on your way to epic destinations like Samoa from $305 one way, Tonga from $319, Tokyo from $635, Singapore from $699, and Hong Kong from $669 one way. Book now at fijiairways.com or call your travel agent. Conditions apply.
1: Global costs are surging. Rising inflation is on the horizon. Beat the hike with the iFurniture Beat Inflation Sale. Grab designer sofas, dining, beds, and more at warehouse prices. Don't just watch prices go up, get ahead of them. Shop smarter at iFurniture and lock in the value today. Shop online at iFurniture.co.nz with NZ wide shipping. Visit us in Auckland, Hamilton, and Christchurch. iFurniture. Better, cheaper, smarter.
2: Tiaki Wai is your new council-owned water organisation. From 1st July, Tiaki Wai will deliver water services across Wellington, Hutt Valley and Porirua. Find out more at tiakiwai.co.nz.
3: Rajasthan ki mehman nawazi ke to kya kehne? Aur ab wahi mehman nawazi aur wahi swad aapko milega yahan Auckland mein. At Shri Restaurant. Authentic Rajasthani and delicious Indian vegetarian cuisine. Rajasthan ki mashhoor dal paati churma. Chaat items and many other snacks and full meals. Auckland ke mashhoor chef Rameshwar aap sabko nimantran de rahe hain to the Shri Restaurant at 11 bar 726 Great South Road Manukau opposite Rainbow's Inn aur yahan functions host karne ke liye bhi badi jagah available hai. Shri Restaurant open 6 days closed on Wednesdays.
4: What say Kiwi Indians? Top trending talks पवन के साथ.
5: सबसे पहले भारत की खबरें आपके साथ में शेयर करते हैं. भारत की सबसे बड़ी खबर यही है कि सुवेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट को गोली मार करके मौत के घाट उतार दिया गया है. मध्यम ग्राम में उनकी हत्या की गई है. बताया जा रहा है कि बीजेपी लीडर के ये पीए लीडर्स के पीए को चंद्रनाथ रथ इनका नाम बताया गया है और उनकी गाड़ी को फॉलो किया जा रहा था और जैसे उन्होंने गाड़ी थोड़ी सी ढीली की, जो भी विजुअल्स अभी फिलहाल पुलिस के पास में है, गोलियों की बौछार कर दी गई. 4 गोलियां चलाई गई जिसमें से 3 गोली उनके पीए को लगी, मिस्टर रथ को लगी. और ये खबर आते ही सुवेंदु अधिकारी अस्पताल में गए जहां पर उनकी बॉडी की शिनाख्त कर दी गई थी. बुद्धा साहेब, ये राम के ड्राइवर थे, उनको भी इससे चोट लगी है और पुलिस की पूछताछ अभी इसमें जारी है. सुवेंदु को इसमें उस गाड़ी में वो नहीं थे तो फिर उनके बारे में भी कोई जानकारी और नहीं है. लेकिन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई बताया है कि उन्होंने मांग की है, सुवेंदु अधिकारी ने मांग की है कि सीबीआई को इसमें लगाना चाहिए. सीधे सीधे भी फिलहाल उंगलियां तृणमूल कांग्रेस की ओर उठ रही है और उन्होंने भी उनकी तरफ उंगली उठाई है. फिजी आइलैंड्स की खबरों में एक बड़ी खबर अभी है. लोया सिम्यू ने वलिनी तंबुआ ने क्लेम किया है कि नंबुआ पुलिस स्टेशन में पुलिस जबरदस्ती घुस के उनके क्लाइंट को असोल्ट किया है, मार पिटाई की है. ये पूछताछ पुलिस उस व्यक्ति से तब कर रही थी जब 20 साल के एक लड़के पर हमला किया गया था मीड रोड हाउसिंग नंबुआ में. लास्ट सैटरडे को ये घटना घटी थी. ऐसा समझा जाता है कि जिस लड़के के ऊपर वार किया गया था वो मिलिट्री ऑफिसर का बेटा था. जिस व्यक्ति ने वार किया था वो मिलिट्री ऑफिसर के बेटे के ऊपर वार किया था. तो उस व्यक्ति जिसने वार किया था उसको पुलिस नंबुआ पुलिस स्टेशन लेकर के गई, वहां पर पकड़ के उनकी पूछताछ की कर रही थी. तो वाइल ये पूछताछ कर रही थी पुलिस, वहीं पर मिलिट्री के 5 लोग आए. अकॉर्डिंग टू लोया सिम्योने वलिन तंबुआ कि पुलिस ने आकर के उनको उस व्यक्ति के साथ में मार पिटाई की है. अभी पुलिस की जांच पड़ताल इसमें जारी है.

0: पवन के साथ सुनो कहानी अभी बाकी है।
1: अब लौट चले कहानी है, और कहानी के जो मेन कैरेक्टर है उनकी पत्नी आ गई, लेकिन जब वो उनकी पत्नी आई तब तक वो किसी और के इंतजार में थे, और ये इंतजार कर रहे थे कि पत्नी कब जल्दी से चली जाए और वो दोबारा से जिसकी याद में बैठा हुआ है उनकी याद को फिर से ताजा कर सके। मन का भूत साय की तरह पीछे लगा रहा और तब तक सताता रहा जब तक मैंने अपनी पत्नी को जाते वक्त बस में बिठाना दिया। क्या अच्छा है क्या बुरा है क्या समझना भी नहीं चाहता था। अगली शाम मन का एकाकीपन दूर करने के लिए मैं टीवी देखता चाय की चुस्कियां ले ही रहा था कि दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोला तो सामने मिसेस शर्मा को पाया। दिल धक से रह गया। इच्छा के अनुकूल चिर परिचिता को सामने पाकर कभी शब्दों और भावों पर विराम सा लग गया था। बहुत ही कठिनाई से पूछा, आप? उसके हाथ में रजनीगंधा के फूलों का बना सुंदर सा बुके था। काफी समय बाद उसे देखा था। जी, वो भीतर आते हुए बोली, कल बैंक गई तो पता चला आप कई दिनों से छुट्टी पर हैं, सोचा आपसे मिलती चलूं। ये कह शालीनता का परिचय देते हुए उसने मेरे हाथों में बुके पकड़ा दिया। वाह, ये क्या, किस लिए? मुझसे कहते नहीं बना। आपको मेरा पता कैसे मिला? मैंने हकलाते हुए बहुत बेहुदा सा सवाल पूछा जिसका उत्तर भी मैं जानता था। आइए, मैंने उस पर भरपूर नजर डालते हुए आगे आने के लिए कहा और सोफे पर बैठने के लिए कहा। बैठिए ना, कुछ पिएंगी? चाय बनाता हूं। चलिए थोड़ी थोड़ी पीते हैं। नहीं, बस नीचे मैनेजर साहब की गाड़ी मेरा इंतजार कर रही है, या मेजर साहब की गाड़ी मेरा इंतजार कर रही है। मैंने पूछा, मेजर साहब? मैंने अचरज से पूछा, हाँ, मेरे पति। उनका तबादला इसी शहर में हो गया था, चेहरे पर बेहद खुशी लाते हुए बोली। अब वे यहीं रहेंगे हमारे साथ। पूरा महीना लग गया तबादला कराने में। सुबह से रात दौड़ भाग दौड़ में बीत गया। यहां तक कि सैर स्कूल सभी को तिलांजलि देनी पड़ी, कह करके वो चली गई। ये देख सुनकर मेरे शरीर का खून ही पलों में निचुड़ गया। स्वयं को संयत करता हुआ सोफे पर धम से जा बैठा। आखिर इतनी तड़प क्यों हो गई थी मन में एक अनजान महिला के प्रति? क्यों इतनी उत्कंठा से टकटकी बांधे इंतजार करता रहा मैं उसका? ये अंतिम आशा भी निर्मूल सिद्ध हुई। क्या है ये सब? मैं पूरी ताकत से लगभग चीखता हुआ मन ही मन बुदबुदाया। इतनी मुलाकातें, ढेरों बातें, मेरा उसके लिए तड़पना, उसका यहां आना, ये सब क्या ही है?

हेमंत इस गाने के साथ शुरुआत करेंगे। और आज रात को 10 बजे से हमारे साथ आपके साथ होंगी रूपा जी, इस गाने के साथ शुरुआत।

0: फ्यूल का दाम रोज बढ़ रहा है और स्मार्ट ड्राइवर्स अब स्विच कर रहे हैं। फ्यूचर है इफिशियंट ड्राइविंग का और वेस्ट सिटी ओमोडा जेको के साथ ये शिफ्ट और भी इजी हो जाता है। इंट्रोड्यूसिंग द पावरफुल J7 सुपर हाइब्रिड सिस्टम, परफॉर्मेंस भी, इफिशियंसी भी और ऑल इलेक्ट्रिक J5 EV, जीरो एमिशंस, मैक्सिमम सेविंग्स। आज ही वेस्ट सिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनकी एक्सपर्ट टीम से मिले। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट westcityautogroup.nz और सर्च ऑन सोशल्स फॉर वेस्ट सिटी ऑटो ग्रुप।
1: इंट्रोड्यूसिंग पिज़्ज़ा हट्स न्यू टीका एंड पनीर रेंज, रिच टीका बेस, क्रीमी पनीर, बोल्ड फ्लेवर। गेट द फर्स्ट टेस्ट फ्रॉम $10.99 पिकअप एट पिज़्ज़ा हट। लिमिटेड टाइम ओनली, टीज़ एंड सीज़ अप्लाई।
2: This Mother's Day, Michael Hill is celebrating all kinds of mums. From the new mums, the stepmums, and even the pet mums. Celebrate Mother's Day with pieces she'll love forever. Make sure to visit Michael Hill online or in-store today.
3: Chahe wo manushya ho, ya manushya ke roop mein swayam avtar.
4: Dekhiye ek kahani prem ki, ek kahani kartavya ki. कृष्ण अवतारम।
5: बचाओ कान्हा, तुम गए तो प्रेम चला जाएगा। माखन चुराने वाले को नटखट नहीं चोर कहते हैं।
6: कृष्ण अवतारम पार्ट 1 हृदयम इन सिनेमास फ्रॉम 7 मई, प्राउडली डिस्ट्रीब्यूटेड बाय फोरम फिल्म्स।
7: खुद चाहे कितनी भी परेशान क्यों ना हो, हमारी उम्मीद का पुल कभी जोड़ना नहीं भूलते। जैसे माँ प्यार करती है ना, वैसा कोई नहीं कर सकता। वरना फूंक मारने से भला कौन सा जख्म भरता है। इनकी बाहों में जन्नत और बातों में खुदा होता है, क्योंकि माँ को सब पता होता है।
8: आप सभी को तराना टीम की तरफ से हैप्पी मदर्स डे।
9: रेडियो तराना, टाइम चेंज।
10: Proudly brought to you by Indelible Homes. Phone 0800 233 111. Website indelibleHomes.co.nz.
11: A very good afternoon, listeners. 3:00 में मध्याह्न 12 बज चुके हैं.
12: This is Urdu News. अमरीकी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक जंग खत्म करने के लिए अमरीका और ईरान के दरमियान एक सफ़े पर मुश्तमिल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर इत्तफाक हुआ है, तहम इस सिलसिले में कोई सरकारी तस्दीक नहीं की गई। इस दौरान पाकिस्तान की सालसी और ईरान के साथ मुजाकरात में पेशरफ्त का हवाला देते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम अपनाए हुर्मुज में तजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त बहाल करने का ऑपरेशन आर्जी तौर पर रोक दिया है। ये ऑपरेशन शुरू हुए अभी 48 घंटे भी नहीं हुए थे। ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम के शुरू होते ही अमरीकी बहरी जहाज़ों को ईरानी मिसाइलों, ड्रोन्स और कश्तियों का सामना करना पड़ा। अमरीकी फ़ौज ने 6 ईरानी कश्तियां तबाह करने का दावा किया, जबकि ईरान ने इसकी तरदीद की। इसी दौरान एक जनूबी कोरियाई जहाज़ को निशाना बनाने की रिपोर्ट्स आईं और मुत्तहिदा अरब अमारात ने इल्ज़ाम लगाया कि ईरानी मिसाइल और ड्रोन्स ने उनकी तंसीबात को निशाना बनाया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमरीकी ऑपरेशन को प्रोजेक्ट डेडलॉक करार देते हुए कहा था कि सियासी बहरान का फौजी हल नहीं होता। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा कि अबनाए हुर्मुज़ में सूरत हल अमरीका के लिए नाकाबिल बर्दाश्त हो सकती है, लेकिन ईरान ने अभी शुरुआत भी नहीं की। मज़ीद तफसीलात के साथ मुज़फ़्फ़र हैदर।
13: अमरीका और ईरान के दरमियान जंग के मौशी असरात पूरी दुनिया में महसूस किए जा रहे हैं और बैन अल-अक़वामी बहरी तजारत की बहाली इंतहाई ज़रूरी हो गई है। लेकिन अब अपना हुर्मुज़ में बैन अल-अक़वामी बहरी आमदरफ्त बहाल करने के अमरीकी मंसूबे को, जिसे सदर ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम का नाम दिया था, ईरान के साथ मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ का हवाला देते हुए आर्जी तौर पर रोक दिया गया है। अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि बाहमी इत्तफाक से तय पाया है कि नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर बरकरार रहेगी, लेकिन प्रोजेक्ट फ्रीडम को थोड़े वक्त के लिए रोका जा रहा है ताकि देखा जा सके कि मुआहिदा हतमी शक्ल अख्तियार कर सकता है या नहीं। ईरानी सरकारी मीडिया ने इस इकदाम को फौरी तौर पर अपनी फतह करार दिया और कहा कि सदर ट्रंप अबना हुर्मुज को दोबारा खुलवाने की मुसलसल नाकामियों के बाद पीछे हट गए हैं। ये सब कुछ उस वक्त हुआ जब अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने सहाफियों को बताया कि ईरान के खिलाफ अमरीकी फौजी ऑपरेशन, जिसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का नाम दिया गया था, अपने अहदाफ हासिल करके मुकम्मल हो चुका है।
14: ऑपरेशन एपिक फ्यूरी मुकम्मल हो चुका है। हमने इस ऑपरेशन के अहदाफ हासिल कर लिए हैं। मैं मजीद किसी सूरत हाल के लिए जोश व खरोश का इजहार नहीं करूंगा। हम अमन चाहते हैं, सदर एक मुआहिदा चाहते हैं। वो बैठ कर